शमा मुस्कुरा कर जला, रश्क से कोई बुझ बुझ के जलने लगा। क्यों तो कोई आने को है। वाह वाह वाह।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है, तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम ये वर्ड भी ये यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप वो उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर। ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड एंड इट कम्स बैक टू माई माइंड लेटर ऑन। शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब माई माइंड, ये हमारा एक्सरे है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: For more entertainment, log on and subscribe.
1: अजी सुनते हो?
2: हाँ, सुनी तो रहा हूँ.
1: क्या सुन रहे हो?
2: रेडियो पुनेरी आवाज.
1: ओ, रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियाँ बांटो.
3: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM. मैं हूँ आरजे शिवप्रिया. आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर. श्रोते हो, आज हम अपने एपिसोड में अष्टावक्र गीता के बारे में जानेंगे. कई वर्षों पहले अष्टावक्र नाम के एक महान गुरु हुए. वह धरती के महानतम ऋषियों में से एक थे, जिन्होंने उस समय एक विशाल आध्यात्मिक आंदोलन चलाया था. अष्टावक्र का मतलब है वह इंसान जिसके शरीर में 8 अलग अलग तरह की विकृतियां हो. शारीरिक रूप से अष्टावक्र विकलांग पैदा हुए. उनके दोनों पैर, हाथ, घुटने, छाती और गर्दन टेढ़े थे. बाद में जब अष्टावक्र थोड़े बड़े हुए तो वह एक शास्त्रार्थ में गए, जिसका आयोजन वहां के राजा जनक ने किया था. जनक महान प्रतिभाशाली और असाधारण व्यक्ति थे. जैसे ही अष्टावक्र राजा जनक के दरबार में पहुंचे, उनका रूप देखकर सभा के लोग हंसने लगे, जिस पर अष्टावक्र ने समझाया कि असली विद्वान चमड़ी या रूप से नहीं, ज्ञान से पहचाना जाता है. राजा जनक ने बालक अष्टावक्र से पूछा कि ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, वैराग्य कैसे प्राप्त किया जाता है. अष्टावक्र ने उत्तर दिया कि यदि आप मुक्ति चाहते हैं तो अपने मन से विषयों के विष की तरह त्याग दीजिए. क्षमा, सरलता, दया, संतोष तथा सत्य का अमृत ही सेवन कीजिए. ऋषि अष्टावक्र ने राजा जनक को समझाया कि आप ये शरीर नहीं है, इस शरीर में विद्यमान चेतना है. आत्मा न पृथ्वी, न जल, न अग्नि, न वायु, न आकाश तत्व से बनी है. आत्मा तो एक चैतन्य है, चेतना है. अष्टावक्र कहते हैं, यदि आप स्वयं को इस शरीर से अलग करके चेतना में विश्राम करें, अर्थात स्वयं को आत्मा समझे, तो तत्काल ही सुख, शांति और बंधन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं. आत्मा इन आंखों से दिखाई नहीं देती. आत्मा इस शरीर में साक्षी दृष्टा के रूप में है. सुख, दुख, जय, पराजय, अहंकार, अपमान, अभिमान, ये सारे विकार मन से जुड़े हैं. आत्मा तो सदैव मुक्त है. स्वयं को मुक्त मानने वाला मुक्त ही है और बंधन में मानने वाला बंधा हुआ है. आत्मा मन में उठने वाले अनेक भाव भावनाओं की साक्षी है, चैतन्य है, ऊर्जा है. स्वयं को आत्मा ना समझकर देहभान में फंसना, शरीर को ही मैं समझना, यही सभी दुखों का कारण है. अष्टावक्र कहते हैं, शरीर आत्मा का घर है. शरीर रथ है, आत्मा रथी है. जैसे ही हम आत्मिक स्थिति में टिकने लगते हैं और स्वयं को साक्षी समझने लगते हैं, तब हम अनेक बंधनों से और दुखों से छूटने लगते हैं. श्रोते हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है। विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट। एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, अष्टावक्र ने हमें कई उपदेश दिए हैं। उनके मुख्य उपदेशों में स्वयं को शरीर से अलग शुद्ध चैतन्य जानना, मोह और अहंकार का त्याग करना तथा इच्छाओं से मुक्त होकर पूर्ण शांति प्राप्त करना शामिल है। अष्टावक्र कहते हैं, तू शरीर नहीं बल्कि उससे पूरी तरह अलग शुद्ध चैतन्य आत्मा है। जो व्यक्ति यह जान

लेता है वह उसी पल सुखी, शांत और बंधनों से मुक्त हो जाता है। अष्टावक्र कहते हैं, मैं, मेरा, ये कहना ही बंधन है। मैं कुछ हूं या यह मेरा है ऐसा सोचना ही बंधन है। जब मन में कोई कामना या लालच नहीं रहता, तब न कोई बंधन बचता है और न ही मोक्ष की चाह। अष्टावक्र कहते हैं, बंधनों से मुक्त होने के लिए घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, ना ही जंगलों में जाकर रहने की जरूरत है। अष्टावक्र कहते हैं, आप जहां हो वहीं रहो, लेकिन अपने मन से ये मेरापन पूर्णतः निकाल दो। मेरा कहना यही एकमात्र बंधन है। हर कर्म करते हुए, गृहस्थ में रहते हुए मेरेपन का त्याग, यही मोक्ष का असली मार्ग है, यही मुक्ति है। सभी चीजों का उपयोग करते हुए भी किसी भी वस्तु में, किसी भी पदार्थ में मोह ना रहे, मेरापन ना रहे, यही मुक्ति है। मोह और मेरापन दुख देता है और साक्षी अवस्था मुक्ति है। अष्टावक्र कहते हैं, दुखों को पकड़े रहना यही दुखी होने का कारण है। जिसे पकड़ोगे वही दुख देगा। अपने नाम, मान, शान, इच्छा, अपेक्षा, आशाएं, इनको पकड़े रहना, भूतकाल की बातों को पकड़े रहना, भूतकाल की स्मृतियों को पकड़े रहना, यही दुखों का असली कारण है। जितना हम अपने नाम से भी जुड़े रहेंगे, नाम को भी पकड़े रहेंगे, उतना हम दुखी होते रहेंगे। जितना भूतकाल की स्मृतियों को पकड़े रहेंगे, उतना हम दुखी होते रहेंगे। हमें दुखों ने नहीं, बल्कि दुखों को हमने पकड़ा है। और जिस क्षण हम दुखों को छोड़ना शुरू करेंगे, किसी भी बात की पकड़ को जब ढीला कर देंगे, मन से हर एक बात को छोड़ना सीखेंगे, तब हम वास्तव में दुखों से मुक्त होंगे। हम अपने नाम से, अपने इमेज से, अपने मान से, अपने अभिमान से कितना अटैचमेंट में है। जब हम स्वयं को मुक्त करते हैं, तब हम दुखों से भी मुक्त होते हैं। जब हम इच्छाओं से मुक्त होते हैं, तब हम दुखों से भी मुक्त होते हैं। अष्टावक्र कहते हैं, अज्ञान ही मनुष्य आत्मा के दुखों का कारण है। जब मनुष्य के अंदर ज्ञान जागता है, तब वह सभी बातों को छोड़कर बंधन मुक्त अवस्था में रहने लगता है। हमें दुखों से छूटने के लिए प्रयत्न नहीं करना है, बल्कि हमें अपने अंदर के ज्ञान को जगाना है। जैसे ही ज्ञान जागेगा, अज्ञान अंधेरा दूर हो जाएगा। श्रोते हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूँ आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, अष्टावक्र कहते हैं दूसरों को माफ न करना यह हमारे दुखों का सबसे मुख्य कारण है। जब तक हम दूसरों को माफ नहीं करेंगे तब तक हम भी दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। दूसरों के प्रति नफरत रखना या उनके किए हुए अपमान को याद करना या किसी भी दुखदाई घटना को अपने मन में पकड़े रहना ऐसा ही है जैसे कोई जलते हुए अंगारे को अपने हाथों में पकड़ा हो। जब हम किसी के प्रति नफरत रखते हैं तो ये इसी तरह है कि जलते हुए अंगारे को पहले अपने हाथों में उठाना और फिर दूसरों के ऊपर फेंकना। लेकिन जैसे ही हम अंगारे को अपने हाथों में उठाते हैं सबसे पहले हमें ही कष्ट होता है। नफरत द्वेष रखने वाला व्यक्ति सबसे पहले स्वयं ही जलता है। दूसरों को माफ न कर पाना ये वास्तव में स्वयं को सजा देने के बराबर है, क्योंकि जब तक हम माफ नहीं करेंगे तब तक हम नफरत की, द्वेष की, घृणा की आग में जलते रहेंगे। हम अपनी शांति को गवाते रहेंगे। हम एक बोझ को अपने सर पर उठाकर पूरी जिंदगी चलते रहेंगे। ये सबसे बड़ी स्वयं को दी जाने वाली सजा है। अष्टावक्र कहते हैं जब हम माफ करना सीख जाते हैं तब हम स्वयं को दुखों से मुक्त कर पाते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि हमें माफ करना है लेकिन अनुभवों से सीखना भी है। हमें उस व्यक्ति के प्रति सावधानी भी बरतनी है। हमें असावधान होकर नहीं चलना है। अष्टावक्र कहते हैं कि परिस्थिति को स्वीकार ना करना यह भी दुखों का कारण है। जब हम परिस्थिति को जैसी है वैसी स्वीकार करते हैं तब हम उसके बंधनों से, उसके प्रभाव से मुक्त होने लगते हैं। हर मनुष्य आत्मा को भी जो जैसे हैं उन्हें हमें वैसे ही स्वीकार करना होगा। अपेक्षा रखना यह भी दुखों का एक कारण है। हम दूसरों को बदल नहीं सकते, हमें स्वयं को बदलने का प्रयत्न करना है। अष्टावक्र कहते हैं मन में उठने वाला क्रोध, भय, अपमान, अहंकार, अभिमान यह सब मन की भावनाएं हैं, यह आत्मा नहीं है। और तुम स्वयं चैतन्य आत्मा हो, मन की भावनाओं से अलग। जब आत्मा मन की भावनाओं से अलग अपने आप को साक्षी अवस्था में स्थित करती है, इन भावनाओं से अपने आप को अलग करती है, तब वास्तव में हम जीवन मुक्ति का अनुभव करने लगते हैं। हम मन के गुलाम नहीं हैं, मन के मालिक हैं। जब हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा मालिक हैं, तब हम मन के गुलाम बन जाते हैं और भटकने लगते हैं, दुखों का अनुभव करने लगते हैं। आत्मा तो सदैव बंधन मुक्त है। श्रुति हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ऐतिहासिक सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झक्कास रेडिओ स्टेशन पुणेरी आवाज ऐकत रहा 107.8 FM आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूँ RJ शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, अष्टावक्र कहते हैं कि यह संसार एक स्वप्न मात्र है। कोई भी परिस्थिति सदाकाल के लिए नहीं होती। जो भूतकाल है वो एक स्मृति मात्र है। यहां पर सब कुछ अस्थिर है। अगर कोई स्थिर है तो वह है आत्मा। परिस्थितियों से, जीवन से शिकायत करना यह भी एक दुखों का कारण है। जितना हम शिकायत करते रहेंगे उतना हम दुखी होते रहेंगे। अष्टावक्र कहते हैं कि मृत्यु तो सिर्फ शरीर का चोला बदलने का नाम है, परिवर्तन का नाम है। आत्मा ना तो मरती है ना उसे जलाया जा सकता है। आत्मा तो सदैव अमर, अजर, अविनाशी है। अष्टावक्र कहते हैं कि मनुष्य आत्मा का दुखों का मुख्य कारण भूतकाल की स्मृतियों में रहना या भविष्य की चिंता करना है। भूतकाल और भविष्य दोनों ही मनुष्य आत्मा के हाथ में नहीं है। भूतकाल एक स्मृतियों की तरह है जो बीत गया, और भविष्य की चिंताएं वो कल्पना मात्र है जो वास्तविकता नहीं है। अष्टावक्र कहते हैं कि अगर मनुष्य आत्मा वर्तमान में जीना सीख जाए तो वो सभी दुखों से मुक्त हो सकती है, क्योंकि वर्तमान क्षण में ही जीवन विद्यमान है। अष्टावक्र कहते हैं कि भूतकाल की स्मृतियों से या भविष्य की चिंताओं से मुक्त होने का मार्ग ज्ञान है। जहां पर ज्ञान जन्म लेता है वहां पर अज्ञान का अंधेरा समाप्त होता है, और इसी का फलस्वरूप मनुष्य आत्मा वर्तमान में जीने लगती है और जीवन भी वर्तमान में ही मिलता है। अष्टावक्र कहते हैं ज्ञानी मनुष्य आत्मा सदैव वर्तमान में जीती है। वो ना तो भूतकाल की स्मृतियों को याद करती है और न ही भविष्य की चिंताओं में रहती है। अष्टावक्र कहते हैं कि जागरूकता ही सारे बंधनों से मुक्ति का मार्ग है। सदा जागरूकता। अष्टावक्र कहते हैं कि मन से लड़ना नहीं है, मन के भावनाओं को साक्षी होकर स्वयं को आत्मा समझकर निहारना है। मन को केवल देखना है, मन से लड़ना नहीं है। अष्टावक्र कहते हैं आरोग्य और अध्यात्म दोनों ही जरूरी है। मन, शरीर और आत्मा की देखभाल जरूरी है। सेवा एक साधन है। जब हम किसी की देखभाल करते हैं तब हम खुद को बदलते हैं। अष्टावक्र कहते हैं जीवन के अनुभव हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। अष्टावक्र कहते हैं आत्मिक स्थिति में रहने वाला बुढ़ापे में, मृत्यु के समय, बीमारी में भी शांत रहता है। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। अष्टावक्र कहते हैं नदी का स्वभाव बहते रहना है। अगर नदी बहना छोड़कर एक ही जगह पर स्थिर रह जाए तो पानी गंदा हो जाएगा। नदी कुछ भी बातों को अपने अंदर पकड़कर वहीं नहीं रुकती, उसका स्वभाव सतत बहना होता है। इसी प्रकार हमें भी दुखों की बातों को अपने अंदर पकड़कर बैठना नहीं है। परिवर्तन संसार का नियम है। कुछ भी स्थिर स्थायी नहीं है। इस संसार में केवल आत्मा ही स्थिर चैतन्य स्थायी है। श्रोते हो, उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में तो। कर्म इंद्रियों के भी गुलाम, ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सबकी गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी कि पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार है गाड़ियां, वो उनके कंट्रोल से चले।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। इन दिनों हम बात कर रहे थे खुशी की, और खुशी के इंडेक्स को बहुत अच्छी तरह से जब हम समझ पा रहे हैं, हमने ये समझा कि इस इंडेक्स को हम बहुत आराम से स्टेबिलिटी में ला सकते हैं। लेकिन क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस इंडेक्स को फिर ऊपर फिर नीचे लेकर जाता है, इनको हम साथ साथ मिलकर खंगाल रहे हैं। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, अगर पिछली कड़ी को देखें तो उम्मीदों की बात की थी, और जब हमने कहा कि हम तो कोई उम्मीद किसी से रखते ही नहीं थे, आई डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस, आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम यू और यू नो लाइक फ्रॉम द सिचुएशन, बट देन वी आर द वंस हु से कि आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू। तो अननोइंगली, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी होती जा रही हैं, जैसे हमने बिलीव सिस्टम से भी बात की थी कि एंड एक्चुअली दैट हैज हेल्प्ड अ लॉट। आई वुड लाइक टू शेयर अपने सभी दर्शकों के साथ कि, और आप भी हमें जरूर अपने वो जितने भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, कि जो फीलिंग जो थी, यू रिमेम्बर हमने इस पर बात की थी कि फीलिंग इतनी गहरी हो जाती है और वो हमें पता नहीं चल पाता कि कौन सा थॉट था। तो वो स्ट्रांग बिलीव सिस्टम, जैसे ही उस पे हमारी एक्ट्स गिरनी शुरू होती है, वो काम करने, इट इज वर्किंग विद मी, आई होप इट्स वर्किंग विद यू, सो अमेजिंग लाइक रिजल्ट्स कमिंग। तो अब हम एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो वो
1: उसमें भी बिलीफ ही है। आई एक्सपेक्ट द वर्ल्ड, वर्ल्ड मीन्स देन एवरीथिंग एवरीवन, टू गो अकॉर्डिंग टू द वे आई वांट देम टू गो, यू नो, टू टॉक द वे आई वांट देम टू टॉक, टू बिहेव द वे आई वांट देम टू बिहेव, टू परफॉर्म द वे आई वांट देम टू परफॉर्म। तो कहीं ना कहीं मैंने एक बिलीफ बना लिया है कि जैसा मैं एक्सपेक्ट करती हूँ सब कुछ वैसा ही होने लगता है। अब जैसे आपने कहा कि हमें पता थोड़ी है कि हम सच में इतना सारा एक्सपेक्ट करते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जब वो चीज़ वो नहीं होती जो हम एक्सपेक्ट एक्चुअली कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलता है कि आई वॉज एक्सपेक्ट। सिंपल थिंग लाइक आई एक्सपेक्ट दैट मेरे घर में नल में पानी 24 घंटे आएगा, ओके okay? आज सुबह नल खोला एंड पानी नहीं है, रोज मैं ये नहीं सोचती थी आई एक्सपेक्ट दैट देयर विल बी वाटर, यू डोंट क्रिएट दैट कॉन्शियस थॉट। लेकिन जिस दिन पानी नहीं आया उस दिन हम डिस्टर्ब हो जाते, सुबह सुबह ये क्या, ऐसे कैसे हो सकता है, कोई तरीका। दिस डिस्टर्बेंस मीन्स दैट सम एक्सपेक्टेशन ऑफ माइंड हैज नॉट गॉट फुलफिल्ड, दैट्स व्हेन आई गेट डिस्टर्ब। तो एक्सपेक्टेशंस वैसे नहीं पता चलेंगे कि हमारे कितने सारे एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन जब कोई चीज हमारे अनुसार नहीं होती तब हमारा डिस्टर्ब होना, अगर हम नहीं डिस्टर्ब हुए, अगर हम नहीं डिस्टर्ब हुए, सो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, आई वॉज एक्सेप्टिंग ईदर वेज, पानी आए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, देन देर वॉज नो एक्सपेक्टेशन। लेकिन एक्सपेक्टेशन है ये कैसे पता चलेगा, किसी भी चीज में, परिस्थिति में, दुनिया में, मौसम में और लोगों के साथ, तो ऑफ कोर्स कि अगर मैं डिस्टर्ब होती हूँ तो मेरी कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुई है, सो यू कैन प्रोबेबली गो बैकवर्ड्स।
0: यस, कि अगर हमें सम डिस्टर्बेंस, कुछ ऐसी बात हुई जो मुझे तंग किया एक, लेकिन यहाँ पे मैं बात करना चाहती हूँ, कुछ तो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, मतलब हम समाज में है, सोसाइटी में है, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट जो मेरी एक्सपेक्टेशन और नॉन एक्सपेक्टेशन से परे हैं, यू नो लाइक देयर इज अ फिक्स्ड वे ऑफ लाइफ,
1: वेयर इज इट रिटन,
0: हां बट दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू
1: आस्क, दैट्स एक्जेक्टली द फिक्स्ड वे ऑफ लाइफ इज व्हाट आई चूज, द फिक्स्ड वे ऑफ लाइफ इज अकॉर्डिंग टू माय डेफिनेशन ऑफ फिक्स्ड वे ऑफ लाइफ। कोड ऑफ कंडक्ट, लेट्स से मेरे लिए कोड ऑफ कंडक्ट है एग्जैक्ट टाइम पर पहुंचना कहीं भी, ठीक है, मतलब जो टाइम बोला है उससे भी 5 मिनट पहले पहुंचना, दिस इज माय कोड ऑफ कंडक्ट। आपका कोड ऑफ कंडक्ट हो सकता है, क्या फर्क पड़ता है अगर 5-10 मिनट लेट पहुंचे, कभी जल्दी भी पहुंच जाएंगे कभी ले, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, दैट इज योर कोड ऑफ कंडक्ट। लेकिन अब आपका कोड ऑफ कंडक्ट और मेरा कोड ऑफ कंडक्ट थोड़ा सा
0: कॉन्फ्लिक्ट में,
1: क्लैश होने वाला है,
0: बहुत बड़ी बात हो जाती है।
1: हाँ, तो ये तो छोटी बात है लेकिन ये होता है, क्योंकि मेरा कोड ऑफ कंडक्ट या मेरे अकॉर्डिंग टू राइट वे ऑफ लिविंग क्या है, कि जो कमिट किया वो टाइम पर पहुंचना है। आपका है इट्स ओके, इतनी दूर से हम ट्रैवल करके आ रहे हैं, 10-1 मिनट लेट हो गया कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सो नाउ इफ आई स्टार्ट क्वेश्चनिंग यू अकॉर्डिंग टू माय कोड ऑफ कंडक्ट, हाउ फेयर इज इट।
0: बट अगेन सिस्टर शिवानी, इट बिकम्स देन तो इट लाइक ईच वन ऑफ अस आर गोइंग टू हैव आवर कोड ऑफ कंडक्ट,
1: ईच वन ऑफ अस डज हैव आवर ओन कोड ऑफ कंडक्ट। अगर आप देखो हम हर एक अपने अपने राइट्स और रॉन्ग्स, इसीलिए हम कहते हैं ना राइट और रॉन्ग क्यों रिलेटिव है, हर एक ने अपनी राइट और रॉन्ग की डेफिनेशन अपने अनुसार क्रिएट
0: लेकिन
1: किए हुए
0: वो
1: हैं।
0: भी हमने तब तैयार की ना जब हम एक पूरे समाज में परिवार में बढ़ते हुए अपने देखते हुए आ रहे थे। मर्यादाओं की बात करते हैं, एथिक्स की बात करते हैं, या कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट की बात करते हैं, वो हमने उस तरह से डेवलप किया।
1: उस तरह से वो सारी चीजें जो आपने कहा, समाज, हमारा कास्ट, हमारी फैमिली, वो इन्फ्लुएंसेस हैं उसके ऊपर। डेफिनेटली आप जिस कंट्री में हैं, आप जिस कास्ट को बिलोंग करते, दोज आर ऑल इन्फ्लुएंसेस। सपोज आप पंजाबी हैं, डज इट मीन ऑल पंजाबीज हैव द सेम कोड ऑफ कॉन्डक्ट?
0: नो
1: नो।
0: नो नो
1: आप
0: नो
1: इंडियन हैं, आप इंडिया में रहते हैं, डू ऑल इंडियंस हैव द सेम कोड ऑफ कॉन्डक्ट? नो।

0: एक ने अपना अपना
1: अपना अपना तय कैसे किया है।
0: आपके पास कभी भी ये नहीं होगा कि सारे एक ही थॉट के साथ चले, आप कभी भी नहीं कर सकते हो। इट विल नेवर बी बिकॉज एवरीवन इज यूजिंग देयर ओन वे ऑफ थिंकिंग। तो कभी ये नहीं होगा। सी एक्सपेक्टेशन मींस माय एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू मींस कि जैसी मेरी सोच है आपकी सोच भी
1: वैसे ही होनी चाहिए।
0: यही तो है ना एक्सपेक्टेशन कि जो मेरी सोच है आपकी सोच भी सेम होनी चाहिए। आई डोंट थिंक दिस विल एवर बी पॉसिबल। फॉरगेट सारे एक सोसाइटी के अंदर हम दो लोगों की सोच भी सेम कैसे हो सकती है कभी भी। एक पर्टिकुलर टॉपिक पर भी, एक पर्टिकुलर इश्यू को भी लेकर दो लोगों की सोच कहाँ सेम होती है? दे विल ऑलवेज बी
1: डिफरेंट।
0: अ लिटिल डिफरेंस। एंड एक्सपेक्टेशन मीन्स कि मैं एक्सपेक्ट करूँ आपकी सोच मेरी जैसी हो, डिफिकल्ट। एक्सेप्टेंस मीन्स आई एक्सेप्ट कि आपकी और मेरी सोच
1: डिफरेंट
0: डिफरेंट है।
1: इनफैक्ट येस आई थिंक, क्योंकि एक्सपेक्ट करके भी या ये मान के भी तो डिस्टर्बेंस मुझे ही आनी है, तो इट्स
0: डिस्टर्बेंस ये
1: इजियर।
0: हाँ नो इट्स इजियर नहीं, देयर इज नो अदर सोल्यूशन। हमने जितना
1: वो पर हम
0: एक्सपेक्टेशन
1: चेंज तो बच्चों को चेंज, बच्चों को सही कोड ऑफ कॉन्डक्ट, बच्चों को सही तरीका कि ये चीजें करनी ही चाहिए।
0: बट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट डजंट सी, एक है एक्सपेक्टेशन, एक है किसी को आप अपना ओपिनियन दें, किसी को आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से राइट और रॉन्ग बताएं। आपका जो रोल है, आप सीनियर हैं, आप पेरेंट हैं, आप टीचर हैं, दैट्स योर रोल। वाई इवन अमंगस्ट फ्रेंड्स आपको अगर कुछ राइट लगता आप शेयर कर सकते हैं। यू नो समथिंग, आई फील यू कुड डू इट लाइक दिस, बट सेइंग आई एक्सपेक्ट यू टू डू इट लाइक दिस मीन्स आई एम एक्चुअली सेइंग यू बेटर डू इट लाइक दिस। देयर इज अ
1: And if
0: डिफरेंस।
1: you're not doing it like this,
0: आई एम
1: it means you,
0: हर्ट।
1: हाँ, and you're not on the right track, you know, you're not
0: तो
1: right.
0: वो फर्क है। तो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में यस पेरेंट्स बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस बच्चों से रखते, लेकिन उसमें क्या है कि एक एक बार जबकि वो बच्चा उस एक्सपेक्टेशन को नहीं मीट कर पाता तो पेरेंट्स क्या हो रहे हैं?
1: हर्ट।
0: हर्ट हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, बहुत लेट डाउन फील करते हैं कि मेरे बच्चे ने ऐसा कर दिया। अब एक्सपेक्टेशन हमने ही रखी। लेट्स से मैंने एक्सपेक्टेशन रखी कि आपके 90% आए बच्चे के, या वो डॉक्टर बने या व्हाटएवर, मैंने एक्सपेक्टेशन रखी, वो नहीं कर पाया। मैंने रखी एक्सपेक्टेशन, वो नहीं कर पाया, मैं हर्ट हो गई, डिजेक्टेड हो गई, मैंने इतना कुछ उस प्रोसेस में कह दिया उसको, तो हमारा रिश्ता क्या हुआ? ये एक्सपेक्टेशन किसने रखी थी? मैंने ही रख ली थी। डिड द चाइल्ड से दैट यस आई विल बी एबल? एंड समटाइम्स इवन इफ द चाइल्ड हैज सेड दैट यस यू नो आई विल
1: देर
0: डू
1: आर
0: दिस
1: अदर
0: मच,
1: थिंग्स यू नो, अदर
0: बहुत
1: फैक्टर्स
0: सारी
1: विच टेक
0: बातें हैं।
1: ओवर।
0: दूसरों को क्यों हम बहुत देखें, अपने बारे में क्या? एम आई एबल टू मीट अप टू माई एक्सपेक्टेशन?
1: ओह यस।
0: आज हम कहते आज मैं सारा दिन में ये करूंगा, एम आई ऑलवेज एबल टू डू इट? तो खुद के एक्सपेक्टेशंस नहीं मीट अप कर पाते तो हमारे पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते। वो आपको पता है ऐसा हो गया सो आई कुडंट डू इट, मैं तो पढ़ कर गया था, टीचर नहीं नहीं ठीक से,
1: नहीं, पर लेकिन
0: देयर आर
1: कई
0: सो
1: बार
0: मेनी
1: तो हम
0: थिंग्स।
1: नहीं अगर कर पाते तो हम अपने आप से भी इतने डिजेक्टेड हो जाते हैं, जैसे हम बच्चों से होते हैं या बाकियों से होते हैं।
0: लेट डाउन।
1: बट आई वांट टू आस्क एक्चुअली इज व्हाट इज द वे आउट।
0: लोगों को और सोसाइटी एट लार्ज, बच्चों को घर के अंदर, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये मेरे लिए राइट क्यों है, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, और मुझे वो करने के लिए सशक्त बनाया जाए। आई नीड टू बी एम्पावर्ड इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, फुल स्टॉप। इट्स लाइक अ कोड यू नो जो इन्फोर्स कर दिया जाता है दूसरे के ऊपर। अगर दूसरा उसको स्वीकार करने के लिए रेडी नहीं है, या दूसरे की एप्टीट्यूड ही नहीं है उतना करने की, दूसरे की कैपेसिटी ही नहीं है करने के लिए, वो नहीं कर पाएगा। एंड देन आई विल से आई एक्सपेक्टेड यू टू डू दिस,
1: नहीं
0: लेकिन तो आप
1: तो
0: फेल
1: फिर
0: हो गए।
1: जैसे एक जैसे हमने कहा कि एक कंट्री के अपने लॉ है, सिमिलरली घरों में भी कुछ लॉज होते हैं, तो वो लॉज को अगर इवन इफ एज अ चाइल्ड आई डोंट फील कंफर्टेबल अबाउट इट, व्हाट शुड आई डू, यू नो, लाइक
0: दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यू हैव टू फर्स्ट, जो घर में हम बना रहे हैं, चलो देश के लॉज हम इकट्ठे मिलकर नहीं बना सकते, घर के तो बना सकते हैं। जितना हर एक की अपनी कंफर्ट लेवल उसमें देखी जाएगी लॉ बनाते टाइम, उतना लॉ को फॉलो करना इजियर हो जाएगा। देन आई विल नेवर ब्रेक द लॉ। सी इफ आई एम, अगर आपने घर में एक रूल बनाया, सपोज कि 2 घंटा टीवी देखेंगे, लेकिन अगर सबने मिलकर ये रूल बनाया होगा तो आप घर में हो या नहीं हो, बच्चे फिर भी टीवी नहीं देखेंगे। लेकिन अगर आपने आपने अकेले ने रूल बना दिया कि 2 घंटा ही टीवी देखना है, बस आई एक्सपेक्ट दैट यू विल नॉट वॉच एनी मोर, अब आप जिस दिन घर पे नहीं है,
1: वो पूरा दिन देखेंगे। और आप जब ऑफिस से आते हैं, आप तो कंटिन्यूस टीवी देखते हैं आप, संडे को होते हैं, सैटरडे को घर होते हैं।

0: हैं, आप पूरा टाइप दे देते
1: सो जब हम कुछ ऐसे रूल्स भी बनाए अपने लिए, अपने परिवार के लिए, इवन इन एन कंपनी, इन एन ऑर्गेनाइजेशन, वी कैन ट्राई, जितना हर एक जुड़ता है उसको बनाने में, हर एक कंफर्टेबल फील करता है, या हमने ये बनाया है, मुझे ये करना है. सी आज घर में क्या हो रहा है, बच्चे ये कहते हैं मेरे को अपने पेरेंट्स के लिए ये करना पड़ रहा है. दिस इज नॉट अ वेरी नाइस फीलिंग कि मुझे किसी और के लिए ये करना है, तो वो मुझे एक बंधन जैसा फील करता है. और ये कहना कि मुझे किसी और के लिए करना पड़ रहा है, इट मीन्स मैं नहीं करना चाहती, मुझे किसी और के लिए करना पड़ रहा है. या तो फिर मैं कहती ना मुझे अच्छा लग रहा है, आई एम डूइंग इट, नो आई एम डूइंग दिस फॉर माय
0: पेरेंट्स.
1: पेरेंट्स.
0: इनफैक्ट अगर हम देखें, आई जस्ट रियलाइज यू नो एक वन थॉट विच गेम कि मुझे जब काम करवाना पड़ता है एज अ मदर ऑल्सो, और अगर मैं बॉस के रूप में सोचूं, अगर मैंने मतलब वो करवाना भी बड़ा मुश्किल होता है. यू नो जो रूल्स और वो तय किए हुए हैं, अगर हम सबकी फ्लेक्सिबिलिटी एक्चुअली लेकर रूल्स बनाएं तो हमें वो एनफोर्स नहीं करने पड़ेंगे.
1: वो नेचुरल हो जाएगा,
0: हाँ
1: क्योंकि अगर घर में, स्टार्ट विद द हाउस, फिर ऑफिस में नेक्स्ट स्टेप पर देखते, लेकिन अगर घर में हम ये ट्राई करना शुरू करें हर एक की राय लेकर, एंड यू नो दैट फीलिंग शुड बी क्रिएटेड कि हम सब मिलकर ये बना रहे हैं, हम सबको क्या कंफर्टेबल लगता है, तो आपको कभी चेक नहीं करना पड़ेगा कि वो रूल फॉलो हो रहा है या वो नहीं हो रहा, क्योंकि वो रूल वो बच्चे ने खुद बनाया है. वो रूल अब आपके लिए नहीं फॉलो कर रहा है, वो इसलिए फॉलो कर रहा है क्योंकि
0: उसका
1: उसने
0: अपना
1: खुद
0: बनाया
1: बनाया.
0: हुआ है.
1: देखो जब क्रैकर्स गवर्नमेंट ने कहा अच्छा नहीं है, प्लास्टिक दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा अच्छा नहीं है, हमारे से ज्यादा अच्छे तो
0: वो
1: बच्चे फॉलो कर रहे
0: हाँ
1: हैं. क्यों?
0: बिल्कुल
1: क्योंकि उनको स्कूल में वो समझाया गया, उसका डैमेज पता, एंड चिल्ड्रन आर वेरी
0: नहीं,
1: गुड
0: दे
1: विद
0: वर
1: इट,
0: एम्पावर्ड,
1: दे
0: यू नो,
1: वर
0: दे वर
1: एम्पावर्ड.
0: अलाउड टू टेक डिसीजंस. एक्चुअली दे वर ट्रीटेड एज एडल्ट्स.
1: एब्सोल्युटली, एंड दे लाइक दैट. एवरीवन लाइक्स दैट कि अच्छा मुझे समझाया गया और फिर मुझे बताया गया आपको क्या लग. सी नो वन सेड बैन क्रैकर्स. अगर आप घर में बोल देते चाहे कुछ भी हो जाए पटाखे नहीं चलने, कोई नहीं मानेगा, बच्चा जाके छुप कर करेगा, फ्रेंड्स के साथ
0: सबसे
1: करेगा.
0: ज्यादा तो स्कूल में चलाते थे बच्चे, छुप छुप के जो चलाते थे. एंड इनफैक्ट अमेजिंग यू नो हाउ इट हैज हैपेंड.
1: एब्सोल्युटली. तो जहां उनको अवेयरनेस क्रिएट की गई, उसके राइट्स और रॉन्ग्स पता चले, और फिर उनको बताया गया आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, द डिसीजन केम फ्रॉम द चिल्ड्रन. इट वॉज नॉट आपको ये नहीं करना है, इट वॉज आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए. द चिल्ड्रन आर वेरी मेच्योर. आप एक छोटे बच्चे को भी, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बच्चे को उसके लेवल की बात अगर करेंगे ना, द चाइल्ड नोज वॉट इज राइट एंड रॉन्ग. अगर चाइल्ड रॉन्ग कुछ कर भी रहा है, यू टॉक टू हिम एज एन अडल्ट इंस्टेड ऑफ सेइंग ये नहीं करना है, ही विल नॉट लाइक इट. वो फिर भी करेगा क्योंकि अभी तक उसने नहीं एक्सेप्ट किया है. एंड
0: कि मुझे
1: तब
0: नहीं
1: वो
0: करना है.
1: कंटिन्यूअसली कॉन्फ्लिक्ट, आप बार बार बोलो नहीं करना है, फिर वो बार बार कर रहा है, फिर आप बार बार बोलो, और आप कितना बोलेंगे. और आज का एनवायरमेंट ऐसे ही हो गया है कि फिर हम बहुत ज्यादा, हमें चेक रखना पड़ता है बच्चों पर. ठीक है, घर पे आपने कोई चीज फोर्स कर दी, ये मत पढ़ो, ये मत देखो, इन लोगों से ऐसी बात मत करो, नो वट एवर, क्योंकि हम कहते हैं आजकल बहुत कुछ हो रहा है सोसाइटी में. बाहर जाने के बाद आप क्या करेंगे? कैन यू चेक? वो बच्चा कंप्यूटर पर बैठा है, कैन यू
0: नेट
1: चेक
0: पे
1: एवरी
0: हाँ
1: टाइम? आप कितना टाइम खड़े रहेंगे चेक करने के लिए कि वो क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा? दैट विल नॉट बी द वे. एंड जितना आप इस तरह से फोर्सफुली रूल इम्पोज करेंगे, उनके अंदर और भी ज्यादा आएगा कि हमें वो करना है. लेकिन अंडरस्टैंडिंग के साथ, अवेयरनेस के साथ और मेच्योरिटी के साथ डिस्कस करेंगे, एंड देन एम्पावर करेंगे, फिर वो खुद अपना, उसको अपने कोड ऑफ कॉन्डक्ट में डालेंगे. एक है मैं आपका कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉलो करूं, लेकिन एक है आपका कोड ऑफ कॉन्डक्ट मेरे कोड ऑफ कॉन्डक्ट की लिस्ट में आ जाए, तो फिर फॉलो करना मेरे लिए
0: आसान हो
1: अच्छा
0: जाएगा.
1: होगा.
0: और सबसे बड़ी बात है वो उसका हुआ ना तो मेरी एक्सपेक्टेशन यहाँ खत्म हो जाएगी.
1: तो कितनी सारी चीजें हो गई. एक तो मैंने आपके कोड ऑफ कॉन्डक्ट को समझा, अपनाया. मेन चीज है मुझे उसे अपनाना है. एक बार मैंने अपनाया, मैंने अपने लिए उसको किया क्योंकि मुझे करना अच्छा लगता है. और दूसरा, अगर मैं नहीं भी बाय चांस कर पाई, आप हर्ट नहीं होंगे क्योंकि मैं आपके लिए नहीं कर रहे थे. आई एम डूइंग दिस नाउ फॉर माई सेल्फ, एंड नीदर विल आई बी अंडर द प्रेशर. यू नो ये प्रेशर है बहुत ज्यादा, हस्बैंड वाइफ का, पेरेंट्स बच्चों का, बच्चे बहुत ज्यादा प्रेशर के अंडर है. आई हैव टू डू दिस फॉर माई पेरेंट्स. तो प्रेशर के अंडर परफॉर्मेंस, एंड इसमें भी अगर हम एक चीज देखें कि औरों से एक्सपेक्टेशंस तो चलो देखते करने या नहीं करने, अपने से एक्सपेक्टेशंस, अपने से तो एक्सपेक्टेशंस रखें ना. इफ आई कैन एक्सपेक्ट के यू डू व्हाट आई वांट, व्हाट अबाउट मी एक्सपेक्टिंग दैट
0: आई शुड डू व्हाट आई
1: आई
0: वांट.
1: शुड डू व्हाट आई वांट. एंड जब अपनी एक्सपेक्टेशंस की लिस्ट हम बनाते तो उसमें भी हमारी एक्सपेक्टेशंस यही हैं अपने आप से, मैं सारा अपना काम खत्म कर लूँ, आई एम अ गुड पेरेंट, मेरे बच्चों को ये करा दूँ, वो भी सेकेंडरी है। जब हम अपनी एक्सपेक्टेशंस की लिस्ट बनाएं, क्योंकि हमें बहुत आदत है एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की, तो अपनी एक्सपेक्टेशंस की लिस्ट में हमारी फर्स्ट जो अपने आप से होनी चाहिए वो है हैप्पीनेस।
0: Whether I'm happy or not.
1: या व्हाट अबाउट दैट? बिकॉज ये सारी जो एक्सपेक्टेशंस की लिस्ट है, आप ऐसा करो, आप ऐसा बोलो, मौसम ठीक रहे, ट्रैफिक, ये इसलिए है सारा कुछ क्योंकि ये सब चीजें जब होंगी तो मेरा मन कैसा रहेगा?
0: शांत
1: छात्र, जब कोई भी इनमें से चीज डिस्टर्ब होती है तब मेरा मन डिस्टर्ब होता है,
0: नलके में से पानी नहीं आना
1: तो
0: इज
1: मैं
0: वेरी
1: डिस्टर्ब हुई
0: वो
1: ना,
0: मेजरली
1: आई गॉट डिस्टर्ब, दैट्स व्हाई आई वाज एक्सपेक्टिंग कि पानी आना चाहिए, क्योंकि पानी आता तो मैं ठीक
0: तो
1: रहती।
0: नॉर्मल रहता ना ठीक, मतलब
1: यस
0: पता भी नहीं चलता कि मैंने ये एक्सपेक्ट किया था।
1: या सो नाउ लेट्स पुट ऑन आर एक्सपेक्टेशन लिस्ट, सबसे पहले कि मेरी अपने से क्या अपेक्षाएं हैं। मेरी अपने आप से अपेक्षाएं हैं खुशी, शांति, स्टेबिलिटी, इसको फर्स्ट रखते, बाकी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी उसके बाद रखते। तो उसमें क्या होगा, एक है आपने मेरे से ठीक से नहीं बात की, तो यू हैव नॉट कम अप टू माई
0: माई एक्सपेक्टेशन
1: एक्सपेक्टेशंस, लेकिन उससे पहले मुझे ये याद रखना है कि मेरी अपने आप से क्या एक्सपेक्टेशन है, कि मुझे स्टेबल रखना है, रहना है। सो एम आई अलाउड टू गेट डिस्टर्ब जब आपने मुझसे बात नहीं की?
0: लेकिन एक बात है शिवानी, आई डोंट नो हाउ मच टाइम इज गोइंग टू टेक, बिकॉज अगर पानी नहीं आया या ड्राइवर नहीं पहुंचा तो पहला जो रिएक्शन है या पहला जो क्रिएशन है, ऑफ कोर्स नाउ आई स्टार्टेड सेइंग क्रिएशन, इज दिस डिस्टर्बेंस
1: तो क्योंकि आप एक्सपेक्टेशन सबसे रख रहे हो एक्सेप्ट फॉर
0: फ्रॉम योर सेल्फ।
1: योरसेल्फ,
0: यस
1: बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस है ना, उनमें एक और ऐड करते ऊपर कि फर्स्ट एक्सपेक्टेशन जो मेरी है वो ये कि चाहे कुछ भी हो जाए पहले
0: मैं
1: मुझे
0: खुश हूं।
1: ठीक रहना है,
0: ये
1: मुझे
0: कैसे
1: ठीक
0: याद
1: रहना।
0: रखें, ये
1: ये
0: कैसे
1: धीरे धीरे
0: करें?
1: आपके बिलीफ सिस्टम में फिट होगा ना, बिलीफ सिस्टम्स को ही तो रिप्लेस कर रहे हैं ना। और उसमें भी क्या बिलीफ सिस्टम ये है कि मैं हूं ही स्टेबल, मुझे स्टेबल होना नहीं है, मैं हूं ही स्टेबल, तो पहले मुझे सिर्फ किसका ध्यान रखना है, अपना ध्यान रखना है और अपने बिलीफ सिस्टम को चेक करना है कि दूसरे मेरे अनुसार
0: काम नहीं करेंगे।
1: करने वाले नहीं है, चलने वाले नहीं है, व्यवहार करने वाले
0: कभी भी कुछ भी
1: नहीं।
0: हो सकता है, यू नो, अगेन इट मीन्स दैट वेन एवर द सिचुएशन विल कम, दिस बिलीफ सिस्टम शुड पॉप अप ऑन द स्क्रीन, ऑन माई कंप्यूटर स्क्रीन, आई एम स्टेबल।
1: इट इज, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट्स द ओनली थिंग विच हेल्प्स मी क्रॉस एवरी सीन। क्योंकि होता क्या, एक्सपेक्टेशंस रखना मीन्स क्या, मैं अपनी सोच के अनुसार एक्सपेक्टेशंस रखती हूँ। सी एक्सपेक्टेशन सारी मेरी एक पर्टिकुलर सोच है, मेरे एक पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम है, और मैं समझती हूँ सब लोगों को वही बिलीफ सिस्टम से चलना चाहिए क्योंकि वो बिलीफ सिस्टम
0: ठीक है।
1: ठीक है, क्योंकि मैं तो ठीक ही हूं ना, मेरा गलत होना तो वो तो आई नेवर थॉट अबाउट इट, तो मैं ठीक हूँ, मेरा बिलीफ ठीक है, तो सबको उसी बिलीफ के अनुसार चलना चाहिए। हाउ इज दिस एवर पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? तो हम ही असंभव चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एवरीवन शुड गो अकॉर्डिंग टू माय बिलीफ, और फिर हम इम्पॉसिबल एक्सपेक्ट करके जब वो नहीं पूरा होता तो हम डिस्टर्ब होते, और जैसे ही हमारी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती फिर हम डिस्टर्ब होते,
0: दिस इज अ मेजर
1: फिर
0: फैक्टर।
1: हम जजमेंटल भी होते,
0: ओ
1: क्योंकि
0: यस
1: यू नो सारे कितनी इंटीग्रेटेड हो जाते हैं चीज। मैंने एक्सपेक्टेशन रखी कि आप मुझसे स्वीटली बात करेंगे, अब आपने नहीं की ड्यू टू सो मेनी फैक्टर्स, आज आपका मूड ठीक नहीं है, आज आपका मन नहीं
0: या
1: किया,
0: हो सकता है
1: या
0: मेरे मन में कोई और
1: कुछ
0: बात
1: और
0: आपसे
1: बात
0: जुड़ी,
1: चल,
0: किसी ने कुछ कहा है मुझे आपके लिए, यू नो,
1: कुछ भी हो
0: कुछ भी हो
1: सकता,
0: सकता है
1: कुछ भी हो
0: एनीथिंग।
1: सकता है, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट क्या किया था कि आप मेरे से दिस पर्टिकुलर व्यवहार से करेंगे, आपने नहीं किया, तुरंत मैं क्या हो जाऊंगी, आपके प्रति जजमेंटल, आपके प्रति क्रिटिकल, फिर वो सिर्फ यहां तक नहीं रहेगा, वाणी में आएगा, फिर वो सिर्फ आपको नहीं बोलूंगी, और
0: सब जगह
1: सो मच
0: और
1: जस्ट
0: पूरा टाइम
1: गोस।
0: रहेगा जब तक, मतलब उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल आएगा, जब तक मैं कोई जजमेंट पास नहीं कर दूंगी तब तक वो मेरे साथ थॉट रहता रहेगा।
1: क्योंकि हमने जजमेंट क्या पास करनी है, सी मेरा बिलीफ ये है, आपने वो बिलीफ फॉलो नहीं किया, तो मैंने जजमेंट सिर्फ एक ही तो पास करनी है कि आप गलत है, वो तो मुझे पहले से ही पता था। सी द मिनट समवन इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग अकॉर्डिंग टू माय बिलीफ, माय थॉट, माय वे ऑफ वर्किंग, मुझे जजमेंट सिर्फ यही पास करना है, मैं सही हूँ, दूसरे
0: गलत है।
1: गलत है, यही तो हम सारा दिन कर रहे हैं, आई एम राइट, यूर रॉन्ग, यूर रॉन्ग, जैसा आप बोल रहे हो वो रॉन्ग, जैसा आप काम कर रहे हो वो, वी नॉट रेडी टू एक्सेप्ट के हर एक का काम करने का अपना अपना तरीका है, हर एक अपने एप्टीट्यूड से, अपने स्किल से, अपनी सिंसियरिटी लेवल से. सी, इवन सिंसियरिटी, हमारी वैल्यूज भी कई बार हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो जाती है जब हम उसको एक्सपेक्टेशन के साथ जोड़ते हैं. सपोज वन पर्टिकुलर पर्सन ऑफिस में बहुत सिंसियर है, वो दिन रात काम करता है. सिंसियरिटी उसकी वैल्यू है, ऑनेस्टी इंटेग्रिटी उसकी वैल्यू है, वो कभी हमेशा सच बोलता, कभी झूठ नहीं बोलता. लेकिन फिर वो ये एक्सपेक्ट करते
0: कि सब लोग भी
1: कि
0: सच
1: सब लोग
0: बोलते हैं.
1: ऐसे होंगे. अब नाउ वो ही वैल्यू फिर उसके लिए डिस्टर्बेंस का कारण बन जाती, क्योंकि जब भी कोई उतनी सिंसियरिटी से काम नहीं करेगा, जब भी कोई उतनी ऑनेस्टी से बिहेव नहीं करेगा, जो कि होने वाला, बिकॉज एवरीवन इज डिफरेंट, तो आई एम गोइंग टू गो लाइक दिस. सो एक्सपेक्टेशन मींस क्या? जैसे हम हैं,
0: वैसे होना
1: जैसी
0: चाहिए.
1: हमारी सोच है, सारे लोग वैसे ही चलने वाले हैं. ये कभी नहीं होना होने वाला है. सो द सूनर वी कैन लर्न, दिस इज ऑल्सो अ लर्निंग, कि जैसे ही आप डिस्टर्ब होते हैं, चेक करें कि किससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आज. अगर हम एक चीज ट्राई करें, दिस इज एन एक्सपेरिमेंट, कि अगर आपको कोई बात लगती कि वो सही है, यू आर वेरी श्योर कि ये सही है, शेयर इट दूसरे के साथ, आप शेयर करें, बच्चे के साथ शेयर करें, लेकिन सिर्फ अपने आप को ये याद दिला दें कि अगर वो पूरा नहीं कर पाएगा, मैं हर्ट नहीं होंगी. बस इतना रखना है.
0: पूरा भी नहीं, रिजेक्ट भी कम्प्लीटली करते
1: जो
0: तब
1: भी,
0: तब भी.
1: मतलब उसको
0: हाँ
1: वो नहीं अगर अपने जीवन में करते, मैं हर्ट नहीं होंगी. तो उससे क्या होगा, आप अपनी वो राइट बात आप कहते जाओ, बताते जाओ, विदाउट गेटिंग हर्ट, डिजेक्टेड, धीरे धीरे यू विल फाइंड द अदर पर्सन एक्सेप्टिंग व्हाट यू हैव टू से. क्यों वो एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि पहले हमने उनको
0: एक्सेप्ट किया.
1: एक्सेप्ट किया. तो जैसे ही हम उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो धीरे धीरे वो भी फिर हमें एक्सेप्ट कर लेंगे. और वो जो बात हम उन्हें कह रहे, दिस इज कॉल्ड एम्पावरमेंट. दूसरे को एक्सेप्ट करना, मतलब एक्सेप्टेंस की एनर्जी होती है एम्पावरिंग एनर्जी, सशक्त करना. और रिजेक्शन की एनर्जी, वो दूसरे को और नीचे, और दूसरा परे हट जाता है, मुझे करना ही नहीं है, मेरे से नहीं होगा, आई कांट डू व्हाट यू वांट मी टू डू. बट इफ यू गिव दिस एक्सेप्टेंस एनर्जी, उनके अंदर वो ताकत आ जाती है, वो करके दिखाएंगे जो व्हाट यू वांट देम टू डू. सो एक्सपेक्टेशंस, यस, वेरी डिफिकल्ट एकदम से लेट गो करना, लेकिन ये तो ध्यान रख सकते कि
0: मेरे को
1: डिस्टर्ब नहीं होना
0: हाँ
1: है.
0: यू नो
1: सबसे
0: अगेन
1: पहले एक्सपेक्टेशन पहले पूरी करनी है अपनी वाली.
0: अपने आप से. एक्चुअली इट्स अमेजिंग, यू नो हम जैसे बिलीफ सिस्टम्स पर काम करते आ रहे हैं, वैसे ही ये मेजर छोटी छोटी बातों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं हमसे, कि वही नल में पानी नहीं आया, या बच्चा ऐसे ही बिहेव करेगा, या मेरा सबॉर्डिनेट जो है ही हैज टू परफॉर्म दिस वे, दैट इज वो प्रैक्टिकल हो सकता है. यू नो अगेन ये भी एक बहुत मेजर फैक्टर होता है कि मेरा ऑफिस है, मेरा प्रोजेक्ट है, परफॉर्मेंस हैज टू बी दिस वे. तो उसमें फिर हम क्या अपने आप को लॉजिक दे सकते हैं?
1: उसमें हम ये कि हमारे साथ जितने भी लोग हैं, या हमारे जूनियर्स भी अगर हैं, हर एक का अपना अपना एप्टीट्यूड है, स्किल है. मैं सीनियर पोजीशन पर अगर हूँ, तो मैं सीनियर पर इसीलिए हूँ क्योंकि मेरे अंदर कोई विशेषता है. लेकिन आपके सारे टैलेंट्स और स्किल्स के साथ, एक सीनियर के अंदर जो सबसे बड़ी विशेषता होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कि उनके साथ या उनके अंडर काम करने वाले लोगों की क्वालिटी को, टैलेंट को बढ़ाना. लेकिन हम सोचते नहीं, जो मेरा स्किल है उनका भी ऑटोमेटिकली उसी लेवल का होना चाहिए. दैट्स नॉट नेसेसरी पॉसिबल. एंड कई बार ये भी हो सकता कि जो हमारे जूनियर हैं, उनको कोई ऐसी चीज, उनका स्किल हमारे से भी बेटर हो सकता, लेकिन अगर हमने उनको कहा कि आप मेरा वाला तरीका ही करो, तो कई बार हम दूसरे की क्रिएटिविटी को डैम्पन कर देते हैं, और वर्क एफिशिएंसी पर भी उसका
0: यही
1: इफेक्ट
0: बात है
1: पड़ता
0: कि
1: है.
0: जितने भी हम देखते हैं एग्जाम्पल्स जहां बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हुए, वो तभी हो पाया जब टीम ने लीडर की विजन को अपनी विजन बनाया. यू नो नाउ इवन इफ देयर इज समबडी जो नहीं उससे एक्सेप्ट कर पा रहा या नहीं उसको मीट कर पा रहा, इट्स परफेक्टली फाइन. यू नो
1: एंड व्हेन आई रिमेन हैप्पी, वो जो नहीं मीट कर पा रहा वो भी कर लेगा,
0: धीरे
1: क्योंकि
0: धीरे
1: हम उनको वो ताकत, ये हम अगर याद रखें, ये बहुत बड़ा मंत्र है. यू नो इट्स अ वेरी पावरफुल टूल विद विच वी कैन एम्पावर पीपल अराउंड अस. माई नॉट गेटिंग डिस्टर्ब empowers others, because I accept them, they accept themselves, and then they accept me. That's the way energy flows.
0: Beautiful. In fact, this is again one very important belief system which we have to start integrating. Apna subha ka pehla kagaz pe jo pehla line hum likhenge, wo yehi ki I expect from myself to remain happy, you know, not to get disturbed. Ye agar hum pehla, to hamara index fir नहीं होने वाला जब तक हमें ये याद रहेगा. सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच.
1: ओम शांति.
0: और अपने ओम शांति अपने सभी दर्शकों से भी अब विदा लेते हैं. लेकिन बार बार यही बात आती है कि जब देखना शुरू करते हैं, एक्चुअली इट्स अमेजिंग, यू नो, जब हमने देखना शुरू किया, जब अपने काम करना शुरू कर दिया, अपने पर समझा, उसको इम्प्लीमेंट करने लग गए, तो प्रोजेक्ट जो है वो जरूर सक्सेसफुल हो रहा है. तो हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स का जो प्रोजेक्ट है वो इन दिनों खूब तेजी पर है. वो एक स्टेबिलिटी को, जिसको हम जिस लेवल पर लेकर आना चाहते हैं, वहां पर बिल्कुल पहुंचता जा रहा है. लेकिन कुछ कुछ छोटी छोटी बातें अगर अभी भी हैं जो उसको डिस्टर्ब करती हैं, आपको बिल्कुल स्वागत करते हैं. आप हमें फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर्स हैं 01242667000, 9999344555, 9999344666, 9873666555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही. लेकिन इस श्रृंखला में जो हमने समझा है, जो जाना है, जिसे इम्प्लीमेंट किया है, इसको और सुदृढ़ करते रहेंगे आने वाली कड़ियों में. अभी विदा लेते हैं. ओम शांति.

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: Assertiveness without generating anger. तभी वो रियल मायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी है और स्टेबल भी है, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब, यू नो। तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बीइंग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर। उसको जब पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल है। एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड है कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आवाज
1: सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झकास रेडिओ स्टेशन
0: पुणेरी आवाज
1: ऐकत रहा 107.8 FM
0: आनंदी रहा आणि आनंद
2: और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: नमस्कार, वेरी वार्मली वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी, ओम शांति। इन दिनों हम बात कर रहे हैं एंगर की, वो गुस्सा जिसे हम जायज मान लेते थे, लगता था कि हमें कहीं ना कहीं शक्ति दे रहा है, अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे तो हमारे काम नहीं निकलेंगे। लेकिन इस पूरी बातचीत में ये बात सामने आती है कि गुस्सा एक वो डिस्टर्बेंस है, एक वो इमोशन है जो कहीं ना कहीं हमें खुशी नहीं देता है, और उसका एंटीट्यूट या वो फीलिंग जो उसको कम कर सकती है, उसको दूर कर सकती है, वो है पीस, शांति। लेकिन क्या है शांति? क्या जिसे हम शांति मानते हैं कहीं हम उससे बहुत इतने शांत तो नहीं हो जाएंगे कि हमारा एनर्जी लेवल ही कम हो जाएगा? ऐसी कई बातें अभी भी आपके मन में होंगी, मेरे पास भी ऐसे कई सवाल हैं। तो आज एक बार फिर ये सफर शुरू करते हैं, और हर बार की तरह इस सफर की हम सफर हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी, सिस्टर शिवानी। ओम शांति,
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, पिछले दिनों हमने खूब गुस्से को खंगाला है, खूब अच्छी तरह से देखा है कि क्या क्या वो बातें हैं, क्या क्या वो चीजें हैं जो गुस्से को जनरेट करती हैं, और क्या कुछ हमारे अंदर होता है। लेकिन एक बार फिर हर बार की तरह एक रिकैप करते हैं और गुस्से के उन स्टेप्स किससे दोबारा गुजर लेते हैं जो जब शुरू होता है ये पूरा प्रोसेस, और कहाँ तक पहुँचता है।
1: सबसे पहले तो ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि गुस्सा है क्या। गुस्सा एक इमोशनल डिस्टर्बेंस है हमारी कॉन्शियसनेस में, जो क्रिएट तब होता जब वो नहीं होता जो हमें चाहिए, या वो हो जाता जो हमें नहीं चाहिए। मतलब परिस्थितियां और लोग जब हमारे कंट्रोल से बाहर और हमारे कहे अनुसार नहीं चलते, तो वो डिस्टर्बेंस हमारे अंदर क्रिएट होता। और जनरली क्योंकि हम परिस्थिति और लोगों को उसका जिम्मेवार ठहरा देते हैं, तो वी आर एबल टू जस्टिफाई आर एंगर कि वो गलत थे तो मुझे गुस्सा आया। तो आज दिन तक हमने अपने गुस्से को जस्टिफाई करते गए, और इसीलिए परिवर्तन करने की आवश्यकता भी नहीं समझी कि ये सही है, दूसरे लोग बिगड़ जाएंगे अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे, और उनकी है ही गलती तो मेरा गुस्सा करना जायज है। बट व्हाट वी डिडंट रियलाइज इज दैट एवरी टाइम वी आर इन्फ्लिक्टिंग सो मच ऑफ पेन ऑन आवरसेल्व्स। तो गुस्सा बार बार करना, या कहें एक बार भी करना सारे दिन में, तो ये अपना ही नुकसान है, दूसरे का कम लेकिन अपना बहुत ज्यादा नुकसान है। क्योंकि यहाँ जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होते वो यहाँ पर भी उसका प्रभाव पड़ता और फिर पूरे शरीर पर भी पड़ता। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये रियलाइज करना कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, इसको मैंने जनरेट किया और इसको मैं फिनिश कर सकती हूँ। तो उसको सबसे पहले उसको ओवरकम करने के लिए हम एक अवेयरनेस में चलते हैं कि जब थोड़ा सा भी अंदर चिड़चिड़ापन की फीलिंग आए, थोड़ा सा भी, कहीं कुछ मेरे कहे अनुसार नहीं चल रहा, एंड आई कैन सी ओके आई एम नॉट लाइकिंग इट, यू नो मी नॉट लाइकिंग इट इज माय फर्स्ट स्टेज ऑफ इरिटेशन। इरिटेशन थोड़ा सा अंदर आना शुरू हो गया, तो उसी टाइम वो फर्स्ट स्टेज है अवेयरनेस, जागृता कि मेरे अंदर क्या क्रिएट हो रहा है। तो अपनी क्रिएशन की शुरुआत में ही उसकी अवेयरनेस होती है। और दूसरा एक्नॉलेज करना कि यस आई एम क्रिएटिंग दिस, आपकी वजह से नहीं ये हो रहा है, आप भले जो बोल रहे हैं लेकिन ये मेरी अपनी क्रिएशन है, इसको मैं क्रिएट कर रही हूँ। और ये इसको एक्सेप्ट करना कि हाँ मुझे आ रहा है, उसके साथ युद्ध नहीं करना कि क्यों आ रहा है, आई विल हैव टू एक्सेप्ट इट क्योंकि मुझे अब उसको फिनिश करना है। तो एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है और ये मेरी अपनी क्रिएशन है, लेकिन ये मेरे अपने हाथ में है। तो अवेयरनेस क्रिएट की, एक्नॉलेज किया कि हाँ ये आ रहा है, एक्सेप्ट किया कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, और फिर उससे डिटैच हो जाए। अपने आप उस गुस्से के थॉट्स को देखना शुरू करते हैं,
0: वॉचिंग इट एंड सी इट।
1: तो व्हाट हैपेंस कि एक है कि जैसे ही हम अपनी कॉन्शियसनेस की जो एनर्जी है उसको वहां से हटा देते हैं, और वहां से हटाकर उस थॉट्स को देखना शुरू करते हैं, तो जैसे ही हम वो एनर्जी को हटाते हैं, वो जो इमोशन है वो फिनिश हो जाती है। अभी क्या है, हम उस इमोशन को एनर्जी देते हैं,
0: फ्यूल करते रहते हैं ना, वी ऑलवेज से दैट उसने हमारे एंगर को फ्यूल किया, बट आई थिंक इट्स आवर एनर्जी।
1: हम खुद जैसे एक छोटा बच्चा होता है, अगर आप वो मस्ती कर रहे हो और आप भी उसके साथ मस्ती करो तो दोनों मस्ती कर रहे हैं, लेकिन अगर आप दूर से खड़े होकर उसको देखना शुरू कर दो तो वो कॉन्शियस हो जाता है, और वो जो कर रहा था वो उसको छोड़ देता है। तो कॉन्शियसनेस की एनर्जी को उस थॉट से हटा के देखना शुरू करते हैं, वो इमोशन फिनिश हो जाती है। अभी हम क्या करते थे, उसको एनर्जी देते, क्यों बोला, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, अगली बार मैं ये देखूंगी। सो वी आर गिविंग एनर्जी टू दैट इमोशन, it builds up more and more and it can stay with me till a very very long time. To usse detach ho jayenge and then come back to my stage, to the center, कि मैं कौन। ओम शांति ये भी अगर याद रहे तो इट मीन्स मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो आई कम बैक टू माई स्टेज दैट आई एम अ पीसफुल बींग। तो अवेयरनेस, अक्नॉलेज, एक्सेप्ट के हाँ आ रहा है, फिर उसे डिटैच हो जाए और देन कम बैक टू माई ओरिजिनल स्टेज। तो कभी भी दिन में ये चिड़चिड़ापन गुस्सा अगर आए तो लेट्स गो थ्रू दिस फाइव स्टेजेस। और अगर उस टाइम नहीं कर पाते तो गुस्सा करने के बाद भी भले कर लीजिए कि आज मुझे गुस्सा आया था, क्या हुआ था। तो क्या होगा, एक दो बार गुस्सा करने के बाद करेंगे तो अगली बार
0: गुस्से के दौरान भी हो पाएंगे।
1: वो अवेयरनेस, बेसिकली वो अवेयरनेस रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। अवेयरनेस रहती है तो बाकी स्टेप्स करना बहुत इजी हो जाता है।
0: दैट्स वंडरफुल एक्चुअली सिस्टर शिवानी, बिकॉज अभी तक क्या होता आ रहा था कि हमें गुस्सा इतनी आदत में घुल चुका था कि हमें एहसास ही नहीं होता था कि हमने गुस्सा किया है। और अब क्योंकि जब पता है कि इतनी बात गुस्से की सुन चुके हैं, हम दूसरों को कहते थे मैं तो गुस्सा नहीं करता, या मुझे तो गुस्सा नहीं आता, नो आई एम वेरी पीसफुल पर्सन। बट वो जो अंदर का चिड़चिड़ापन है, जो इंटरनलाइज एंगर जिसकी हमने पहले बात की थी, सो दिस ऑल स्टेज विद अस, यू नो। सो अगेन इट मे नॉट गो कम्प्लीटली इन वन डे, बट द मोमेंट वी स्टार्ट वॉचिंग एंड गोइंग थ्रू दीज फाइव स्टेप्स, I think gradually we should be able
1: it is to... not going to go in one day. See, because why it will not go in one day? क्योंकि वो belief systems एक दिन में नहीं जाते हैं। अगर belief सारे एक दिन में टूटते हैं कि गुस्से के बिना काम हो सकता है, गुस्से से कोई result, तो एक दिन में चला जाएगा। लेकिन वो एक एक belief को finish करने में थोड़ा सा time लगता है। लेकिन the journey is very simple. You know, don't give up on yourself. चाहे आपका कितना भी कड़क संस्कार हो क्रोध का, इट कैन गो। और वो पूरी तरह से जाएगा क्योंकि अवेयरनेस चाहिए। यू नो, अवेयरनेस चाहिए, बस गुस्सा आ रहा है एंड देन इट विल गो। एंड ये जस्टिफिकेशन खत्म करनी है कि दूसरों की वजह से। जब तक वो बिलीफ सिस्टम सबसे स्ट्रांग है कि औरों की वजह से गुस्सा है, देन आई विल नॉट चेंज, देन आई विल कीप वेटिंग फॉर you to change.
0: Yes, you know, we've always been saying it's just a, you know, thought way. So again, the thought that I am responsible, ye ek sankalp, ye ek soch ki main zimmedar hu, even if uske liye apne aap ko doshi na thehra ke ki theek hai gussa hai bhi to koi baat nahi, hota ye ki hum itne guilt aur rank, matlab apne aap se gusse mein chale jate hain ki maine kyun kiya,
1: nuksan ho jata hai. Pehle gussa disturbance create hui, ab guilt create ho jata hai, fir shame ho jati hai, and fir usko protect karne ke liye, usko chhupane ke liye auron se और गुस्सा करते, यू नो, मतलब पहले गुस्सा कर देंगे, अंदर लगेगा कि मुझे करना नहीं चाहिए था, फिर और जोर से बोलेंगे कि क्यों नहीं करना चाहिए था, मुझे तो करना चाहिए था आपने, यू नो। सो इट इज जस्ट
0: बिकम्स अ
1: वेरी साइकिल प्रोसेस एंड इट जस्ट डजंट ब्रेक एनीवेयर।
0: एंड डेफिनेटली सिस्टर शिवानी, ये हम इस पे कितनी बातचीत कर चुके हैं और इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि इट कैन चेंज। लेकिन अब हम आते हैं कि हमने बात की थी इमोशन और फीलिंग की, यू नो, कि हर एक इमोशन, क्योंकि इमोशन कहीं ना कहीं हम अभी तक उसे अपनी ताकत मानते थे और हम कहते थे पॉजिटिव इमोशन और नेगेटिव इमोशन, इमोशन एक्चुअली इज, यू नो, ऑल दैट डिस्टर्बेंस जो यहाँ क्रिएट होती है, तो उसका एंटीडोट या उसका जो एक फीलिंग है जो उसके एवज में कन्वर्ट होती है या आती है, वो पीस जुड़ता है उसके साथ। लेकिन पीस से जुड़ी हुई भी बहुत भ्रांतियां हैं, बहुत सी ऐसी बिलीव कह सकते हैं हम, या बहुत से ऐसे मान्यताएं कह सकते हैं कि पीस जो है वो बहुत एनर्जी लेस हो जाता है। तो एक्चुअली बहुत सी बातें हम जानेंगे कि क्या मान्यताएं जुड़ी हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या है, व्हाट इज रियली मेंट बाय शांति या पीस।
1: पीस इज अ वर्ड व्हिच वी यूज वेरी ऑफन but rarely understood. You know, we are all looking for peace. Hamein shanti chahiye, hamein shanti chahiye. But we are not aware ke what are we looking for. To kya hoga, wo hogi bhi to pata nahi chalega ke wo hai. Actually, agar dekha jaye, to hum log sab shanti anubhav karte hain sara din mein. Lekin wo ek natural sthiti hai. लेकिन उसको हम तब रियलाइज नहीं कर पाते। हम रियलाइज किसको करते हैं, जब हम स्ट्रेस में या टेंशन में होते हैं, क्योंकि वो अननेचुरल है। You know, and at that time we say, I want peace. Peace is basically a state of the being. ये सिर्फ एक स्थिति है, मुझ आत्मा की एक स्थिति है, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि जो मेरी थॉट्स होंगे वो बहुत पॉजिटिव और फोकस्ड होंगे। अंदर एक साइलेंस होगा, एक है साइलेंस, एक है नॉइस, यू नो। तो पीस डजंट मीन कि कोई बोले नहीं, कुछ करे नहीं। बाहर से हो सकता है कि बहुत पीसफुल है, अंदर बहुत नॉइस है। और नॉइज क्या है, ये सब डिस्टर्बेंसेस, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सो पीस इज बेसिकली साइलेंस ऑफ द माइंड। तो साइलेंस ऑफ द माइंड में ये मतलब नहीं है कि जीरो थॉट्स। सम पीपल थिंक पीस साइलेंस मतलब नो थॉट्स, नो, थॉट्स फोकस्ड, आपको जिस चीज के बारे में जिस क्षण सोचना है और जितना सोचना है और जिस रूप से सोचना है बस उतना ही करना है। हमें ये प्रोग्राम अभी करना है, वन थॉट, होगा नहीं होगा, ठीक होगा नहीं होगा, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो ना हो जाए।
0: तो ये पॉजिटिविटी के साथ, यू नो, जो फोकस जो थॉट्स की आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव रहे,
1: पॉजिटिव, दे विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो बहुत फास्ट चलते हैं एंड दे विल बी मोर टुवर्ड्स वरी, एंग्जाइटी, टेंशन, फियर। तो पॉजिटिव थॉट्स बहुत फोकस्ड होंगे और उसका रिजल्ट आपके एटीट्यूड में आएगा, आपके बिहेवियर में आएगा। अगर नॉर्मल प्रैक्टिकल में भी हम देखें तो पीस इज एक्चुअली एक्सेप्टेंस, स्वीकार कर लेना कि अभी जो चीज जैसी है वैसी बिल्कुल ठीक है, बट विद द वर्किंग कि इसको आगे और ठीक किया जा सकता है, यू नो। तो अभी क्या होगा, पीस, शांति मेरे मन में तब होगी जब मैं एक्सेप्ट कर लूं कि आप अभी जो हैं जैसे हैं बिल्कुल ठीक, तो ये क्षण शांति। और फिर मैं आपको अगले क्षण के लिए आपके साथ ये डिस्कस भी कर सकती हूँ कि आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे अंदर ये चल रहा है, नहीं इनको ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये क्या पहना हुआ है, ये नहीं पहनना चाहिए, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, दिस इज पीसलेसनेस, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग यू एज यू आर। तो पीस इज के सिचुएशन जैसी है एक्सेप्ट करना, लेकिन साथ में भविष्य के लिए उसको चेंज भी करना। पीस मतलब आप जो हैं जैसे हैं आपको स्वीकार करना, इवन अगर आपका ओपिनियन
0: दिस इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क, व्हेन यू से कि आप एक्सेप्ट कर लो, मैं आपको एक्सेप्ट कर लू जैसे आप हैं, तो मैं क्या सोच के एक्सेप्ट करूं कि आप सही हैं अभी जैसी हैं अपने परिपेक्ष में, अपने लिए या मेरे लिए भी सही हैं।
1: आप अपने परिपेक्ष में, अपने दृष्टिकोण से आप जिस सिचुएशन में अभी हैं आप बिल्कुल ठीक है
0: उसके लिए,
1: एब्सोल्युटली,
0: है ना। लेकिन मेरे अगर, मेरे पास अगर कॉन्फ्लिक्ट है या मेरे विचार या मेरा परसेप्शन डिफरेंट है तो वो मेरा है, मैं एक्सेप्ट उसको भी करती हूँ, क्या यहाँ ये आ जाता है कि देन गिव इन हो गया?
1: नहीं, गिव इन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ये भी एक्सेप्ट किया कि आप जो है वैसे भी ठीक है। मैंने ये भी पहले तो, अब देखो औरों को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक हम अपने आप को, वेरी ऑफन इट इज दैट अगर हम अपने आप को नहीं एक्सेप्ट कर पाते तो अंदर बहुत टर्मोइल है, बहुत डिस्टर्बेंस है, तो औरों को एक्सेप्ट करना
0: इम्पॉसिबल।
1: तो सबसे पहले सी, इट्स अ वेरी थिन लाइन विच विल बी अंडरस्टूड विद एक्सपीरियंस, क्योंकि मोस्टली जैसे ही हम सुनते हैं, अच्छा एक्सेप्ट करना मतलब क्या, मतलब कुछ नहीं बोलना, जो है जैसा है वैसे चलता है, यू नो, दैट्स अ वेरी, वी हैव टू डू इट एंड सी इट कि ये कैसे होता है। कि अभी आप, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू टेल यू कि दिस ड्रेस इज नॉट लुकिंग नाइस, आई फील वेयर सम अदर ड्रेस। अब ये मेरा आपको बोलना कि आई थिंक आप अपनी ड्रेस चेंज कीजिए, एक है कि आपको देखते ही इस ड्रेस में मैं कहूँ कैसी पहनी है, क्या है ये, अच्छी नहीं लग रही, ये कलर इन पे, सो मच ऑफ टर्मोइल। अब ये नेगेटिव एनर्जी जब आप तक पहुंचेगी, ये पहले पहुंच जाएगी, और फिर मैं आपको शायद बहुत प्यार से भी ऊपर से बोलूं कि यू नो कानुप्रिया, आई थिंक चेंज योर ड्रेस, लेकिन आपको तब तक मेरे से इतनी नेगेटिव एनर्जी मिल चुकी होगी,
0: आई विल स्टार्ट गेटिंग इरिटेटेड,
1: एब्सोल्युटली, एंड आप बोलेंगे क्यों, मुझे तो बिल्कुल ठीक लग रही, मैं नहीं चेंज करती। क्यों? क्योंकि आपको ऑलरेडी मेरे से रिजेक्शन, क्योंकि मैंने आपको इंटरनली रिजेक्ट कर दिया, मैंने रिजेक्ट कर दिया आपको, भले मैं ऊपर से बहुत पोलाइटली बोलू कि वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर यू नो अगर तो आई ट्राई टू बी वेरी पॉलिटिकली करेक्ट इन माय वर्ड्स, बट हियर आई एम टोटली डिस्टॉर्टेड। तो वो एनर्जी ऑफ रिजेक्शन सारी आप तक पहुंच गई है, आपने उसको रिसीव किया और आपने कहा हुआ यू टू टेल मी, मुझे पता है कि मेरे लिए क्या राइट है, नो ट्रांसफॉर्मेशन और अंदर इतना टर्मोइल। नाउ एक्सेप्टेंस इज आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो पहना है वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, दिस इज नॉट जस्ट फॉर सेइंग, इट्स फॉर रियली अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग,
0: वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो यूजुअली हम क्या करते हैं, पॉलिटिकली करेक्ट रहते हैं जैसे आपने कहा, या कि कहीं उसकी भावनाओं को ठेस ना पहुंच जाए सामने वाले को, क्योंकि हमें गलत लग रहा है, और हम, दैट्स वेरी ट्रू सिस्टर शिवानी, बिकॉज एट टाइम्स वी फील कि वो गलत है, जैसे आप पेरेंट्स भी कहते हैं कि उनको फिर सुधारेंगे कैसे, जो गलत कर रहा है उनको सुधारेंगे कैसे, तो अंदर से हमें ये एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि वो अपने पर्सपेक्टिव में वो सही है।
1: एंड बिल्कुल जैसे ही हम वो, When I accept you ना, ऐसे ही कि आपने जो पहना है भले मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आए, ठीक है, अगेन दैट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विल बी देयर, बट आई एक्सेप्ट के यू लाइक इट, ठीक है, एंड आपकी चॉइस को मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, तो आई एक्सेप्ट हियर. एक्सेप्ट करने से क्या होगा, यहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, तो एनर्जी की जो क्वालिटी है वो बहुत पॉजिटिव रहेगी. तो आपको अगर मैंने इंटरनली एक्सेप्ट किया, आपको वो एक्सेप्टेंस की एनर्जी अपने आप पहुंच जाएगी. फिर ऊपर से इवन अगर मैं डायरेक्टली बोल दूं कि यू नो व्हाट, ये आप पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तो भी आप चेंज करोगे, बिकॉज आपको जो एनर्जी मिली है वो एक्सेप्टेंस की है. तो वो जो चाहिए ना हार्मनी, कि अंदर से एक्सेप्ट कर ले, फिर बाहर से आप चेंज ला सकते हैं. लेकिन अंदर से डिस्टर्ब कर लेते हैं, फिर बाहर से सोचते हैं हमने इतने प्यार से बोला, फिर भी उन्होंने नहीं.
0: अच्छा, यहाँ अटैचमेंट डिटैचमेंट वाला फैक्टर भी एक बार फिर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब हमारा कोई अपना हमें दिख रहा है कि गलत कर रहा है, तो हम कैसे ना उसको
1: हमें रोकें? अपना दिख रहा है कि वो गलत कर रहा है, जैसे ही वो थॉट आया कि वो गलत कर रहा है, रिजेक्शन, ये गलत है. सी दैट वन थॉट कि ये गलत है, उसने इतनी सारी, ये अगर आप जो कर रहे हैं वो आई फील, आप जो कर रहे हैं वो ठीक है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. अब अगर आप अपने आप को इवैल्यूएट करें, तो सारा दिन आप सुबह उठते से ही आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये डिस्टर्बेंस क्यों इतना चलता, क्योंकि एट एवरी स्टेप हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. हम लोगों को नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं, हम सिचुएशंस को नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं. पेपर इधर क्यों फेंक दिया, आज चाय में चीनी कम क्यों नहीं, ज्यादा क्यों, ऐसे क्यों, वैसे क्यों, वो अभी तक आई क्यों नहीं, वो ड्राइवर क्यों लेट हो गया, माइंड क्यों नहीं आई, खाने में आज ये क्यों बना, एट एवरी स्टेप डिस्टर्बेंस, ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ये ऐसे क्यों चल रहे हैं, जजमेंटल. हर एक के ऊपर जजमेंट पास करना इज आवर बर्थ राइट,
0: एंड एक्चुअली इट इज हार्मिंग अस. You know, अगर हमें ये समझना बहुत जरूरी है, सभी अगर हमारे दर्शक जो जुड़े हैं, कि कहीं ना कहीं ये जो हम ये सोचते हैं कि अच्छा दूसरे के लिए अच्छा नहीं है अगर हम जजमेंटल हो रहे हैं, बट आई थिंक इट्स हार्मिंग अस.
1: हार्मिंग अस बिकॉज यहाँ वो वही है, जस्ट रिमेम्बर ऑलवेज कि शांति ऑलरेडी यहाँ है. अभी मेजोरिटी हम लोग कहते हैं शांति चाहिए, नो वेयर आउटसाइड, कहीं से नहीं मिलेगी, ये शांति है. जैसे ही हम ये जजमेंटल बनना शुरू करते हैं, क्रिटिसाइज इंटरनली करना शुरू करते हैं, हम खुद अपनी शांति को
0: भंग कर रहे होते हैं.
1: तो अगर एक्सपीरियंस करना है एक दिन व्हाट इज पीस, जस्ट एक्सेप्ट एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी द वे दे आर.
0: And in fact, again, yes, you know, when we talked about it, ki antidote hai anger ka, to jahan acceptance aa jayegi, phir wahan anger ka sawal hi nahi hota, irritation ka sawal hi nahi hota, kyunki humne ye bhi dekha tha ki irritation ya anger tabhi shuru hota hai jab dusra hamare accordingly nahi kar raha ya situation nahi.
1: Kyun? Kyunki humne decide kiya tha ye right tarika hai, aap us right tarike ke sath match nahi kar rahe, to gussa kyun aaya? Kyunki andar ki shanti disturb hui. Disturbance create hua out in the form of anger. So, इसलिए peace in a very simple way is just acceptance. फिर accept करके then change. That's very important. अभी कई लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, छोड़ दिया. Accept कर लिया ना जी, वो जो है जैसे
0: है, स्वीकार है, ठीक है, तो उसके ऊपर काम करना भूल जाते हैं, हम काम नहीं करते.
1: वो अपने को भी फिर वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो अपने आप को भी चेंज करने की जरूरत नहीं समझते. एक्सेप्ट कर लिया जी, हम ऐसे ही है, हम चेंज नहीं हो सकते, दैट्स नॉट ट्रू. एक्सेप्टेंस इन दिस मोमेंट and then change for the next moment.
0: एक्चुअली सिस्टर शिवानी, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जितने हमारे पास मेल्स पे आते हैं, कि कहीं ना कहीं मैं चेंज नहीं कर सकता, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं क्यों गलत, मैं क्यों करूं, मैं चेंज क्यों करूं, मैं उनके लिए क्यों बदलूं, वो उनको बदलना चाहिए. तो यहाँ ये सवाल उठता है कि हम हमेशा उसको क्यों अपने ऊपर काम नहीं करने को तैयार.
1: लेजी, वी डोंट वांट टू वर्क, एंड सिंपल ये है कि आई एम परफेक्ट, मैं राइट हूँ. सी हम, क्योंकि एक्चुअली हर एक राइट होता है इंटरनली, वही हमने देखा था कि कोई रॉन्ग अपने आप तो करता ही नहीं है, इसीलिए दूसरे को रॉन्ग नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो रॉन्ग नहीं करते हैं, वो अपने दृष्टिकोण से राइट करते हैं. और इसीलिए आई वॉन्ट यू टू चेंज, बिकॉज आई फील आई एम राइट, यू आर रॉन्ग, एंड आई फील कि जो भी ये डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, ये आपकी वजह से क्रिएट हुआ, तो चेंज किसको होना चाहिए? आपको चेंज होना चाहिए. मैंने तो कुछ नहीं किया, और मुझे अपने आप को अगर मैं देख भी लूं रुख के बीच में, तो मुझे अपने आप को चेंज करना तो बहुत मुश्किल लगता है. औरों को बोलना तो बहुत इजी लगता है, अपने आप पर वर्क करना बहुत मुश्किल लगता है.
0: आपसे कभी बात ही नहीं की.
1: एब्सोल्युटली. तो अपनी कमजोरियों को हम ढक देते हैं, और ऊपर से फिर वो गुस्सा करके और शोर मचा के औरों के ऊपर उसको डाल देते हैं, एंड फिर बोल देते हैं अब आपको चेंज होने की जरूरत है. तो वी अवॉइड द वर्क.
0: इनफैक्ट हाँ, हम कहते हैं कि मैं तो हूँ ही ऐसा, मैं तो जानता ही हूँ कि मैं ऐसे ही हूँ, तो फिर अब ये तो समझना ही पड़ेगा, एक्सेप्ट करना.
1: जस्टिफिकेशन भी तो दे देते हैं कि मैंने गुस्सा क्यों किया, इसीलिए किया क्योंकि आपने गलती की थी, मुझे नहीं तो थोड़ी गुस्सा करना था. तो ऑलवेज द फिंगर इज आउटसाइड. क्यों? क्योंकि सबसे रॉन्ग बिलीफ सिस्टम वो ये था कि मेरी मन की स्थिति का जिम्मेवार
0: बाकी सब लोग हैं,
1: इसलिए अगर मैं डिस्टर्ब्ड हूँ तो भी जस्टिफाइड है, कोई ना कोई जिम्मेवार. मैं अपसेट हूँ तो भी कोई जिम्मेवार, मैं नाराज हूँ तो भी कोई जिम्मेवार, मैं खुश हूँ तो भी कोई जिम्मेवार.
0: सर शिवानी, जहाँ पीस की बात आती है वहाँ जो एंगर के साथ ये जुड़ा है कि भाई कहीं कोई गलती हुई है, तो पीस के साथ ही फॉरगिवनेस की भी बात आती है. तो बिकॉज पीस लीड्स टू फॉरगिवनेस, और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो फॉरगिवनेस ऑल्सो लीड्स टू पीस. तो ये दोनों एक कॉन्फ्लिक्ट, मतलब एक ऐसे दो साथ साथ चलते हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि व्हाट कम्स फर्स्ट.
1: कौन सा वाला करें तो दूसरा वाला अपने आप आ जाएगा.
0: बिल्कुल, क्षमा करना ज्यादा जरूरी है तो शांति मिलेगी, या अगर हम शांत हो जाएंगे तो हम क्षमा भी कर पाएंगे.
1: दोनों करके देख सकते हैं एक्चुअली. अगेन, नो राइट और रॉन्ग. अगर हम क्षमा कर सकते हैं, क्षमा करके भूल जाते हैं कि किसी ने कोई, हम जो समझते हैं गलती की, तो अगर हम क्षमा कर सकते हैं तो शांति अपने आप आ जाएगी. और जितना जितना हम सहज औरों को क्षमा करते जाएंगे तो शांति बनी रहेगी. तो एक ऑप्शन ये है कि क्षमा करते जाएं, अपनी शांति को वापस बरकरार लाएं. लेकिन दूसरी बात यह है कि क्षमा करें किसको. अभी तक हमें क्षमा इसलिए करना था क्योंकि गलती आपने की थी.
0: मैं इसी पे आना चाह रही थी कि जब हम क्षमा की बात करते हैं,
1: एक्चुअली द होल कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरगिवनेस इज गोइंग टू चेंज.
0: इट डज नॉट एग्जिस्ट. आई थिंक
1: इट डजंट एग्जिस्ट. Whom to forgive. अभी तक था you hurt me, then you will come to me, sorry. I will say ठीक है. Why? Because I have taken that authority कि you have hurt me, now I have to forgive you. And then after one day or two days or whatever, हम जाकर बोल देते चलो आपको माफ किया. You know? So, आपको माफ किया मतलब आपने मुझे hurt किया था, आज मैंने आपको माफ किया. लेकिन अब तो हमें समझ में आ गया कि आप तो मुझे हर्ट ही नहीं कर सकते, मैं हर्ट हुई अपनी डिस्टरबेंस की वजह से. तो क्षमा अगर करना भी है किसी को तो मुझे अपने आप को क्षमा करना है. तो जहां पीस का रियल मीनिंग समझ में आ जाता है, एंगर का कारण समझ में आ जाता है, तो वहां फॉरगिवनेस का कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल चेंज हो जाता है. बिकॉज देन आई डो नॉट हैव टू फॉरगिव एनीबडी बिकॉज एवरीवन इज फाइन द वे दे आर. इट वाज माय वीकनेस एंड आई विल ओवरकम इट, दैट्स फाइन. हु डू आई हैव टू फॉरगिव?
0: ओह दैट्स सो ब्यूटीफुल.
1: आई डोंट हैव टू फॉरगिव एनीबडी. और पीस मेंटेन करने से क्या होता है, मैं कॉन्शियसनेस अवेकेंड है ना, कुछ कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो क्लैरिटी इन थिंकिंग, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई नेगेटिव वेस्ट थॉट्स नहीं, इंटेलेक्ट भी बिल्कुल शार्प हो जाती है. तो उससे हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा फायदा होता है. एक तो सच और झूठ है ना, आजकल हम बहुत धोखा खाते हैं कि सच क्या है, झूठ क्या है, सच बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं. यू नो दिस नॉट जजमेंट करने के लिए कि आपको जज नहीं करना, लेकिन मुझे मेरे लिए तो पता होना चाहिए. वो धोखे से अपने आप को तो मुझे बचाना पड़ेगा ना कि कोई मुझे चीट करके चला जाए. तो आप गलत हैं वो बात नहीं है, लेकिन मुझे अपनी तो प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी, उसके लिए मेरी परखने की शक्ति बहुत अच्छी चाहिए. दूसरा, डे टू डे मेरी लाइफ में मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, वो भी डिसीशन पावर आज नहीं है. वी डोंट नो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग फॉर मी. तो जब हम वो शांति की स्थिति मेंटेन रखते हैं अंदर, सच और झूठ की पहचान, सही और गलत की पहचान बहुत क्लियर होने लग जाती है. और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरी फीलिंग्स, मेरी थॉट्स, मेरी इमोशंस, ये मेरी अपनी क्रिएशन है, चाहे वो कितनी भी गलत है इस टाइम, या चाहे वो कितनी भी सुंदर है, ये मेरी अपनी क्रिएशन है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और दूसरा, इंटेलेक्ट बहुत शार्प हो जाती है कि मेरे लिए सही या गलत क्या है, कोई कंफ्यूजन नहीं. क्यों? क्योंकि हमने हर एक जो है जैसा है एक्सेप्ट कर लिया, तो हमारी जो बुद्धि है वो अनबायस्ड हो जाएगी. अभी बायस्ड बहुत है, ये सही ये गलत, सारा दिन चेकिंग. तो अपने लिए क्या सही और गलत है उसको ध्यान देने का बिल्कुल मार्जिन ही नहीं है, क्योंकि सारा दिन जजमेंट बाहर की तरफ है. तो एनर्जी सारी कहाँ जा रही है, तो उसमें फिर प्रॉब्लम आ रही है.
0: बिल्कुल सिस्टर शिवानी, आज एक और एस्पेक्ट समझ में आया कि जहाँ हम, अगर आप मुझसे, आपने सवाल नहीं पूछा, लेकिन अगर आप मुझसे

हमारे फोन नंबर्स हैं 9999344555, 9999344666, 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में शांति के कुछ और स्वरूप, शांति से जुड़ी हुई कुछ ऐसी मान्यताएं जो कहीं ना कहीं ऐसी धारणाएं हैं जो कहीं ना कहीं हमें शांति के रास्ते पर ले जाने से रोकती हैं, उनको और खंगालेंगे। मुलाकात करेंगे अगली कड़ी में। दीजिए इजाजत। ओम शांति।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा

0: अनसात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माय कार इज इन माय कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटीफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू करते हैं, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।

0: You have another 8 years ahead and do serve people with the smile and open heart that you have got.
1: It is the will of God, not mine. My time out is always written already. So we don't know when I leave the world.
0: Even though you are optimistic, you are also very practical. And that's the lesson for all of us who are listening here today, that stay grounded with optimism, but also stay practical and keep moving ahead, even though you face so many challenges. And as Dr. Nalini's example we have taken here today is to be committed to a cause and to be able to make meaning out of your life is what one should be thriving for. And dear listeners, what Dr. Nalini showed us today here is a clear commitment is what one just needs to bring light, not just in their own life, but also into the lives of others. So thank you so much for tuning in and listening to all of us. And we will come back again with another guest.
1: Thank you very much.
0: Thank you so much, Dr. Nalini.
1: Thank you.
2: Dosto, ab tak aap sun rahe the Dr. Nalini ji ke saath hamari baatcheet. भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित डॉक्टर नलिनी जी हीमोफीलिया के शिकार बच्चों का एवं बड़ों का न केवल चिकित्सा करती हैं, लेकिन उनके परिवार वालों को भी कैसे इस बीमारी का सामना करना है ये सिखाती हैं। आज हीमोफीलिया सोसाइटी द्वारा कई भारत के ऐसे नागरिक हैं जिन तक अनेकों सेवाएं निःशुल्क पहुँचाई जा रही। डॉक्टर नलिनी जी ने अपने जीवन के द्वारा हमें इन चीजों का जरूर परिचय दिया है कि कभी भी अगर आपने कमिटमेंट किया है किसी लक्ष्य को, उसे ठान लिया है अपने जीवन में, तो उसका सफल होना निश्चय है। कमिटमेंट अर्थात लगन। अगर लगन के साथ कोई भी लक्ष्य लिया जाए तो सफलता पैरों को चूमती ही है। डॉक्टर नलिनी जी ने अपने सेवा भाव द्वारा, अपने मातृत्व के द्वारा और अपने चिकित्सक होने के कर्तव्य के द्वारा भारत के कई बच्चों का भविष्य बनाया है और आगे भी बनाती रहें, जैसे कि हम आपके बीच में ऐसे अनोखे मेहमानों को लेकर आते ही रहेंगे आपके इस अपने कार्यक्रम में जिसका नाम है यशस्वी भारत। सुनते रहिएगा रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, मुस्कुराते रहिएगा और कुछ न कुछ दिल से लगन से जरूर जीवन में हासिल करने का प्रयास करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।
3: खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार, अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक, सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8। आपका हार्दिक स्वागत है ज्ञान चिंतन में, एक ऐसा रेडियो कार्यक्रम जहां हम विचारों की गहराई में उतरकर ज्ञान, जीवन, समाज, संस्कृति और आध्यात्म से जुड़े विषयों पर सार्थक संवाद करते हैं। यह कार्यक्रम न केवल जानकारी देता है बल्कि सोच को नई दिशा भी प्रदान करता है। तो आइए आत्ममंथन और बौद्धिक समृद्धि की इस प्रेरक यात्रा में हमारे साथ जुड़िए और चिंतन को जीवन का हिस्सा बनाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8। आज हम एक ऐसे विषय पर चिंतन करने जा रहे हैं जो हम सभी के जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है। विषय है भाग्य की कलम आपके हाथ में। अक्सर हम अपने जीवन में यह कहते सुनाई देते हैं, मेरे भाग्य में ही नहीं था, किस्मत खराब है या जो लिखा है वही होगा। लेकिन क्या वास्तव में हमारा जीवन केवल भाग्य के भरोसे चलता है? क्या हम सिर्फ दर्शक हैं या फिर अपने जीवन के लेखक भी हैं? श्रोताओं, यदि ईमानदारी से उत्तर खोजें तो पाएंगे कि भाग्य की कलम वास्तव में हमारे हाथ में ही होती है। हमारा सोचने का तरीका, हमारे निर्णय और हमारा परिश्रम, यही हमारे भविष्य की दिशा तय करते हैं। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारास्ते, अर्थात हमारा अधिकार कर्म पर है। कर्म ही वह सही है जिससे हम अपने भाग्य के पन्नों पर शब्द लिखते हैं। जो व्यक्ति मेहनत करता है, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहता है, वही अपने भाग्य को बदलने की क्षमता रखता है। इतिहास ऐसे अनेक उदाहरणों से भरा पड़ा है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन हम सबके लिए प्रेरणा है। एक साधारण परिवार में जन्मे कलाम साहब ने कठिन परिस्थितियों को कभी अपने मार्ग की बाधा नहीं बनने दिया। उन्होंने परिश्रम, अनुशासन और सपनों की शक्ति से न केवल अपना भविष्य बदला बल्कि पूरे देश को दिशा दी। यदि वे मान लेते कि गरीबी उनका भाग्य है तो क्या वे मिसाइल मैन बन पाते? प्रिय श्रोताओं, जीवन में असफलताएं आना स्वाभाविक है, परंतु असफलता को भाग्य का दोष देना अपने भीतर झांकने से बचने का आसान तरीका है। असफलताएं हमें तोड़ने नहीं बल्कि सिखाने आती हैं। हर ठोकर हमें यह बताने आती है कि रास्ता बदलो, प्रयास बढ़ाओ, हिम्मत मत हारो। नकारात्मक सोच हमारे जीवन की सबसे बड़ी शत्रु है। जब हम बार बार अपने भाग्य को कोसते हैं तो धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। लेकिन जिस दिन हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि बदलाव की शुरुआत मुझसे ही होगी, उसी दिन भाग्य भी हमारा साथ देने लगता है। साथ ही सही समय पर सही निर्णय लेना भी उतना आवश्यक है। कई बार हम गलत फैसले ले लेते हैं और परिणाम आने पर कहते हैं किस्मत ही खराब थी, लेकिन वास्तव में वह हमारे निर्णयों का फल होता है। यदि हम सोच समझकर विवेक के साथ कदम बढ़ाएं तो सफलता के अवसर अपने आप बनने लगते हैं। श्रोताओं, जीवन एक खुली किताब की तरह है। हर नया दिन एक खाली पन्ना है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस पन्ने पर शिकायतों की कहानी लिखते हैं या संघर्ष और सफलता की प्रेरक गाथा। भाग्य कोई बंद तिजोरी नहीं है जिसकी चाबी किसी और के पास हो। वह एक कलम है और वह कलम हमारे हाथ में है। अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, भाग्य का इंतजार मत कीजिए, भाग्य का निर्माण कीजिए। मेहनत, सकारात्मक सोच और सही दिशा, यही वह ताकत है जो आपके आज को बेहतर और आपके कल को उज्जवल बना सकती है। इसी संदेश के साथ मुझे अनुमति दीजिए, फिर मिलूंगा एक नए चिंतन के साथ। बने रहें हमारे साथ पुनेरी आवाज 107.8 FM पर और सुनते रहें इसी तरह प्यार से। खुश रहें, खुशियां बांटें। प्रिय श्रोताओं, ज्ञान चिंतन के आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमें आशा है कि आज की चर्चा ने आपके मन में नए विचारों को जन्म दिया होगा और सोच को एक नई दिशा प्रदान की होगी। ज्ञान और चिंतन की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। फिर मिलेंगे ज्ञान चिंतन में एक नई सोच, एक नई दिशा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और शुभकामनाएं। खुश रहें, खुशियां बांटें।
1: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: हम दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत साल हमने अच्छे से किया, करते करते एक की नियत खराब हो गई, तो उन्होंने हमें चीट किया, हमारी दुकान के सामने एक और दुकान खोल दी। अब हमें अपनी दुकान में बैठकर चॉइस है कि हमने उनके बारे में क्या सोचना है। हम ये भी सोच सकते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ इतना बुरा हो इसको पता चले कि दुख क्या चीज होती है। कई लोग तो इतना भी कहते हैं भगवान इसको दिखाए कि इसने मेरे साथ क्या किया है। अगर भगवान है तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए कि इसको दुख कैसे मिलता है। ये भी एक तरह की सोच है। हम इतना ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं, इतनी ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं कि उनके फ्यूनरल पर भी जाके आ सकते हैं बैठे बैठे दुकान में। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव सोचने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम सोच सकते हैं। जैसे नेगेटिव सोचने की लिमिट नहीं है, वैसे किसी के लिए अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। हम ये भी सोच सकते हैं जो हुआ हमारा कोई हिसाब किताब था, पूरा हुआ, अब ये अपना बिजनेस अलग करें, मैं अलग करूं, मेरा भी बहुत अच्छा चले, इनका भी बहुत अच्छा चले, क्या मुश्किल होगा ऐसा सोचना। जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, सबसे पहला फायदा हमें होने वाला है। व्हाइट बॉल जब हम फेंकेंगे तो वो जाएगी, हिट करेगी, वापस आएगी, वो तो होगा बाद में, फेंकते हुए फायदा किसका होने वाला है। आज जब हम किसी के प्रति पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं, दर्द पकड़ के रखते हैं, नफरत पकड़ के रखते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है, मेरा। तबीयत किसकी खराब हो रही है, मेरी। घुटना किसका दर्द हो रहा है, सर्वाइकल किसका दर्द हो रहा है, मेरा। हार्ट की ब्लॉकेज किसको हो रही है, मेरे को, वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। तो हमने अगर व्हाइट बॉल भेजनी तो किसके फायदे के लिए भेजनी, अपने। हमने क्षमा करना अगर उनको, तो हमने एक्चुअली किसको क्षमा किया। दुनिया में कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो क्या हो जाएगा, पहली बार ईंट फेंकी थी इसलिए ईंट आई, अब अगर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएगा, अब ईंट का जवाब किससे भेजें।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
3: एक ख्वाब था और उस ख्वाब की एक आवाज थी। आरती उस आवाज की उंगली पकड़े एक लंबे, बहुत लंबे ख्वाब में सफर कर रही थी। एक ही ख्वाब कई बार देखा है मैंने।

0: नमस्कार, मी वर्षा उसगावकर। तुम्ही ऐकता आहात पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। आनंदित रहा आणि नेहमी सगळ्यांना आनंदित ठेवा।
1: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। वेलकम सिस्टर।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति।
2: आज मैं आपके लिए कुछ पढ़ने के लिए लाई हूँ।
1: श्योर। मुझे मालूम है आप क्या लाए होंगे।
2: मुरली।
1: ऑफ कोर्स। महावाक्य।
2: परमात्मा के महावाक्य, जिस टॉपिक पर हम पिछले कुछ दिनों से बात कर रहे थे, परखने की शक्ति। और लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कि आप किसी के घर गए और उन्होंने कुछ ऐसा व्यवहार किया जो रिस्पेक्टफुल, इन आर वोकैबुलरी ऑफ रिस्पेक्ट जो हमारी है, कि सम्मानीय नहीं था। तो आपने डिसाइड किया कि उनके घर फिर कभी नहीं जाना
1: जी।
2: और आपने एंड में कहा मैं फिर भी नहीं जाऊंगा, अभी भी कहीं नहीं जाऊंगा, उनके घर नहीं जाऊंगा फिर
1: जी।
2: से। और आपने कहा कि उन्होंने जो किया वो गलत था
1: जी।
2: तो मेरा गुस्सा होना तो नेचुरल था। तो आपने एंड में कहा लेकिन मैं फिर भी उनके घर नहीं जाऊंगा।
1: बिल्कुल
2: ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि परमात्मा हमें क्या ज्ञान सुनाते हैं इस बात के ऊपर। एंड आई जस्ट फाउंड अ मुरली।
1: आपने क्या किया मालूम है?
2: वी जस्ट फिटेड इन।
1: नहीं,
2: so
1: आपने क्या किया, सीधा सुप्रीम कोर्ट चले गए।
2: हाँ, सही बात।
1: हम दोनों का डिसीजन तो नहीं हो पाया।
2: नहीं।
1: तो लेट्स गो टू द सुप्रीम।
2: वैसे भी आप देखो, हम सब कुछ जो शेयर कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, वो ज्ञान के आधार पर है ना, जो परमात्मा डायरेक्टली
1: सुनाते हैं। फैसले में ही तो छोटे कोर्ट में डिसाइड होता है ना।
2: ठीक है।
1: तो आज सुप्रीम मतलब सुप्रीम फादर, सुप्रीम सोल।
2: परफेक्ट। तो देखते हैं शिव बाबा, निराकार परमात्मा हमें क्या महावाक्य सुनाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, ये परखने की प्रैक्टिस छोटी बात नहीं समझना। परखना जो हम लास्ट टाइम देख रहे थे,
1: ये परखने की प्रैक्टिस
2: छोटी बात नहीं समझना। कोई भी परिस्थिति को, कोई भी संकल्प वाली आत्माओं को वर्तमान और भविष्य परखने की प्रैक्टिस चाहिए। सिर्फ वर्तमान नहीं, भविष्य भी। जैसे कोई भी कर्म हम कर रहे हैं, अगर हमें परखना है कि ये सही है या ये गलत है, तो उसका सिर्फ प्रेजेंट नहीं देखना है, उसका फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस सोच के फिर परखना है, क्योंकि फ्यूचर में उसका कॉन्सिक्वेंस आएगा ना। फ्यूचर में आएगा ना कॉन्सिक्वेंस।
1: आज
2: हम लोग कई बार जब परखते हैं, निर्णय लेते हैं, तो सिर्फ प्रेजेंट का सोच के कर लेते हैं कि अभी ये सही है ना, अभी तो कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है, अभी तो खा लो ना, अभी तो बोल दो ना, अभी तो सुन। वर्तमान का देख के हम परखते हैं, भविष्य का देख कर नहीं परख रहे।
1: जैसे मैंने कहा तो ब्लैक को तो ब्लैक ही बोला, मैंने क्या बोला क्या?
2: हाँ, लेकिन भविष्य का उसका कॉन्सिक्वेंस, हमारी शक्ति कम हुई, बार बार अंदर पर चिंतन करते करते हमारी सेहत खराब हुई और हमारा उस आत्मा के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट का कार्मिक अकाउंट बन गया। तो ये भविष्य का सोचकर फिर परखना है। यथार्थ रूप से मतलब एक्यूरेटली वही परख सकता है जिनकी बुद्धि में ज्यादा व्यर्थ संकल्प नहीं चलते होंगे। उनकी बुद्धि एक ही कार्य में और एकरस स्थिति में रहेगी। मतलब जिसके अंदर ज्यादा वेस्ट और नेगेटिव थॉट्स चलेंगे, उनकी फिर परखने की शक्ति भी उतनी एक्यूरेट नहीं होगी, क्योंकि टर्बुलेंस है ना यहाँ पे, तो पिक्चर सही नहीं दिखाई देगी। अनेक तरफ बुद्धि जाने के कारण शक्तिशाली नहीं रहते हैं। वैसे भी जब बुद्धि बहुत कार्य तरफ लगी हुई होती है, तो अनुभव किया होगा बुद्धि में वीकनेस, कमजोरी आ जाती है, थकावट महसूस होती है। जनरली ऑल्सो अगर हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, मन बुद्धि बहुत ज्यादा यूज हो रही है, तो थोड़े टाइम के बाद हम कहेंगे थक गए।
1: बाबा तो बोल रहे हैं कि ज्यादा डाइवर्सिटीज में, इधर भी हाथ डाल दिया।
2: वो तो मल्टीटास्किंग के, ज्यादा नहीं सोचना लेकिन व्यर्थ नहीं सोचना। वेस्ट सोचने से भी बुद्धि की शक्ति कम
1: तो
2: हो जाएगी।
1: पिछले एपिसोड में वेस्ट ही था।
2: हाँ, सी
1: जितनी मेरी टॉकिंग थी और थिंकिंग थी, दैट वाज ऑल वेस्ट।
2: यस, वेस्ट
1: हो चुका है।
2: नॉट ओनली वेस्ट, नेगेटिव ऑल्सो।
1: या बट उसको मैं कुछ कर भी नहीं सकता ना।
2: नेगेटिव
1: ऑल गॉन,
2: बट नेगेटिव भी था ना, नेगेटिव भी था ना, अभी
1: अभी तक है,
2: अभी तक है। तो इसीलिए उस दिन का कर्मा उस दिन के लिए भी नेगेटिव था और क्योंकि फिनिश नहीं किया तो फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस उसका अभी तक वो नेगेटिव चल रहा है. तो प्रेजेंट भी फ्यूचर भी दोनों देखकर बुद्धि में वीकनेस थकावट महसूस होती है तो यथार्थ रूप से निर्णय भी नहीं कर सकेंगे.
1: सही बात
2: है ना. अगर मन बुद्धि में बहुत ज्यादा थॉट्स हैं, वेस्ट थॉट्स हैं, तो ना सही परखेंगे और ना सही निर्णय ले सकते.
1: निर्णय तक जाएंगे कहाँ?
2: क्यों निर्णय लेंगे ना?
1: चलते रहेगा.
2: निर्णय लेंगे ना? आपने निर्णय लिया मैं नहीं जाऊंगा अभी कभी उनके घर, मैं कभी नहीं बात करूंगा ऐसे, ये तो निर्णय लिया ना. तो ये निर्णय हमारे लिए यथार्थ नहीं था. थकी हुई आत्मा न परख सकेगी न निर्णय कर सकेगी. कितना भी होशियार होगा, सी दिस लाइन, कितना भी होशियार होगा तो भी थकावट में उनके परखने और निर्णय करने की शक्ति में फर्क पड़ जाएगा.
1: मैंने कहा था ना, एनीबॉडी हू हर्ट्स फॉर इंटेलिजेंस,
2: इंटेलिजेंस
1: अपने आप को
2: इंटेलिजेंट है.
1: हाँ, लेकिन
2: हाँ, देखो
1: कितना भी इंटेलिजेंट हो,
2: हाँ,
1: अगर इस तरह की इस तरह का पैटर्न करते
2: रहे,
1: इस तरह की हैबिट हो जाए,
2: हाँ,
1: कि इसने मेरे को ये नहीं पूछा, इसने चाय नहीं पूछी, इसने मुझे खुद चांदी के ग्लास में पानी पिया, मुझे स्टील के ग्लास में पिला दिया,
2: तो इतनी व्यर्थ चिंतन अगर चलेगा तो कितनी भी इंटेलिजेंट आत्मा हो लेकिन थकने के कारण, सी मतलब क्वालिटी है हमारी लेकिन थकने के कारण हम निर्णय शक्ति और परख शक्ति नहीं यूज कर पाएंगे. सारा दिन इन संकल्पों से बुद्धि थकी हुई होने के कारण निर्णय करने की शक्ति कम हो जाती है. इसीलिए विजयी नहीं बन सकते.
1: विजयी ऑन व्हाट?
2: विक्टोरियस ऑन माय ओन सेल्फ, ऑन माय ओन वीकनेस. थके हुए हैं. हार खाने का मुख्य कारण ही यही है, बुद्धि की सफाई नहीं है. हार खा लिया ना, फिर वही नेगेटिव संस्कार हावी हो गए, फिर सिचुएशन हमारे ऊपर हावी हो गई, फिर दूसरी आत्मा हमारे ऊपर हावी हो गई.
1: मैं हार खाया सिचुएशन से.
2: सिचुएशन से ही तो हार खाए, और उस आत्मा से भी हार खाए, उसके संस्कार से भी हार खाए. जब भी हम डिस्टर्ब हुए

0: किसी ना किसी से हार खाई ना।
1: अगर मैं डिसाइड किया आज के बाद आपसे बात नहीं करूंगा तो मैं हार गया।
0: नहीं, आपने डिसाइड किया आज से बात नहीं करूंगा, लेकिन उसके पीछे, उसके बाद में और कई सालों तक उसके बारे में अगर थिंकिंग जैसे अभी चल रही थी नेगेटिव वाली, वो अभी भी चल रही है, तो फिर मेरे संस्कार पावरफुल था ना टू डिस्टर्ब यू, तो हार खाई। तो विजय न होने का मुख्य कारण है बुद्धि की सफाई की कमी। जैसे उन्होंने कहते हैं हाथ की सफाई होती है, दुनिया में कहते हैं ना हाथ की सफाई है, तो परमात्मा कहते हैं आप फिर बुद्धि की सफाई से क्या नहीं कर सकते। जब वो हाथ की सफाई से इतना कुछ कर सकते हैं, तो आप बुद्धि की सफाई से क्या नहीं कर सकते हैं। नॉलेजफुल बन गए हो ना, मतलब नॉलेज तो आ गई क्या सही है क्या गलत है। व्यर्थ व साधारण को अच्छी तरह से समझ गए हो, दे ये भी परखने की शक्ति। व्यर्थ, साधारण, नेगेटिव, प्योर, इसको परख सकते हैं कि कौन सी थॉट चल रही है इस टाइम। दिस ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट कि हमारे अंदर सारा दिन में कितनी थॉट्स चल रही हैं। जैसे हम इतनी बार देखते हैं प्योर पावरफुल पॉजिटिव थॉट, एक कैटेगरी। एक थॉट जैसे ही हम क्रिएट करते हैं, उसकी फीलिंग जो है, उसकी जो वाइब्रेशन है, वो दूसरों तक तो पहुंचती है, लेकिन सबसे पहले किसको मिलती है?
1: वो हमें मिलती है। जो भी कुछ पकाते हैं
0: सबसे पहले आपको मिलती है,
1: पहले हमको मिलता है, चारों तरफ उसका एरोमा घर में फैलता है।
0: वेरी ट्रू। तो आत्मा जो थॉट क्रिएट करेगी वो वाइब्रेट होगी, बाहर जाएगी, लेकिन सबसे पहले उस आत्मा को मिलेगी। तो जितनी बार भी हम एक प्योर पावरफुल अच्छी पॉजिटिव थॉट क्रिएट करते हैं, वी कम टू नो कि हम क्या क्रिएट कर रहे हैं। फिर दूसरे टाइप ऑफ थॉट है जब हम एक नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हैं, वो भी हमें पता चल जाता है, चाहे वो दूसरे के बारे में है, चाहे वो अपने बारे में है। जैसे आपने पिछली बार कहा गिल्ट भी मुझे क्रिएट हुआ, गुस्सा भी मुझे अपने ऊपर भी आया, अपने ऊपर कोसा, तो मतलब ये सारी नेगेटिव थिंकिंग में चला गया। ये जब किया तो अपने आप को भी फील होता है, दूसरे तक भी वाइब्रेशन जाता है। ये हुआ थर्ड कैटेगरी ऑफ थॉट, जब हम नेसेसरी थॉट क्रिएट कर रहे कि मुझे ये करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे आज ये करना है, मुझे आज इनसे मिलना है, दैट इज द थर्ड टाइप ऑफ थॉट वी क्रिएट, नेसेसरी थॉट। एंड फोर्थ टाइप ऑफ थॉट वी क्रिएट, वेस्ट थॉट्स, व्यर्थ। पॉजिटिव सकारात्मक चिंतन, नेगेटिव नकारात्मक चिंतन, नेसेसरी साधारण चिंतन, एंड वेस्ट व्यर्थ चिंतन। वेस्ट चिंतन हम किसको कहेंगे? जहां हम ज्यादातर या तो जो बीत गया उसके बारे में सोच रहे हैं, या जो अभी होने वाला है।
1: लेकिन वैसे देखा जाए तो मैं हमेशा पास्ट और फ्यूचर में सोचता, अभी का थोड़ा ही कुछ सोचते।
0: तो मेजोरिटी हम यही कर रहे हैं।
1: आप रूम में खाली बैठेंगे अकेले,
0: हाँ?
1: और टीवी भी ऑन नहीं है या किताब भी नहीं पढ़ रहे और कंप्यूटर फोन कुछ नहीं है,
0: हाँ?
1: तो आप बैठ के सोचेंगे कि मैं अकेला खाली इस वक्त बैठा हूँ, आज तारीख ये है और मैं इस वक्त इतने बजे इस गली पे।
0: अच्छा, नहीं तो क्या सोचेंगे?
1: कोई भी थॉट आ जाता है, स्कूल में ऐसा था, कॉलेज में ऐसा हुआ, जब माँ जिंदा थी तो ऐसा हुआ, शूटिंग में ऐसा हुआ,
0: हाँ, मतलब
1: पता नहीं कल का बच्चे का क्या होगा,
0: हाँ,
1: और उधर वो उसका बच्चे का वो है, उसके बच्चों के आज के जमाने का क्या होगा,
0: हाँ,
1: इनकी 30 साल बाद दुनिया कैसे रहेगी।
0: तो परमात्मा कहते हैं ये दोनों टाइप ऑफ थॉट्स, या तो पास्ट या तो फ्यूचर, नॉट इन माई कंट्रोल, पावर वेस्ट, एनर्जी
1: नॉट इन माई कंट्रोल।
0: क्या
1: कि पास्ट और फ्यूचर को सोचना नहीं सोचना?
0: क्यों? जैसे आप पे ही नहीं आता है
1: फिर?
0: अभी ये भी थिंकिंग चेंज करनी है कि थॉट आप पे ही आता है, थॉट अपने आप नहीं आ रहा है।
1: मैं थोड़ी बोलता हूँ 1945 में क्या हुआ।
0: अच्छा, अगर आ भी जाए, चलो आ गया ना कि हम बैठे साइलेंट हैं।
1: 1960 में ऐसा हुआ था।
0: इट्स ओके, आ गया। बेसिकली क्या हुआ है, अंदर जो स्टोर करके रखा है मेमोरी बैंक में,
1: सब कुछ स्टोर्ड है, जब से वो संभाला
0: स्टोर्ड है ना,
1: तो एक कोई भी चीज आती है,
0: अब उसको कितनी देर उस बारे में सोचेंगे?
1: जब तक रियलाइज नहीं किया कि मैं वहाँ खोया हुआ था,
0: तो वो रियलाइजेशन।
1: मैं एक किताब पढ़ता हूँ सिस्टर, तो 3-4 पैराग्राफ के बाद एक वर्ड कुछ ऐसा आता है उसमें, या एक लाइन ऐसी आती है जो कि कोई मेरे साथ रिलेटेड किस्से की बात हुई, कुछ स्कूल आ गया या टीचर का नाम आ गया, तो वहां से कनेक्टेड सीधा थर्ड दर वहां चला जाता हूँ और ये आंख वहीं रहती है, किताब हाथ में रहती है, मैं वहां घूमता रहता हूँ। उसके बाद रियलाइज होता है कि मैं अभी तो पेज नंबर लाइन नंबर 7 पे हूँ।
0: हाँ, तो परमात्मा कहते हैं ऐसी मन बुद्धि थक जाएगी।
1: बट बिटवीन द रियलाइजेशन कि अभी तक मैं 7 लाइन ही पढ़ा और बिटवीन फर्स्ट एंड 7 के बाद फिर से शुरू करने के बीच का गैप वॉज नॉट इन माई कंट्रोल।
0: इट इज इन माई कंट्रोल वेन आई स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम टूडे। नेवर से इट्स नॉट इन माई कंट्रोल, वी कैन ओनली से आई वॉज नॉट अवेयर, मैंने ध्यान ही नहीं रखा, आज से मैं ध्यान रखूंगा। सपोज हमने एक वर्ड यहाँ पढ़ा, अभी सपोज बात तो मैं ही देखते हैं, अभी हमने मुरली की एक लाइन पढ़ी, ठीक है, और फिर उस लाइन को लेके हम दूसरी बातों पे आ गए, अभी हम आ गए, बट आई एम अवेयर कि हम ये कर रहे हैं। आई एम अवेयर, यू आर ऑल्सो अवेयर कि हम ये कर रहे हैं। हम मुरली की लाइन से जो हम परमात्मा के महावाक्य पढ़ रहे थे, हम उस लाइन से हटे, उस लाइन से एक लाइन ली, उस लाइन से हम और लाइनें, मतलब और बातें कर रहे हैं। वी आर अवेयर कि हम ये कर रहे हैं और हम जब चाहें, जिस क्षण चाहें, उसको स्टॉप कर वापस इस पर आ सकते हैं।
1: नहीं, मैं तो आपसे बात करते करते कहीं कहीं चला गया।
0: लेकिन हमें ये तो अवेयर है कि अभी हम ये नहीं पढ़ रहे, हम कुछ और बात कर रहे
1: हैं। ना कि आपको रोक के मैं बीच में सवाल पूछ रहा हूँ।
0: वी आर अवेयर ना, तो ये अवेयरनेस है ना, हम ये तो नहीं कह सकते कि हम अवेयर नहीं है।
1: हाँ, तो मैं आपका जब तक आंसर नहीं मिलेगा मुझे इस बात के क्वेश्चन का, उसके बाद फिर मैं बोलूंगा।
0: लेकिन अगर अभी आपको किसी भी क्षण लगे कि नहीं बस अभी वी हैव टू गो बैक टू दैट, तो आप एक क्षण में क्या कहेंगे?
1: मैंने बोला ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ते हैं।
0: दिस इज इट। ये सब कौन चूज करता है? तो मतलब हम सोच रहे हैं, हमें दिख गया, हम अवेयर हो गए कि नहीं बहुत ज्यादा बाहर आउट ऑफ इस टॉपिक से चले गए, स्टॉप, वापस। ये हम ही तो कर रहे हैं, यही चीज हम थिंकिंग के साथ कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं कर सकते? हम सोच रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है, इतना लंबा लंबा लंबा चला, फिर सडनली का कितनी एनर्जी वेस्ट। स्टॉप, वापस हो जाएगा। इसको भी हम थॉट मैनेजमेंट कहते हैं। पहले हम अपनी थॉट्स के बारे में अवेयर नहीं थे।
1: मनी मैनेजमेंट आती है मुझे,
0: मनी मैनेजमेंट आती है ना। हाँ, उससे बेटर
1: इधर कितना स्पेंड कर रहा हूँ, कितना फोन पे बाहर करूँ कि इंडिया के बाद तो इतना हाँ, लगेगा।
0: अच्छा, जब आप मनी मैनेजमेंट कर रहे हैं, उसमें हम क्या मैनेज करते हैं? राइट इन्वेस्टमेंट कैसी होनी चाहिए, कहाँ से कितना रिटर्न आएगा?
1: मिनिमम रुपीज में मैक्सिमम प्रॉफिट,
0: परफेक्ट। मिनिमम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम प्रॉफिट। कहीं अगर आपने ऐसा इन्वेस्ट किया जहां से आपको लगे कि उतना रिजल्ट नहीं, इनफैक्ट लॉस हो रहा है,
1: निकाल देते।
0: यही तो करना है। सपोज किसी एक बारे में सोचना शुरू किया, इन्वेस्ट कर दी एनर्जी, चल रहा है, स्टॉप हटा, दूसरे पे शुरू किया, डिफिकल्ट, स्टॉप शिफ्ट, दूसरे पे मूव ऑन किया। सपोज आपके घर में कोई फैमिली मेंबर इन्वेस्ट करे और उसमें लॉस ही होता जा रहा है, वो फिर भी उसको चेंज नहीं कर रहा कुछ भी, तो आप उसको क्या कहेंगे?
1: बोलेंगे भाई इसको हटा दे, दूसरी जगह लगा दे।
0: देखो लॉस हो रहा है, आप तो भी कुछ नहीं कर रहे, फिर भी उसी में डालते जा रहे हैं अपने आप को। लॉस हो रहा है, कितनी एनर्जी जा रही है, पावर डिप्लीट ही होती जा रही है, फिर भी तुम उसी बारे में सोच रहे हो।
1: फंड मैनेजमेंट का लॉस मालूम है मुझे, लेकिन इसमें लॉस हो रहा है वेस्ट थॉट्स में, ये नहीं मालूम था।
0: लॉस नहीं हो रहा था जब हम व्यर्थ इधर उधर इसका, और फिर उसमें उसको गुस्सा भी कर दिया, उसको गलत दी, फिर हर्ट, फिर
1: आई नेवर थॉट फ्रॉम दैट एंगल।
0: वी नेवर थॉट ना, तो वही तो सीखते हैं ना, दैट इज थॉट मैनेजमेंट ना, कि दिस इज माय वेस्टेज।
1: अब हम बात का वेस्ट हो रहे थे, पैसा तो नहीं जा रहा मेरा,
0: उससे भी वैल्यूएबल चीज जा रही है ना।
1: क्या?
0: वो एनर्जी जा रही है जो पैसा कमाती है हमारे लिए, आत्मा की शक्ति। अभी क्या सुना? जितना बुद्धि थक जाएगी उतना उसकी परखने और निर्णय करने की शक्ति कम होती जाएगी। थकेगी कैसे? साधारण और व्यर्थ चिंतन टू मच करने से।
1: तो इतना थकने से मेरी मनी मैनेजमेंट में भी
0: वही तो मैंने कहा, जो ये वो शक्ति कम हो रही है जो पैसे को भी कमाती है,
1: फिर तो ये रियल लॉस है, तो डबल लॉस है।
0: हम उस लॉस को कितना बड़ा लॉस समझते हैं ना।
1: हाँ, तो मैं उसी पे बात कर रहा हूँ।
0: ये लॉस कितना बड़ा लॉस है उसके कंपैरिजन में। पैसा जाता है, पैसा आता है, शक्ति जाती है वापस कमानी, सेहत जाती है वापस कमानी, रिश्ते जाते हैं वापस कमाने, पैसे के लॉस और प्रॉफिट को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं, ये एनर्जी तो उससे

0: जैसे डायरेक्टर बोलता रोते रोते सीन में रोना रोक के कट करके बैठ जाता हूँ, उसके बाद बोलता गड़बड़ होगी सॉरी लाइट गड़बड़ होगी दोबारा शुरू करो,
1: हाँ।
0: फिर लाइट्स ऑन फिर रोना शुरू सीन।
1: अच्छा, और अगर सपोज वो बोले रोते रोते सीन वो हुआ स्टॉप, नेक्स्ट मिनट के बाद नेक्स्ट सीन, उसमें आपको बहुत खुश होना
0: का है,
1: कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं। तो ये
0: शुरू शुरू में तो घर तक रोता हुआ जाता था।
1: नहीं नहीं, पर स्टॉप करके दूसरे सीन में चेंज कर सकते हैं?
0: अब कर सकता हूँ,
1: कर सकते,
0: लेकिन अर्लियर स्टेजेस में कभी कभी ऐसा होता था कि मैं घर तक रोता हुआ जाता था।
1: मतलब हम उस
0: था।
1: रोल में क्या हो गए,
0: खो गए थे,
1: खो गए किसी भी चीज में, इतना नहीं
0: कि
1: खो
0: प्रैक्टिस
1: जाना।
0: करते करते करते आ गया ना,
1: प्रैक्टिस करते करते आ गया ना।
0: हाँ, प्रैक्टिस करते करते स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ आ गया। स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ वॉज डिफिकल्ट इनिशियली,
1: दिस नाउ प्रैक्टिस हियर, प्रैक्टिस करते करते ये भी आ जाएगा।
0: स्विच ऑन तो ऐसे होता है मेरा,
1: अब ऐसे होता है ना, यहाँ भी अब ऐसे ही होगा, ऐसे होगा स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ, सेम करना है, सेम सेम। ये थॉट चल रही है, मैं बहता जा रहा हूँ इसके अंदर, मेरी कितनी शक्ति वेस्ट हो रही है, स्टॉप चेंज स्विच हो गया। कोई भी चीज प्रैक्टिस करते करते, अब आप देखो आपने कहा अब तो मैं ऐसे कर लेता हूँ इजिली।
0: शूटिंग में मैं चाय पी रहा हूँ, डायरेक्टर बोले एक शॉट देके आधी छोड़ के, शॉट दिया रोया धोया इमोशनल लड़ा किया करके कट, बोले ओके चलो आधी बाकी चाय पीने लगे, दोस्तों से बात करने लगे,
1: सिंपल
0: इमीडिएट हो जाता है वो तो।
1: इमीडिएट हो जाता है ना,
0: पहले पहले नहीं होता था।
1: कोई भी चीज पे प्रैक्टिस की, अभी हर एक अभी नहीं कर पाएगा इजिली, जो आप कह रहे हैं कि रोए फिर स्विच किया फिर खुश हो गए, ये हर एक नहीं कर पाएगा, जिसने प्रैक्टिस किया वो कर लेगा।
0: अच्छा एज ए टीचर आप मुझे समझाओ क्या करना है, मुझे एक थॉट आ गया।
1: आप सीन के लिए क्या करते हैं कि अभी रो रहे हैं,
0: तो कट बोल दिया डायरेक्टर, हो गया काम खत्म,
1: बस खत्म, फिर
0: मतलब मेरा काम खत्म दूसरा करूं,
1: तो उतना ही इजी है ना ये भी, उसमें कुछ करना ही नहीं। हमें लगता है हर चीज के लिए पीछे बहुत बड़ी कोई टेक्निक होगी, कोई उसकी प्रोसेस है, कोई उसकी
0: तो पेजेस की बुक पढ़नी पड़ेगी,
1: कुछ नहीं है ना। अभी इसको बोलो कट। सपोज आपको वो इंसिडेंट याद आ जाए, मैं उनके घर गया था, फिर उन्होंने मुझे गाड़ी नहीं दी, फिर वो ऐसे करते हैं, ऐसे चल रहा है, सपोज 5 मिनट बीते, 10 मिनट्स बीते, अब क्या करना है इसको चेंज करने के लिए, कितनी पावर जा रही है, स्टॉप चेंज, किसी और चीज पर सोचते हैं, कुछ करना ही नहीं, कोई टेक्निक थोड़ी है इसके पीछे, कोई टेक्निक नहीं है, कोई विधि नहीं है, स्टॉप ऑब्जर्व कि ये राइट नहीं है, स्विच चेंज करना है। इवन इफ आई हैव टू डू इट रिपीटेडली इन द बिगिनिंग, कि मैंने किया लेकिन 2 मिनट बाद फिर मुझे वही बात याद आई, फिर स्टॉप, फिर मैंने किया 5 मिनट बाद फिर वही बात याद आई, फिर स्टॉप,
0: रिटेक कट,
1: प्रैक्टिस हो जाएगी तो कितना इजी। क्योंकि अपनी इकोनॉमी, हम मैनेजमेंट पैसों की इकोनॉमी इतना करते हैं, यहाँ की इकोनॉमी वेस्ट हो रहा है, बहते ही जा रहा है। आज की लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मन बुद्धि थक जाएगी उसकी फिर परखने और निर्णय करने की शक्ति यथार्थ नहीं होगी, एक्यूरेट नहीं होगी। तो परमात्मा कहते व्यर्थ व साधारण को अच्छी तरह से समझ गए हो, मतलब पता तो चल जाता है ना कि कौन सी थॉट वेस्ट है, कौन सी थॉट पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव है, उतना पता चल गया, दैट्स व्हाट ही इज आस्किंग। तो समझने के बाद कर्म में तो स्वतः ही आना चाहिए, समझ लिया क्या वेस्ट है क्या पॉजिटिव है। वैसे भी साधारण भाषा में यही कहते हो ना, अब तो मेरी समझ में आ गया, फिर करने के बिना रह नहीं सकते हो, एक बार समझ में आ गया तो फिर करे बिना रह नहीं सकते हो। तो पहले ये चेक करो साधारण अथवा व्यर्थ क्या है,
0: ओके
1: मींस अपने थॉट्स में ऐसे नहीं होना चाहिए कि वेस्ट चल रही है और हमें लगा कि ये राइट चल रही है, उतनी अवेयरनेस पहले होनी चाहिए कि उतनी पता चल जाए, इवन अगर चल रही है लेकिन मुझे पता होना चाहिए ये कौन सी क्वालिटी की है, ये पता होना चाहिए कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, वेस्ट है एलिवेटेड है, बहुत प्योर है बहुत ऑर्डिनरी है, वो चेकिंग हो जानी चाहिए। तो वो कर सकते हैं, कभी भी व्यर्थ या साधारण को ही श्रेष्ठ तो नहीं समझ लेते हो,
0: जैसे मैंने कहा था ये तो नेचुरल है,
1: ये तो नेचुरल है,
0: तो
1: उसको
0: नहीं है,
1: तो उसको श्रेष्ठ समझ लिया, मतलब राइट समझ लिया।
0: हाँ, तो आई सेड ना मैं व्हाटएवर आई डिड सही बात है,
1: सही बात है। तो वो कौन सी स्टेज है हमारी जब हमें ये भी नहीं पता था कि क्या वेस्ट है, तो वेस्ट को ही राइट समझ लिया, जस्टिफाई

0: कर लिया। तो परमात्मा कहते हैं इसीलिए पहले पहले मुख्य है होली हंस बुद्धि। हंस बुद्धि,
1: होली हंस बुद्धि,
0: हंस बुद्धि स्वान जो परख सकता है
1: सच्चे मोती में और नकली मोती।
0: हाँ, मोती में और पत्थर में कंकर में वो परख सकता है। वो कंकर कोई नहीं उठा लेगा मोती समझकर। तो परमात्मा ने कहा आपकी बुद्धि भी होली हंस बुद्धि।
1: हमको तो ऐसे बचपन में सिखाते थे ऐसे ही, पता नहीं सच है कि झूठ, बोले दूध और पानी मिक्स कर दो तो हंस सिर्फ दूध दूध दूध दूध पी लेते, पानी छोड़ देते।
0: मतलब उसकी विशेषता है ना, उसका गुण क्या है कि मिक्सचरिटी में से भी, जहाँ मिक्स्ड भी है कोई चीज उसमें से भी वो ओरिजिनल प्योरिटी वाली चीज को खींच लेता है। इतनी होली हंस बुद्धि। तो परमात्मा कहते हैं उसमें, मतलब हंस में, स्वतः ही परखने की शक्ति आ जाती है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय तब जाता है जब उसकी परख नहीं रहती कि ये राइट है या रॉन्ग है।
1: ब्यूटिफुल।
0: व्यर्थ समय और व्यर्थ संकल्प तब जाता है जब उसकी परख नहीं रहती कि ये राइट है या रॉन्ग है। हम मोस्टली क्यों वेस्ट करते हैं ना एनर्जी और टाइम, क्योंकि हम रॉन्ग को राइट कहते हैं।
1: आप ये पढ़ रहे हैं तो इतना पावर आ रहा
0: है, पावर आती है ना, है व्यर्थ लेकिन समझते हैं कि मैं समर्थ हूँ, मैं राइट सोच रहा हूँ। कितनी पावरफुल लाइन है व्यर्थ लेकिन समझते क्या है, मैं समर्थ हूँ, मैं राइट सोच रहा हूँ, जो मैंने कहा वो ही राइट है।
1: राइट।
0: इसमें परखने की शक्ति न होने के कारण मन की शक्ति, समय की शक्ति, वाणी की शक्ति सब चली जाती है। मन की शक्ति,
1: समय की शक्ति,
0: वाणी की शक्ति सब चली जाती है। इसका कारण क्या, होली हंस बुद्धि नहीं बने हैं, मतलब श्रेष्ठ और व्यर्थ के बीच में डिफरेंस नहीं पता है। तो परमात्मा कहते सभी होली हंसों को फिर से यही इशारा दे रहे हैं कि उल्टे को उल्टा नहीं करो। अगर कोई उल्टा है, मतलब कुछ रॉन्ग भी है, तो उसको और रॉन्ग नहीं करो। ये है ही उल्टा, ये नहीं सोचो, लेकिन उल्टे को मैं सुलटा कैसे करूं ये सोचो। उल्टे को उल्टा है बोलते बोलते हम खुद भी क्या हो जाते हैं,
1: उल्टे
0: ही हो जाते हैं। लेकिन उल्टे को मैं सुलटा कैसे करूं यही सोचो। इसको कहा जाता है कल्याण की भावना, कंपैशन, श्रेष्ठ भाव, शुभ भावना से अपने व्यर्थ भाव स्वभाव और दूसरे के भाव स्वभाव को परिवर्तन करने की विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत पावरफुल लाइन है। श्रेष्ठ भाव, शुभ भावना, अपनी गुड विशेस, एलिवेटेड फीलिंग से अपने व्यर्थ भाव स्वभाव, अपनी वेस्टफुल थिंकिंग और दूसरे के भाव स्वभाव को भी परिवर्तन करने की विजय प्राप्त कर सकते हैं। समझा, पहले स्व पर विजय, फिर सर्व पर विजय, ऐसी आत्मा फिर प्रकृति पर विजय प्राप्त करेगी।
1: थैंक यू सो मच बाबा।
0: सी कि हम कभी भी रॉन्ग को ही जब तक राइट बोलेंगे तब हमारी समय, मन की एनर्जी, वाणी की एनर्जी सब वेस्ट हो जाएगी। और होली हंस बुद्धि बन, परख कर फिर अपनी शुभ भावना से अपने भी वेस्ट को खत्म किया, सामने वाली आत्मा के भी भाव स्वभाव को परिवर्तन किया, तो विजयी आत्मा बन जाएंगे।
1: एकदम क्लैरिटी आ गई दिमाग।
0: थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू।
0: ओम शांति।
1: थैंक यू।
2: While discerning our thoughts, behavior and choosing our response towards situations and people, we should see the present and also the future. Our present karma of thoughts and behaviors will have a consequence in the future. If we create too many waste and negative thoughts, then our power to discern and power to decide will be weak. If the mind and intellect is stable,

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में तो। कर्म इंद्रियों के भी गुलाम, ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सबकी गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी कि पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार हैं गाड़ियां, वो उनके कंट्रोल से चले।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा।
1: बाधाएं आती हैं आए, गिरे प्रलय की घोर घटाएं, गिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ये अद्भुत पंक्तियाँ हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित है। इस महान राजनेता और कवि का जन्म भारत के जिस प्रदेश में हुआ, वहाँ का नवाबी अंदाज और प्राचीन इतिहास अपना व्याख्यान खुद ही करता है। चलिए आपको ले चलते हैं कृष्ण और राम की भूमि और काशी की पवित्र नगरी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश भारत की जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। लखनऊ प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी और इलाहाबाद न्यायिक राजधानी है। उत्तर प्रदेश के दूसरे महत्वपूर्ण नगर आगरा, मथुरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, मेरठ, वाराणसी, गाजियाबाद, कानपुर आदि हैं। इस राज्य के पड़ोसी राज्य हैं उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। उत्तर प्रदेश के पूर्व उत्तर दिशा में नेपाल देश है। 9 नवंबर सन 2000 को इसमें से अलग करके उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारत के गणतंत्र बनने पर राज्य को अपना वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश मिला था। उत्तर प्रदेश का इतिहास जितना पुराना है उतना ही महत्वपूर्ण भी है। चलिए जानते हैं ऐसे कुछ तथ्य जो यहाँ की इमारतों, कहानियों और गलियों में दबे हैं। उत्तर प्रदेश के इतिहास को 5 कालों में बांटा जा सकता है। प्रागैतिहासिक एवं पौराणिक काल लगभग 600 ईसा पूर्व से लगभग 1200 ईसा, मुस्लिम काल लगभग 1200 से 1775 ईस्वी, ब्रिटिश काल लगभग 1775 से 1947 ईस्वी तक, स्वतंत्रता पश्चात का काल 1947 से और वर्तमान आज तक। गंगा के मैदान के बीचों बीच की अपनी स्थिति के कारण उत्तर प्रदेश समूचे उत्तरी भारत के इतिहास का केंद्र बिंदु रहा है। उत्तर वैदिक काल में इसे ब्रह्म ऋषि देश या मध्य देश के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश वैदिक काल में कई महान ऋषि मुनियों जैसे भारद्वाज, गौतम, यज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, विश्वामित्र और वाल्मीकि आदि की तपोभूमि रहा है। कई पवित्र पुस्तकों की रचना भी यहाँ हुई है। भारत के दो मुख्य महाकाव्य रामायण और महाभारत की कथा भी यहीं की है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश में 2 नए धर्म जैन और बौद्ध का विकास हुआ। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया और बौद्ध धर्म की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश के ही कुशीनगर में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश के कई नगर जैसे अयोध्या, प्रयाग, वाराणसी और मथुरा विद्या अध्ययन के लिए प्रसिद्ध केंद्र थे। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश मुस्लिम शासकों के अधीन हो गया था, जिससे हिंदू और इस्लाम धर्म के पास आने से एक नई मिलीजुली संस्कृति का विकास हुआ। तुलसीदास, सूरदास, रामानंद और उनके मुस्लिम शिष्य कबीर के अतिरिक्त अन्य कई संत पुरुषों ने हिंदी और अन्य भाषाओं के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। उत्तर प्रदेश का इतिहास लगभग 4000 वर्ष पुराना है। अब आर्य यहाँ आए और वैदिक सभ्यता का आरंभ हुआ, तभी से यहाँ का इतिहास मिलता है। आर्य सिंधु और सतलुज के मैदानी भागों में यमुना और गंगा के मैदानी भाग की ओर बढ़े। इन्होंने यमुना और गंगा के मैदानी भाग और घाघरा क्षेत्र को अपना घर बनाया। इन्हीं आर्यों के नाम पर भारत देश का नाम आर्यव्रत अथवा भरत के नाम पर भारतवर्ष पड़ा, जो कि आर्यों के एक चक्रवर्ती राजा थे।

वैदिक साहित्यों और दो महाकाव्यों रामायण व महाभारत से इस क्षेत्र के 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पहले की जानकारी मिलती है, जिसमें गंगा के मैदानों का वर्णन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत किया गया है। महाभारत की पृष्ठभूमि राज्य के पश्चिमी हिस्से हस्तिनापुर के आसपास है, जबकि रामायण की पृष्ठभूमि पूर्वी उत्तर प्रदेश राज्य में भगवान राम का जन्म स्थान अयोध्या है। राज्य में दो अन्य पौराणिक स्रोत हैं, वृंदावन व मथुरा। रामायण में हिंदुओं के भगवान राम का प्राचीन राज्य कौशल इसी क्षेत्र में था। अयोध्या कौशल राज्य की राजधानी थी। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण का जन्म उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में हुआ था। विश्व के प्राचीनतम नगरों में से एक माना जाने वाला वाराणसी शहर भी इसी प्रदेश में है। वाराणसी के समीप सारनाथ का स्तूप भगवान बुद्ध के लिए प्रसिद्ध है। समय के साथ साथ यह विशाल क्षेत्र छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया और गुप्त, मौर्य और कुषाण साम्राज्यों का भाग बन गया। 7वीं शताब्दी में कन्नौज गुप्त साम्राज्य का प्रमुख केंद्र बन गया था। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत से भारत और उत्तर प्रदेश का व्यवस्थित इतिहास आरंभ होता है, जब उत्तरी भारत में 16 महाजनपद श्रेष्ठता की दौड़ में शामिल थे। इनमें से 7 वर्तमान उत्तर प्रदेश की सीमा के अंतर्गत थे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी बनारस के निकट सारनाथ में दिया और एक ऐसे धर्म की नींव रखी जो न केवल भारत में बल्कि चीन व जापान जैसे सुदूर देशों तक भी फैला। कहा जाता है कि बुद्ध को कुशीनगर में परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, जो पूर्वी जिले देवरिया में स्थित है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6 शताब्दी ईस्वी तक उत्तर प्रदेश अपनी वर्तमान सीमा से बाहर केंद्रित शक्तियों के नियंत्रण में रहा। पहले मगध, जो वर्तमान बिहार राज्य में स्थित था, और बाद में उज्जैन, जो वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इस राज्य पर शासन कर चुके इस काल के महान शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम, जिनका शासन काल लगभग 330 से 380 ईस्वी तक रहा, व मौर्य सम्राट अशोक, जिनका शासन काल लगभग 268 या 265 238 तक रहा, समुद्रगुप्त जो लगभग 330 से 380 ईस्वी तक रहे, और चंद्रगुप्त द्वितीय जो लगभग 380 से 415 ईस्वी तक रहे। यहाँ के एक अन्य प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन थे, जिन्होंने कान्यकुब्ज, जो अब आधुनिक कन्नौज के निकट स्थित है, से समूचे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों पर शासन किया। इस काल के दौरान बौद्ध और हिंदू संस्कृति दोनों का उत्कर्ष हुआ। अशोक के शासन काल के दौरान बौद्ध कला के स्थापत्य, वास्तुशिल्प, प्रतीक अपने चरम पर पहुंचे। गुप्त काल के दौरान हिंदू कला का भी अधिकतम विकास हुआ। लगभग 647 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु के बाद हिंदूवाद के पुनरुत्थान हुआ। इस पुनरुत्थान के प्रमुख रचयिता दक्षिण भारत में जन्मे शंकर थे, जो वाराणसी पहुंचे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मैदानों की यात्रा की और हिमालय में बद्रीनाथ में प्रसिद्ध मंदिर की स्थापना की। इसे हिंदू मतावलंबी चौथा एवं अंतिम मठ मानते हैं। इस क्षेत्र में हालांकि 1000 से 1030 ईस्वी तक मुसलमानों का आगमन हो चुका था, लेकिन उत्तरी भारत में 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक के बाद ही मुस्लिम शासन स्थापित हुआ, जब मोहम्मद गोरी ने गढ़वालों, जिनका उत्तर प्रदेश पर शासन था, और अन्य प्रतिस्पर्धी वंशों को हराया। लगभग 600 वर्षों तक अधिकांश भारत की तरह उत्तर प्रदेश पर भी किसी न किसी मुस्लिम वंश का शासन रहा, जिनका केंद्र दिल्ली या उसके आसपास था। 1526 ईस्वी में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया और सर्वाधिक सफल मुस्लिम वंश मुगल वंश की नींव रखी। इस साम्राज्य ने 200 वर्षों से भी अधिक समय तक उपमहाद्वीप पर शासन किया। इस साम्राज्य का महानतम काल अकबर का काल था, जिन्होंने आगरा के पास नई शाही राजधानी फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया। उनके पोते शाहजहां ने आगरा में अपनी बेगम की याद में ताजमहल बनवाया, जो विश्व के महानतम वास्तुशिल्पीय नमूने में से एक है। शाहजहां ने आगरा व दिल्ली में भी वास्तुशिल्प की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण इमारतें बनवाई थी। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय मुगल साम्राज्य ने एक नई मिश्रित संस्कृति के विकास को प्रोत्साहित किया। अकबर इसके महानतम प्रतिपादक थे, जिन्होंने बिना किसी भेदभाव के अपने दरबार में वास्तुशिल्प, साहित्य, चित्रकला और संगीत विशेषज्ञों को नियुक्त किया था।
18वीं शताब्दी में मुगलों के पतन के साथ ही इस मिश्रित संस्कृति का केंद्र दिल्ली से लखनऊ चला गया, जो अवध के नवाब के अंतर्गत था और जहां सांप्रदायिक सद्भाव के माहौल में कला, साहित्य, संगीत और काव्य का उत्कर्ष हुआ।

लगभग 75 वर्ष की अवधि में वर्तमान उत्तर प्रदेश के क्षेत्र का ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे अधिग्रहण किया। विभिन्न उत्तर भारतीय वंशों 1775, 1798 और 1801 में नवाबों, 1803 में सिंधियों और 1816 में गोरखों से छीन गए प्रदेशों को पहले बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत रखा गया, लेकिन 1833 में इन्हें अलग करके पश्चिम उत्तर प्रांत, जो आरंभ में आगरा प्रेसिडेंसी कहलाता था, गठित किया गया। 1856 ईस्वी में कंपनी ने अवध पर अधिकार कर सन 1857 में अंग्रेजी फौज के भारतीय सिपाहियों ने बगावत कर दी। यह बगावत लगभग एक साल तक चली और धीरे धीरे यह बगावत पूरे उत्तर भारत में फैल गई। इसी बगावत को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम दिया गया। यह बगावत मेरठ शहर से शुरू हुई, जिसका कारण अंग्रेजों द्वारा गाय और सुअर की चर्बी से बने कारतूस थे। इस बगावत की वजह लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति भी थी। यह संग्राम मुख्यतः दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी और बरेली में लड़ा गया। इस संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अवध की बेगम हजरत महल, बख्त खान, नाना साहेब, तात्या टोपे आदि अनेक देशभक्तों ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश की बौद्धिक श्रेष्ठता ब्रिटिश शासन काल में भी बनी रही। सन 1902 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का नाम बदलकर यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कर दिया गया। साधारण बोलचाल की भाषा में इसे यूपी कहा गया। सन 1920 में प्रदेश की राजधानी को इलाहाबाद के स्थान पर लखनऊ बना दिया गया। प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में ही बना रहा और लखनऊ में उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ शाखा हाई कोर्ट बेंच स्थापित की गई। बाद में 1935 में इसका संक्षिप्त नाम संयुक्त प्रांत प्रचलित हो गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 12 जनवरी 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। गोविंद बल्लभ पंत इस प्रदेश के प्रमुख मुख्यमंत्री बने। अक्टूबर 1963 में सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। 1902 ईस्वी में इसका नाम बदलकर संयुक्त प्रांत कर दिया गया। 1857 से 1859 ईस्वी के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुआ विद्रोह मुख्यतः पश्चिमोत्तर प्रांत तक सीमित था। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में सैनिकों के बीच भड़का विद्रोह कुछ ही महीनों में 25 से भी अधिक शहरों में फैल गया। 1858 ईस्वी में विद्रोह के दमन के बाद पश्चिमोत्तर और शेष ब्रिटिश भारत का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित कर दिया गया और 1880 ईस्वी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के साथ संयुक्त प्रांत स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी रहा। प्रदेश ने भारत को मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू और पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी राजनीतिक नेता दिए। 1922 में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने के लिए किया गया महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन पूरे संयुक्त प्रांत में फैल गया, लेकिन चोरी चोरा गांव में हुई हिंसा के कारण महात्मा गांधी ने अस्थायी तौर पर आंदोलन को रोक दिया। संयुक्त प्रांत मुस्लिम लीग की राजनीति का भी केंद्र रहा। उत्तर प्रदेश में जन्मे एक और महान स्वतंत्रता सेनानी थे राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने फांसी मिलने से पहले जेल में ही अपनी आत्मकथा लिख डाली थी। बिस्मिल की एक अमर रचना सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, गाते हुए न जाने कितने देशभक्त फांसी के तख्ते पर झूल गए।

0: अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है।
1: 1947 में संयुक्त प्रांत नव स्वतंत्र भारतीय गणराज्य की एक प्रशासनिक इकाई बना। 2 साल बाद इसकी सीमा के अंतर्गत स्थित टिहरी गढ़वाल और रामपुर के स्वायत्त राज्यों को संयुक्त प्रांत में शामिल कर लिया गया। 1950 में नए संविधान के लागू होने के साथ ही संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया और यह भारतीय संघ का राज्य बना। स्वतंत्रता के बाद से भारत में इस राज्य की प्रमुख भूमिका रही है। इसने देश को जवाहरलाल नेहरू और उनकी बेटी इंदिरा गांधी सहित कई प्रधानमंत्री, सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव जैसे प्रमुख राष्ट्रीय विपक्षी दलों के नेता और भारतीय जनसंघ, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी कहलाई, व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता दिए हैं।

उत्तर प्रदेश के गठन के तुरंत बाद उत्तराखंड क्षेत्र जो गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र द्वारा निर्मित है उसमें समस्याएं उठ खड़ी हुई। इस क्षेत्र के लोगों को लगा कि विशाल जनसंख्या और वृद्ध भौगोलिक विस्तार के कारण लखनऊ में बैठी सरकार के लिए उनके हितों की देखरेख करना संभव नहीं है। बेरोजगारी, गरीबों और सामान्य व्यवस्था व पीने के पानी जैसी आधारभूत सुविधाओं की कमी और क्षेत्र के अपेक्षाकृत कम विकास ने लोगों को एक अलग राज्य की मांग करने पर विवश कर दिया। शुरू शुरू में विरोध कमजोर था, लेकिन 1990 के दशक में इसने जोर पकड़ा। वह आंदोलन तब और भी उग्र हो गया जब 2 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर में इस आंदोलन के एक प्रदर्शन में पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में 40 लोग मारे गए। अंततः नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश के पश्चिमोत्तर हिस्से से उत्तरांचल के नए राज्य का, जिसमें कुमाऊं और गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्र शामिल थे, गठन किया गया। सन 2000 में भारतीय संसद ने उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी, पूर्वोत्तर, उत्तर प्रदेश के मुख्यतः पहाड़ी भाग, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल को मिलाकर उत्तर प्रदेश को विभाजित कर उत्तरांचल राज्य का निर्माण किया, जिसका नाम बाद में बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तर प्रदेश की अधिकांश झीलें कुमाऊं क्षेत्र में हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख भौगोलिक तत्व इस प्रकार से हैं। आइए अब बात करते हैं यहाँ की भू आकृति की। उत्तर प्रदेश को दो विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों, गंगा के मध्यवर्ती मैदान और दक्षिणी उच्च भूमि में बांटा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 90% हिस्सा गंगा के मैदान में है। मैदान अधिकांशतः गंगा व उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ अवसादों से बने हैं। इस क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में उतार चढ़ाव नहीं है। यद्यपि मैदान बहुत उपजाऊ है, लेकिन इनकी ऊंचाइयों में कुछ भिन्नता है, जो पश्चिमी उत्तर में 305 मीटर और सुदूर पूर्व में 58 मीटर है। गंगा के मैदान की दक्षिणी उच्च भूमि अत्यधिक विच्छेदित और विषम विंध्य पर्वतमाला का एक भाग है, जो सामान्यतः दक्षिण पूर्व की ओर उठती चली जाती है। यह ऊंचाई कहीं कहीं 305 मीटर से भी अधिक होती है। उत्तर प्रदेश में अनेक नदियां हैं, जिनमें गंगा, घाघरा, गोमती, यमुना, चंबल, सोन आदि मुख्य हैं। प्रदेश के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली नदियों के उद्गम स्थान भी भिन्न भिन्न हैं। अतः उनके उद्गम स्थलों के आधार पर इन्हें निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ, गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ व दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदियाँ। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल का लगभग 2/3 भाग गंगा तंत्र की धीमी गति से बहने वाली नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी की गहरी परत से ढका है। अत्यधिक उपजाऊ यह जलोढ़ मिट्टी कहीं रेतली है तो कहीं चिकनी दोमट। राज्य के दक्षिणी भाग की मिट्टी सामान्यतः मिश्रित लाल और काली या लाल से लेकर पीली है। राज्य के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में मृदा कंकरीली से लेकर उर्वर दोमट तक है, जो महीन रेत और ह्यूमस मिश्रित है, जिसके कारण कुछ क्षेत्रों में घने जंगल भी हैं।

उत्तर प्रदेश मुख्यतः कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ की 3/4 यानी 75% से अधिक जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, जौ और गन्ना राज्य की मुख्य फसलें हैं। 1960 के दशक से गेहूं व चावल की उच्च पैदावार वाले बीजों के प्रयोग, उर्वरकों की अधिक उपलब्धता और सिंचाई के अधिक इस्तेमाल से उत्तर प्रदेश खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन गया है। पशुधन व डेयरी उद्योग आय के अतिरिक्त स्रोत हैं। उत्तर प्रदेश में भारत के किसी भी शहर के मुकाबले सर्वाधिक पशु पाए जाते हैं। हालांकि प्रति गाय दूध का उत्पादन कम है। इसके अलावा हस्तशिल्प, कालीन, पीतल की वस्तुएं, जूते, चप्पल, चमड़े व खेल का सामान राज्य के निर्यात में प्रमुखता के साथ योगदान देते हैं। भदोही व मिर्जापुर के कालीन दुनिया भर में सराहे जाते हैं। वाराणसी का रेशम व जरी का काम, मुरादाबाद की पीतल की खूबसूरत वस्तुएं, लखनऊ की चिकनकारी, नागुआ का अबनूस की लकड़ी का काम, फिरोजाबाद की कांच की वस्तुएं और सहारनपुर का नक्काशीदार लकड़ी का काम भी उल्लेखनीय है। सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों की संख्या उत्तर प्रदेश में ही सबसे अधिक है। देश के विकास में इस प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आइए अब बात करते हैं शिक्षा की, जो किसी भी राज्य के भविष्य की नींव है। उत्तर प्रदेश राज्य में 16 विश्वविद्यालय, 400 से अधिक संबद्ध महाविद्यालय, कई चिकित्सा महाविद्यालय और विशिष्ट अध्ययनों व शोध के लिए कई संस्थान हैं। राज्य में एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और काफी संख्या में पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है। यहाँ की संस्कृति पूरे देश भर में मशहूर है। आइए कुछ जाने हम भी। उत्तर प्रदेश हिंदुओं की प्राचीन सभ्यता का उद्गम स्थल है। यहाँ की संस्कृति पूरे देश भर में मशहूर है। उत्तर प्रदेश हिंदुओं की प्राचीन सभ्यता का उद्गम स्थल है। वैदिक साहित्य, महाकाव्य रामायण और महाभारत के उल्लेखनीय हिस्सों का मूल यहाँ के कई आश्रमों में है। बौद्ध हिंदू काल के ग्रंथों व वस्तुशिल्प ने भारतीय संस्कृति की विरासत में बड़ा योगदान दिया है। 1947 के बाद से भारत सरकार का चिन्ह मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए 4 सिंह युक्त स्तंभ, जो वाराणसी के निकट सारनाथ में स्थित है, पर आधारित है। वस्तुशिल्प, चित्रकारी, संगीत, नृत्य कला और 2 भाषाएं, हिंदी व उर्दू, मुगल काल के दौरान यहाँ पर फली फूली। इस काल के चित्रों में सामान्यता धार्मिक व ऐतिहासिक ग्रंथों का चित्रण है। यद्यपि साहित्य व संगीत का उल्लेख प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में किया गया है और माना जाता है कि गुप्त काल में संगीत समृद्ध हुआ। संगीत परंपरा का अधिकांश हिस्सा इस काल के दौरान उत्तर प्रदेश में विकसित हुआ। तानसेन व बैजू बावरा जैसे संगीतज्ञ मुगल शहनशाह अकबर के दरबार में थे, जो राज्य व समूचे देश में आज भी विख्यात है। भारतीय संगीत के 2 सर्वाधिक प्रसिद्ध वाद्य सितार और तबले का विकास इसी काल के दौरान इस क्षेत्र में हुआ। 18वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश में वृंदावन व मथुरा के मंदिरों में भक्तिपूर्ण नृत्य के तौर पर विकसित शास्त्रीय नृत्य शैली कथक उत्तरी भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय गीत व नृत्य भी है। उत्तर प्रदेश भारत की राजकीय भाषा हिंदी की जन्मस्थली है। शताब्दियों के दौरान हिंदी के कई स्थानीय स्वरूप विकसित हुए हैं। साहित्यिक हिंदी ने 19वीं शताब्दी तक खड़ी बोली का वर्तमान स्वरूप धारण नहीं किया था। वाराणसी के भारतेंदु हरिश्चंद्र उन अग्रणी लेखकों में से थे जिन्होंने हिंदी के इस स्वरूप का इस्तेमाल साहित्यिक माध्यम के तौर पर किया था। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। साहित्य और भारतीय रक्षा सेवाएं 2 ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें उत्तर प्रदेश निवासी गर्व कर सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास से लेकर भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, सोनलाल द्विवेदी, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, राही मासूम राजा, अज्ञेय जैसे इतने महान कवि और लेखक हुए हैं उत्तर प्रदेश में कि पूरा पन्ना ही भर जाए। उर्दू साहित्य में भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। उत्तर प्रदेश का फिराक, जोश, मलिहाबादी, अकबर इलाहाबादी, नजीर, वसीम बरेलवी,
चकबस्त जैसे अनगिनत शायर उत्तर प्रदेश ही नहीं वरन देश की शान रहे हैं। हिंदी साहित्य का क्षेत्र बहुत ही व्यापक रहा है और लुगदी साहित्य भी यहाँ खूब पढ़ा जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जन्मे नौशाद अली साहिब हिंदी फिल्म उद्योग के प्रसिद्ध संगीतकार रहे हैं, जिन्होंने लखनऊ को कुछ इस तरह अपनी पंक्तियों में संजोया। रंग नया है लेकिन घर ये पुराना है, ये कूचा मेरा जाना पहचाना है। क्या जाने क्यों उड़ गए पक्षी पेड़ों से, क्या जाने क्यों उड़ गए पक्षी पेड़ों से, भरी बहारों में गुलशन वीराना है। अपने फिल्मी जीवन काल में उन्होंने कई फिल्मों में संगीत दिया। इस महान कलाकार के बिना संगीत जगत का नाम अधूरा है। आइए सुनते हैं उनका ये।

तो चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के एक परिष्कृत शास्त्रीय नृत्य कथक की। कथक उत्तर प्रदेश का एक परिष्कृत शास्त्रीय नृत्य है जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के साथ किया जाता है। कथक नाम कथा शब्द से बना है। इस नृत्य में नर्तक किसी कहानी या संवाद को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करता है। कथक नृत्य का आरंभ 6 या 7वीं शताब्दी में उत्तर भारत में ही हुआ था। प्राचीन समय में यह एक धार्मिक नृत्य हुआ करता था जिसमें नर्तक महाकाव्य गाते थे और अभिनय करते थे। 13वीं शताब्दी तक आते आते कथक सौंदर्य परक हो गया तथा नृत्य में सूक्ष्म अभिनय एवं मुद्राओं पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। कथक में सूक्ष्म मुद्राओं के साथ ठुमरी गायन पर तबले और पखावज के साथ ताल मिलाते हुए नृत्य किया जाता है। कथक नृत्य के प्रमुख कलाकार पंडित बिरजू महाराज हैं।

0: फरी नृत्य, जांगिया नृत्य, पावरिया नृत्य, कहरवा, जोगिरा, निर्गुण, कजरी, सोहर, चैता गायन उत्तर प्रदेश की लोक संस्कृति है। लोक रंग संस्कृति समिति इन संस्कृतियों संवर्धन संरक्षण के लिए कार्यरत है। बात करें त्योहारों की तो उत्तर प्रदेश में कई रंग दिखाई देते हैं। यहाँ समय समय पर सभी धर्मों के त्योहार मनाए जाते हैं। इलाहाबाद में प्रत्येक 12वें वर्ष में कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है, जो कि संभवतः दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। इसके अतिरिक्त इलाहाबाद में प्रत्येक 6 साल बाद अर्ध कुंभ मेले का आयोजन भी किया जाता है। इलाहाबाद में ही प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में माघ मेला भी आयोजित किया जाता है, जहां बड़ी संख्या में लोग संगम में नहाते हैं। अन्य मेलों में मथुरा, वृंदावन व अयोध्या में अनेक पर्वों के मेले और झूले मेले लगते हैं, जिनमें प्रभु की प्रतिमाओं को सोने एवं चांदी के झूलों में रखकर झुलाया जाता है। ये झूला मेले लगभग एक पखवाड़े तक चलते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा नदी में डुबकी लगाना अत्यंत आस्था से परिपूर्ण है और बहुत ही पवित्र माना जाता है, और इसके लिए गढ़मुक्तेश्वर, सोनो, राजघाट, काकोरा, बिठूर, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और अयोध्या में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। आगरा जिले के बटेश्वर कस्बे में पशुओं का प्रसिद्ध मेला लगता है। बाराबंकी जिले का देवा मेला मुस्लिम संत वारिस अली शाह के कारण काफी प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ हिंदू तथा मुस्लिमों के सभी प्रमुख त्योहारों को पूरे राज्य में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। घूमने फिरने के लिए भी यहाँ कई सुंदर पर्यटन स्थल मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में सभी के लिए आकर्षण की कई चीजें हैं, जैसे आगरा का ताजमहल, यहाँ की प्राचीन तीर्थ स्थानों में वाराणसी, विंध्याचल, अयोध्या, चित्रकूट, प्रयाग, नेमिशरण, मथुरा, वृंदावन, देवा शरीफ आदि है। यहाँ फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। आगरा, अयोध्या, सारनाथ, वाराणसी, लखनऊ, झांसी, गोरखपुर, जौनपुर, कन्नौज, महोबा, देवगढ़, बिठूर और विंध्याचल हिंदू एवं मुस्लिम वास्तुशिल्प और संस्कृति के महत्वपूर्ण खजाने से भरा है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में मत्स्येंद्रनाथ पाटन नामक प्रसिद्ध देवपीठ भी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कला संग्रहालय मौजूद है। उनमें प्रमुख है लखनऊ स्थित राज्य संग्रहालय, मथुरा स्थित पुरातात्विक संग्रहालय, बौद्ध पुरातात्विक संग्रहालय, सारनाथ संग्रहालय। इसके अतिरिक्त लखनऊ स्थित कला एवं हिंदुस्तानी संगीत के महाविद्यालय और इलाहाबाद स्थित प्रयाग संगीत समिति ने देश में कला व शास्त्रीय संगीत के विकास में बहुत योगदान दिया है। नागरी प्रचारिणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन और हिंदुस्तानी अकादमी हिंदी साहित्य के विकास में सहायक रही है। यहाँ अवलोकन के लिए और कई ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थल मौजूद हैं, जैसे लखनऊ स्थित बड़ा और छोटा इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा, जामा मस्जिद, वाराणसी का दशाश्वमेध घाट, काशी विश्वनाथ मंदिर आदि यहाँ की नजाकत और नफाजत मशहूर है, तो साथ ही कई महान क्रांतिकारियों के हिम्मत की ताकत भी। यहाँ का शायराना अंदाज सभी की जुबान पर है, तो भक्ति भावना दिल में भी। उत्तर प्रदेश की गलियों से होते हुए अब हम आ पहुँचे हैं इस सफर की समाप्ति की ओर। अलविदा लेते हैं आपसे 29 राज्य एक राष्ट्र एक कहानी में। जय हिंद।
1: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
2: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है, और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा, वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माय कंट्रोल नाउ।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ना गुस्सा करने की, तो हम दिन में दो चार बार कर देते हैं। अब जितनी बार हम करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा, वो संस्कार पक्का होता जाएगा। जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है तो वो कहते हैं दिन में सिर्फ दो, तो जब तक वो दिन में दो लेंगे वो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि जितनी बार की तो वो आदत क्या होती जाएगी, पक्का। लेकिन अगर अब उन्होंने कहा तीन दिन बिल्कुल नहीं, तो वो तीन दिन में उन्होंने उस आदत को कमजोर करना शुरू किया। तो कोई भी आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है सिर्फ, कि उसको कर्म में आने नहीं देना। जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी, स्ट्रेंथन होती जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ख्वाबों का सफर आरजे सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर ख्वाबों का सफर। जी हाँ, मैं हूँ आपका हम सफर सनी, लेकर आया हूँ ये प्रोग्राम। और आज के इस शो में हम लोग कुछ यादगार गीत आपको सुनाने वाले हैं। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने एम अक्षर वाले गाने सुने थे और एम अक्षर वाले और भी बहुत सारे हैं, तो इस एपिसोड में भी हम आपको एम अक्षर वाले गाने ही सुनाएंगे। जी हाँ, कार्यक्रम की शुरुआत में आपको मैं ले चलता हूँ एक बहुत ही खूबसूरत गीत की तरफ, जैसे कि ये। जी हाँ, ये संगम इस एल्बम का गीत है जो 1964 में रिलीज हुई थी। राज कपूर और राजेंद्र कुमार पर पिक्चराइज इसकी अलग था ये खूबसूरत फिल्म, कि जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तब पूरे 4 घंटे की थी। बाद में इस फिल्म को एडिट करके छोटा किया गया, ऐसा मैंने सुना था। आप अगर पहले वाला वर्जन आप देखेंगे तो शायद 4 घंटे का हो सकता है, लेकिन अभी तो 3 घंटे का ही आपको मिलेगा। लेकिन बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। लव क्लाइमेक्स की कहानी बताई गई, दो दोस्तों के एक ही महिला से प्यार होने का जो कहानी है वो इसमें बताया गया है। और गाने बहुत खूबसूरत है क्योंकि शंकर जयकिशन का संगीत बद्ध है और मुकेश जी की खूबसूरत आवाज में ये गीत शैलेंद्र साहब का लिखा। अभी आपके लिए कार्यक्रम की शुरुआत में आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नहीं बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं
1: जज्जा

0: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है खाबों का सफर इस कार्यक्रम में। और बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना, मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना। जी हाँ, आइए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत गाना जो है आपके मन को, आपके दिल को छू गया होगा। और अब बात करते हैं 1963 की, उस समय एक फिल्म आई थी मेरे महबूब। जी हाँ, इस फिल्म में भी एक गाना है जो इस तरह का है।
1: मेरे महबूब में क्या नहीं, क्या नहीं, मेरे महबूब में क्या नहीं।
0: शकील बदाई साहब का लिखा, आशा भोसले और लता मंगेशकर ने इस गीत को गाया है। नौशाद साहब का खूबसूरत संगीत इस फिल्म का, इस गाने के लिए है। तो आइए इस गाने का लुफ्त उड़ाते हैं। और इस बीच मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, संगत का असर। जी हाँ, लेकिन इस गीत के बाद आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार। बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना। आइए, जैसे कि मैंने कहा था आपको कि एक संगत का असर इस विषय पर बात बताना चाहूंगा। तो बात ऐसा है कि एक अध्यापक थे, अपने शिष्य के साथ घूमने जा रहे थे और रास्ते में वे अपने शिष्य के अच्छी संगत की महिमा समझा रहे थे, लेकिन शिष्य इसे समझ नहीं पा रहे थे। तभी अध्यापक को लगा कि क्यों ना इसे प्रैक्टिकल में मैं बता दूं। तो उन्होंने फूलों से भरा एक गुलाब का पौधा देखा और अपने शिष्य को उस पौधे के नीचे से तत्काल एक मिट्टी का ढेला उठाकर लाने के लिए कहा। जब शिष्य मिट्टी का ढेला उठाकर लाया तो अध्यापक बोले, बच्चे इसे सूंघो। शिष्य ने ढेला सूंघा और बोला, गुरुजी इसमें तो गुलाब की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तब शिक्षक बोले, बच्चों जानते हो इस मिट्टी में यह मनमोहक महक कैसे आई? दरअसल इस मिट्टी का गुलाब के फूल टूट टूट कर गिरते रहते हैं। दरअसल इस मिट्टी पर गुलाब के फूल टूट टूट कर गिरते रहते हैं, तो मिट्टी में भी गुलाब की महक आने लगी है, जो कि ये संगत का असर है। और जिस प्रकार गुलाब की पंखुड़ियों की संगत के कारण इस मिट्टी से गुलाब की महक आने लगी है, उसी प्रकार जो व्यक्ति जैसी संगत में रहता है उसमें वैसे ही गुण आ जाते हैं। जी हाँ साथियों, बहुत ही प्यारा सा ये प्रसंग मैंने आपको सुनाया और इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव अपनी संगत अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग कहा गया है। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं फिर से आपको गानों के साथ जोड़ना चाहूंगा जो एम अक्षर वाले खूबसूरत गीत आपको सुना रहे हैं। और एक गीत महबूब इस शब्द से ही है, मेरे महबूब इस शब्द से ही है। नूर महल 1965 में एक फिल्म आई थी और इस फिल्म का ये गाना, जी हाँ, सबा अफगानी ने इस गीत को लिखा था, सुमन कल्याणपुरी ने इस गीत को आवाज दिया था और संगीतकार जानी बाबू कव्वाल थे, जो उस समय के बहुत ही पॉपुलर संगीतकार रहे। 1960s और 50s में उन्होंने संगीत दिया है। तो आइए ऐसा ही कुछ भाव भरा मेरे महबूब नजा आपके लिए अभी। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर, और मैं हूं आपका हम सफर सनी। आइए 1964 में फिर मैं ले चलता हूं। उसमें एक फिल्म आई थी जिसका नाम इंग्लिश में था मिस्टर एक्स इन मुंबई। ये नाम भी कुछ उटपटांग सा था और लोगों ने इस नाम को देखकर भी फिल्म देखने जाते थे। एक जिज्ञासा कहें, एक अंदर से उनको ऐसा होता था कि क्या है इस फिल्म में, ऐसा नाम क्यों है। तो वो नाम के कारण भी एक एडवर्टाइजमेंट हो जाता था, एक जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती और लोग फिल्म देखने जाते थे। तो आइए, इस फिल्म का एक गीत है जैसे कि ये।

जी हाँ, मेरे महबूब कयामत होगी। ये गीत आनंद बख्शी साहब ने लिखा है, किशोर कुमार साहब ने गाया है, बहुत ही खूबसूरत गाना है ये। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत बद्ध, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे का ये खूबसूरत सा गाना अभी आपके लिए। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर खाबो का सफर। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और प्रेरक बातें मैं आपको सुनाने वाला हूँ। बताया जाता है कि जैसा नजर आप बदल लेंगे वैसे आपकी कामयाबी भी मिलती है आपको। इसलिए कहा जाता है अपने नजरिया को बदले और कामयाबी को हासिल करें। कई बार चीजें हमारे पास ऐसी आ जाती है, बस हमारे सोच में अगर वो चीज आ जाती है, थोड़ा सा हम अगर उस पर चिंतन ज्यादा करते हैं और एक ही बात को दो चार लोगों से जब हम लोग पूछ लेते हैं तो सभी का विचार हमको मिल जाता है और उसमें जो सबसे उत्तम विचार है उस पर आप काम कर सकते हैं, और ऐसा ही किया जाता है जो समझदार होते हैं। तो आइए बात करते हैं, एक लड़के के मन में नई नई बातों को जानने की जिज्ञासा रहती थी और वो हमेशा लोगों से कुछ न कुछ पूछता रहता था। वो जहाँ रहता था वही पास में एक मास्टर जी भी रहते थे और मास्टर जी को ये सारी बातें पता थी कि कुछ न कुछ सवाल उसके मन में आएगा तो पूछेगा जरूर। तो एक दिन ऐसा ही हुआ, मास्टर जी के पास से गया वो लड़का और बोला, मैं कामयाब बनना चाहता हूँ सर, और मुझे कुछ ऐसा बताइए कि मैं बहुत जल्दी आसानी से कामयाबी को हासिल करूँ। तो मास्टर जी बड़े मुस्कुराए और कहा कि बेटा, मैं तुम्हें कामयाबी का रास्ता बताऊंगा। पहले तुम मेरी बकरी को सामने वाले कूटे से बांध दो। इतना कहा और तो लड़के ने सोचा, चलिए ये कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी बांध देता हूँ बकरी को रस्सी से। और वो बकरी की रस्सी लड़के के हाथ में जो मास्टर जी ने दिया था, वो रस्सी लेकर वो कूटे पे बांधने के लिए गया। वो बकरी मास्टर जी के अलावा किसी के काबू में नहीं आती थी। अब ये बात लड़के को नहीं पता, इसलिए जैसे ही उस लड़के ने रस्सी अपने हाथ में थामी वैसे ही बकरी जो है चलांग लगाकर कूद फूद करने लगी और रस्सी हाथ से छूट गया। लड़का बकरी को कूटे से बांधने की बहुत कोशिश करता रहा, पकड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन सारी जो है उसकी कोशिश विफल होती गई। और काफी कोशिश करने के बाद उस लड़के ने चतुराई से काम लिया, उसने बकरी के पैर को पकड़ लिया। पैर पकड़ जाने के बाद वो वहां से हिल नहीं पाई और लड़के ने उसे तुरंत कूटे से बांध दिया। मास्टर जी ये सब कुछ दूर से देख रहे थे और जैसे ही लड़के ने बकरी को कूटे से बांध दिया तो मास्टर जी ने बोला, शाबाश, यही है कामयाबी का रास्ता, जड़ पकड़ने से पूरा पेड़ काबू में आ जाता है। तो आशा करते हो आपको ये प्रेरक प्रसंग बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो मुझे मैसेज करके जरूर बताइए कि आपको ये बातें अच्छी लगती हैं, तो और भी इस तरह की बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो कहानी का सार यही है, कहने का तात्पर्य यही है, यदि हम किसी समस्या की जड़ पकड़ ले तो उसका हल आसानी से निकल सकता है। जैसे उस

लड़के ने इसी सूत्र को आत्मसात कर लिया और जीवन में आगे बढ़ता गया। बड़ा होकर वो लड़का खान अब्दुल गफर खान के नाम से पॉपुलर हुआ। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज। तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक और खूबसूरत गाना मेरे महबूब वाला ही आपको सुनाते हैं। शकील बदाई साहब का लिखा, मोहम्मद रफी का गाया, नौशाद साहब का संगीत से सजा, 1963 का ये गाना मेरे महबूब इस फिल्म का। खुश रहो खुशियां बांटो।

0: कसम।
1: चलिए, मैं आपको गाना थोड़ी सुना रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही गुनगुना लिया जैसे आप गुनगुना रहे हैं रेडियो सेट को सुनते हुए। तो आइए आगे बढ़ते हैं एक और गीत की तरफ, मैं आपको ले चलता हूँ। 1969 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था दो रास्ते, और ये फिल्म जो है राजेश खन्ना पर पिक्चराइज किया गया था, और इसमें शायद राजेश खन्ना का डबल रोल भी है। और ये फिल्म जो है उस समय बहुत ही हिट रहा और इसके गाने भी बहुत ही पॉपुलर रहे। आनंद बख्शी साहब ने लिखा था इस गाने को और इसको किशोर कुमार ने गाया था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत से सजा ये खूबसूरत गाना दो रास्ते इस फिल्म का अभी आपके लिए। खुश रहो, खुशियां बांटो,

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर। और चलिए बात करते हैं मेरे सामने वाली खिड़की में। जी हाँ, ये गाना जो है पड़ोसन इस एल्बम का है जो 1968 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और उस समय का ये धमाकेदार कॉमेडी हिट फिल्म रही। इसमें जितने भी कलाकार थे वो भी बड़े मंजे हुए कलाकार थे और किशोर कुमार उसके संग के साथ में सुनील दत्त जी और महमूद अली साहब, इनका जो क्लाइमेक्स है और इसके साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन इन दिनों की जो मस्ती है उसमें देखने को मिलता है और इस गाने में खास करके। तो आइए, इस फिल्म का एक गाना है जो बहुत ही खूबसूरत, जिसकी शुरुआत में हमने आपको थोड़ी सी शुरुआत में मैंने ये गीत का थोड़ा सा लाइन आपको सुनाया है और इस गीत को जितना आप ध्यान से सुनेंगे हर शब्द में कहीं ना कहीं आपको हंसी आएगी। तो आपको हंसी आए तो रोकिएगा नहीं, हंसते रहिए। और आइए, राजेंद्र कृष्ण साहब का बहुत ही खूबसूरत ये गाना लिखा, राजेंद्र कृष्ण साहब का लिखा ये बहुत ही खूबसूरत गाना किशोरदा की आवाज में राहुल देव बर्मन का संगीत से सजा पड़ोसन एस एल्बम का ये गाना अभी आपके नाम। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार। अब गाने एम वाले सुनाते सुनाते कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पे हम लोग पहुंचे हैं। कई बार जीवन मूल्य की अगर बात करें तो जीवन मूल्य पे बहुत सारी बातें हम लोग सुनते हैं, सुनाते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन जीवन मूल्यों को जीवन में उतारने के लिए आपको एकांत की जरूरत होगा। जब भी आप किसी भी एक मूल्य को लेकर चिंतन जरूर कीजिए और एकांत में खो जाइए। उसके बाद अपने आप से संकल्प करिए कि मैं इस मूल्य को अपने जीवन में आत्मसात करूंगा, इसे अपने लाइफ में यूज करूंगा। तब जाके वो मूल्य आपके कर्मों से दिखाई देगा और उसका पूरा पूरा लाभ आपको मिलेगा। है ना सही बात? तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आपको आखिरी गाना जो है इस एपिसोड का, ये गाना है।

जी हाँ, मेरे सपने में आना रे साजन। शैलेंद्र साहब ने इस गीत को लिखा है, लता मंगेशकर ने गाया है, शंकर जयकिशन का संगीत बद्ध ये खूबसूरत गाना राज हट इस एल्बम से है जो 1956 में रिलीज हुई थी। और ये गाना जो है बहुत ही अच्छा गाना है, और ये फिल्म जो थी वो ब्लैक एंड वाइट की ब्लैक एंड वाइट में है, लेकिन फिर भी लोगों ने काफी अच्छी तरह से इस फिल्म को पसंद किया था। तो चलिए, इसी के साथ मैं आपसे चाहूंगा इजाजत, और जाते जाते कहना चाहूंगा, इसको ही जीना कहते हैं तो यूं ही जी लेंगे, उफ न करेंगे लफ्ज से लेंगे, आंसू पी लेंगे गम से, अब घबराना कैसा, गम सौ बार मिला है। इसी के साथ मैं आपसे चाहूंगा इजाजत, सलाम नमस्ते खमा गनीसा, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: तो कभी था।
1: चल चल चल मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 crore सेल्स है, दिस इज द ब्रेन, ओके 10,000 crore सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 crore सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 crore सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 crore सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सेक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितने आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: हम सभी के जीवन में अगर कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट शक्ति है तो वो है हमारी निर्णय शक्ति, क्योंकि हमारे निर्णयों पर ही तो हमारा जीवन निर्भर करता है। और ये निर्णय हमारे एक्यूरेट होते हैं तब जब हम किसी परिस्थिति, समस्या या व्यक्ति विशेष के प्रभाव से मुक्त हो, डिटैच होकर निर्णय लेते हैं, क्योंकि एक प्रभाव मुक्त डिटैच्ड आत्मा ही एक्यूरेट डिसीजंस ले सकती है। प्रभावित आत्मा अर्थात जो आत्मा अटैच्ड है, उसका कोई भी डिसीजन एक्यूरेट हो ही नहीं सकता।
2: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
3: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफस्टाइल कहते हैं। Lifestyle is not only about what we are eating, drinking, wearing. Lifestyle is about what we are thinking, speaking, behaving. That's my lifestyle.
2: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन के एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: श्रोते हो, मी माझ्या एका कवितेमध्ये लिहिले की तुला पाहून फुले सुगंध विसरून जातात, तुला पाहून फुले सुगंध विसरून जातात, श्रावण सरीही बेधुंद होऊन बरसून जातात। माझ्या एका कवितेमध्ये मी लिहिले की तुला

अरे बाबा, शोर नहीं, शोर, शोर, शोर।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम याद रखें कि वो एक बार भी जब हमें गुस्सा आया, हम इस विश्व को दूषित कर रहे हैं। हम मन को, शरीर को, रिश्तों को, प्रकृति को दूषित कर रहे हैं। और अगर एक बार भी हमने आज क्रोध को त्याग कर शांति को धारण किया, तो हम सिर्फ अपने मन को सुकून नहीं, रिश्तों में प्यार नहीं, प्रकृति को सद्भावना नहीं, हम विश्व को सुंदर बनाने की सेवा कर रहे हैं। तो क्या हम सेवा करने के लिए तैयार हैं?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: इतिहास से, भूगोल से,
3: समाज से, संस्कार से,
2: आधुनिकता से और विचार से,
3: खूबियों से भरा अनोखा है मेरा भारत।
2: एक महान राष्ट्र है मेरा भारत,
4: अतुल्य भारत।
3: चलिए आपको बताते हैं
2: भारत की 69 ऐसी विशेषताओं के बारे में
3: जो बनाती हैं भारत को पूरी दुनिया से अलग
2: और प्रदान करती हैं हमें एक गर्वित भारतीय नागरिक होने का हक।
3: क्या आपको पता है कि भारतीय हॉकी खिलाड़ी लेट मेजर ध्यानचंद विश्व के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक थे। उन्होंने अपने 26 साल के करियर में 400 गोल किए। उनके हॉकी स्टिक चलाने का अंदाज कुछ खास ही था। उन्होंने इस दौरान भारत को ओलंपिक खेलों में 3 गोल्ड मेडल भी जिताए थे। हर वर्ष 29 अगस्त उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है।
2: भारत की विशेषताओं को करते रहिए सलाम।
3: पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो। जय हिंद,
2: जय भारत।

0: आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: स्वतंत्रता, लेखिका सुधापुरी। पात्र परिचय, यश, सैंडी, वेदांत, पंकज, उन्नति, आकाश, आदित्य प्रकाश, आदित्य।
2: चल चल कुछ खेलते, चल चलो। नहीं आई कहाँ से, सब शांति से बैठो। मैं ध्यान दे रहा हूँ।
3: नहीं मैं शुरू से बैठा हूँ। मैं ध्यान दे रहा
2: हूँ। बस
3: कहाँ है?
1: स्टॉप पे।
4: स्टॉप पे।
1: बस स्टॉप।
0: अरे भाई, तुम लोग कभी भी मस्ती करना नहीं छोड़ोगे?
5: कभी नहीं। ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे।
0: आहा, क्या स्वतंत्रता के मूड में आए हो तुम सब?
2: क्यों ना हो, स्वतंत्रता दिवस की तैयारी से ही उस दिन का मूड सेट हो जाता है।
3: हाँ, और जानते हो जो तुमने कहा है वो सबसे पहले किसने कहा था?
6: हाँ मैं जानता हूँ, बाल गंगाधर तिलक ने, पर स्वराज्य के लिए।
1: तो जरा बताओ तो सही, इनका आदर से क्या नाम लिया जाता है?
5: लोकमान्य।
0: बहुत जानकारी रखते हो तुम सब। ये हिंदुस्तान के एक प्रमुख नेता, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे।
7: दीदी कहते हैं ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता थे।
0: हाँ, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले ब्रिटिश राज के दौरान पूर्ण स्वराज की मांग उठाई। इनका यह कथन कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, बहुत प्रसिद्ध हुआ है। इन्होंने आदर से लोकमान्य कहा जाता है।
8: मैंने कहीं पढ़ा था कि इन्हें हिंदुस्तान राष्ट्रवाद का पिता भी कहा जाता है।
9: पर दीदी लोकमान्य का अर्थ क्या होगा?
0: पूरे संसार के लोगों द्वारा सम्मानित।
2: क्या वाकई ये लोगों को इतने अच्छे लगते थे?
0: जो भी व्यक्ति अपने देश की तरक्की के लिए काम करे वह सभी जगह सम्मानित होता है। सबसे पहले अपने देश को प्यार करोगे तभी तो संसार में किसी और को प्यार कर पाओगे।
3: समझ गए, वही प्रार्थना जो हम हमेशा स्कूल शुरू होने से पहले गाते हैं, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें।
0: मुझे ये प्रार्थना बहुत अच्छी लगती है। चलो एक बार गाते हैं। ये तुम्हारी विशेष प्रार्थना सभा में भी तो है जिसकी तुम तैयारी कर रहे हो।
6: हाँ, स्वतंत्रता दिवस की प्रार्थना सभा।

0: दीदी मुझे उस दिन एक स्पीच देनी है जिसमें किसी भी स्वतंत्रता सेनानी के विषय में कुछ बताना है।
1: तो ठीक है ना, तुम लोकमान्य तिलक के विषय में कुछ लिख लो।
2: हाँ, इनसे अच्छा और कौन होगा, इन्होंने भारतीय समाज में कई सुधार लाने के प्रयत्न किए।
0: अच्छा बताओ ना दीदी, क्या क्या?
2: वे बाल विवाह के विरुद्ध थे, उन्होंने हिंदी को संपूर्ण भारत की भाषा बनाने पर जोर दिया। महाराष्ट्र में उन्होंने सार्वजनिक गणेश उत्सव की परंपरा प्रारंभ की।
3: हाँ, वो इसलिए भी किया था ताकि लोगों तक स्वराज का संदेश पहुँचे, उस संदेश के लिए एक मंच उपलब्ध हो सके।
2: बिल्कुल ठीक, भारतीय संस्कृति परंपरा और इतिहास पर लिखे उनके लेखों से भारत के लोगों में स्वाभिमान की भावना जागृत हुई।
4: दीदी हम चारों को मिलकर एक देशभक्ति गीत गाना, कौन सा गाए कि सब में देश के लिए गर्व की भावना जाग जाए?
2: सोचने दो। अरे सोचना क्या है, सारे जहाँ से अच्छा गाना तो गाओ।
5: हाँ ये तो बहुत अच्छा रहेगा, चलो सब मिलकर गाते हैं।

0: आहा, कितना मजा आया गाने में इसे।
1: इसे किसने लिखा है?
0: सारे जहां से अच्छा या तराना है हिंदी, उर्दू भाषा में लिखी गई देश प्रेम की एक गजल है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश राज के विरोध का प्रतीक बनी थी।
2: वाह, क्या बात है।
3: आज भी देशभक्ति के गीत के रूप में कितने प्यार से इसे हमारे देश भारत में गाया जाता है।
1: इसे अनौपचारिक रूप से भारत के राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त है।
0: इस गीत को प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल ने लिखा था और सबसे पहले सरकारी कॉलेज लाहौर में पढ़कर सुनाया था। इस इकबाल की रचना बंगे दारा में शामिल है। एक मजेदार किस्सा मशहूर है।
4: क्या बताओ ना।
0: उस समय इकबाल लाहौर के सरकारी कॉलेज में लेक्चरर थे। उन्हें लाला हरदयाल ने एक सम्मेलन की अध्यक्षता करने का निमंत्रण दिया। इकबाल ने भाषण देने के बजाय यह गजल पूरी उमंग से गाकर सुनाई।
4: अच्छा?
0: यह गजल हिंदुस्तान की तारीफ में लिखी गई है और अलग अलग संप्रदायों के लोगों के बीच भाईचारे की भावना बढ़ाने को प्रोत्साहित करती है। सितार वादक पंडित रविशंकर ने इसे सुरबद्ध किया था। जब भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा से पूछा गया कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तो शर्मा ने इसे गीत की पहली पंक्ति कही।
4: सारे जहां से अच्छा।
2: चलो अब सब एक बार प्रार्थना सभा की तैयारी भी तो कर लो।
3: मुझे तो उस दिन बापू बन के जाना है और उनके कही हुई बातों को उनके ही स्टाइल में कहना है।
0: बापू के लिए तो कहा जाता है कि एक साधारण व्यक्ति कितना असाधारण हो सकता है, इसका प्रमाण है महात्मा गांधी।
3: मेरे पास उनके कोट्स या कथनों की एक लिस्ट है। चलो सब एक एक करके पढ़ते हैं, फिर ये कार्यक्रम भी हम एक साथ ही प्रस्तुत कर देंगे, अच्छा लगेगा।
1: पर बापू कौन बनेगा?
0: सब बन जाना। मैं तो कहती हूँ अच्छा हो कि सारा देश ही बन जाए, पहनावे में, सोच में, आचरण में।
1: हाँ तो प्रैक्टिस कौन करेगा?
3: ये देखो लिस्ट, चलो शुरू करते हैं।
1: विश्वास। विश्वास करना एक गुण है, अविश्वास दुर्बलता की जननी है।
2: प्रयोजन में दृढ़ विश्वास। अपने प्रयोजन में दृढ़ विश्वास रखने वाला एक सूक्ष्म शरीर इतिहास के रुख को बदल सकता है।
3: शांति। शांति का कोई रास्ता नहीं है, केवल शांति है।
1: बदला। आंख के बदले में आंख पूरे विश्व को अंधा बना देगी।
5: समय की बचत। जो समय बचाते हैं वे धन बचाते हैं, और बचाया हुआ धन कमाए हुए धन के बराबर है।
6: प्रसन्नता। केवल प्रसन्नता ही एकमात्र इत्र है, जिसे आप दूसरों पर छिड़के तो उसके कुछ बूंदे अवश्य ही आप पर पड़ती हैं।
7: विश्वास को हमेशा तर्क से तोलें। विश्वास को हमेशा तर्क से तोलना चाहिए। जब विश्वास अंधा हो जाता है तो मर जाता है।
0: बापू ने शत्रुओं की आदत पर क्या कमाल की बात कही है।
6: क्या?
0: पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आप से लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे।
1: उनके वस्त्र कितने साधारण हुआ करते थे ना।
0: हाँ, और विचार

0: ऊंचे बल्कि चरित्र के बारे में उन्होंने कहा है, व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से नहीं अपितु उसके चरित्र से आंकी जाती है।
1: आजकल प्रसन्न रहने के लिए कितनी सेल्फ हेल्प की किताबें हैं, पर खुशी पाने के लिए बापू की यह बात सबसे अच्छी लगती है। खुशी तब मिलेगी जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं सामंजस्य में हो।
0: चलो, आज काफी कुछ कर लिया है, काफी कुछ सोच लिया है। 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के लिए अब जरा सब खड़े होकर अच्छी तरह से राष्ट्रगान तो गाओ।
2: हाँ हाँ।

0: पुणेरी आवाज 107.8 FM खुश रहो खुशियां बांटो।
1: 0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुणेरी आवाज 107.8, खुश रहो खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। आज का हमारा विशेष कार्यक्रम समर्पित है स्वतंत्रता दिवस को। यह दिन हमें याद दिलाता है उन वीरों की कुर्बानियों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आजादी दिलाई। आजादी केवल शब्द नहीं बल्कि हमारी अस्मिता, हमारी पहचान और हमारी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, ये गीत हमें उन शहीदों को याद दिलाता है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। स्वतंत्र दिवस पर इस गीत की गुंज हमें यह एहसास कराती है कि आजादी केवल एक उपहार नहीं बल्कि बलिदान की अमूल्य धरोहर है। तो दोस्तों, सुनते हैं एक सुंदर और प्यारा गीत।

दोस्तों, इस मूल्यवान दिवस पर स्वतंत्रता संग्राम का स्मरण होना बहुत ही जरूरी है। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो या महात्मा गांधी का सत्याग्रह आंदोलन, हर संघर्ष ने हमें यह सिखाया है कि आजादी बलिदान से मिलती है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे वीरों ने हंसते हंसते फांसी का फंदा स्वीकार किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का आह्वान किया। यह इतिहास हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने देश के प्रति कर्तव्य निभाएंगे। दोस्तों, अभी हमने संग्राम की गाथा को याद किया। 1857 का प्रथम संग्राम, महात्मा गांधी का सत्याग्रह, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का बलिदान और नेताजी का आह्वान, इन सब ने हमें यह सिखाया है कि आजादी बलिदान से मिलती है। इसी भावना को सुरों में पिरोया गया है फिल्म हकीकत के उस अमर गीत में, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यह गीत हमें याद दिलाता है कि शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें स्वतंत्रता दी। हर बार जब यह गीत गुंजता है तो दिल में गर्व और आंखों में आंसू दोनों साथ आते हैं। तो दोस्तों, सुनते हैं यह गीत।

तो दोस्तों, स्वतंत्रता का अर्थ केवल अंग्रेजों से मुक्ति नहीं है, यह है विचारों की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार और समानता का संकल्प। आज हमें यह देखना है कि हम अपने देश को भ्रष्टाचार, गरीबी और अशिक्षा से मुक्त करें। सच्ची आज़ादी वही है जब हर नागरिक खुशहाल और सुरक्षित जीवन जी सके। स्वतंत्रता हमें केवल अधिकार नहीं देती, बल्कि यह हमें जिम्मेदारी भी सौंपती है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने समाज को बेहतर बनाए, अपने देश को प्रगति की ओर ले जाए। इसी संदेश को सुरों में पिराया गया है फिल्म जागृति के इस प्रेरणादायी गीत में, जागो मोहन प्यारे, जागो मोहन प्यारे। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस केवल उत्सव नहीं है, यह उन वीरों की याद का दिन है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आजादी दिलाई। लता मंगेशकर जी का यह अमर गीत ए मेरे वतन के लोगों हर बार हमें रुला देता है। यह गीत हमें याद दिलाता है कि हमारी आजादी शहीदों

के रक्त से रंजित है। उनकी कुर्बानियों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। हर स्वर में यह एहसास करता है कि आजादी की कीमत बहुत बड़ी है और हमें इसे संजो कर रखना है। आइए शहीदों को नमन करते हुए सुनते हैं, हे मेरे वतन के लोगों।

तो दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस हमें ये याद दिलाता है कि आजादी के साथ जिम्मेदारी जुड़ी है। हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, लेकिन साथ ही कर्तव्य भी। हम सबका संकल्प होना चाहिए कि हम अपने देश को स्वच्छ, सशक्त और एकजुट बनाएं। इसी जिम्मेदारी और संघर्ष की भावनाओं को सुरों में पिरोया गया है फिल्म जागृति के इस प्रेरणादायी गीत में। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। यह गीत हमें याद दिलाता है कि आजादी कितनी कठिनाइयों और बलिदानों के बाद मिली है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस स्वतंत्रता को संजोग और आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित सौंपे। तो आइए सुनते हैं ये गीत, हम लाए तूफान से कश्ती निकाल के।

0: को रखना मेरे।
1: स्वतंत्रता दिवस केवल एक उत्सव नहीं बल्कि यह आत्मचिंतन का अवसर है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि आज़ादी हमें कितने संघर्ष और बलिदानों के बाद मिली है। हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, लेकिन साथ ही कर्तव्य भी सौंपे हैं। आइए सब मिलकर यह संकल्प ले कि हम अपने देश को स्वच्छ, सशक्त और एकजुट बनाएंगे। हर नागरिक का प्रयास ही भारत को महान बनाता है। आप सुन रहे थे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। सभी भारतवासियों को रेडियो पुनेरी आवाज की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड्स डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप वो उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर, ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड and it comes back to my mind later on. शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब my mind, ये हमारा एक्सरे है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, वेरी मॉम्बी मॉम वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी, ओम शांति। इन दिनों हम बात कर रहे हैं एंगर की, वो गुस्सा जिसे हम जायज मान लेते थे, लगता था कि हमें कहीं ना कहीं शक्ति दे रहा है, अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे तो हमारे काम नहीं निकलेंगे। लेकिन इस पूरी बातचीत में ये बात सामने आती है कि गुस्सा एक वो डिस्टर्बेंस है, एक वो इमोशन है जो कहीं ना कहीं हमें खुशी नहीं देता है, और उसका एंटीडोट या वो फीलिंग जो उसको कम कर सकती है, उसको दूर कर सकती है, वो है पीस, शांति। लेकिन क्या है शांति? क्या जिसे हम शांति मानते हैं कहीं हम उससे बहुत इतने शांत तो नहीं हो जाएंगे कि हमारा एनर्जी लेवल ही कम हो जाएगा? ऐसी कई बातें अभी भी आपके मन में होंगी, मेरे पास भी ऐसे कई सवाल हैं। तो आज एक बार फिर ये सफ़र शुरू करते हैं, और हर बार की तरह इस सफ़र की हम सफ़र हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी, सिस्टर शिवानी। ओम शांति,
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, पिछले दिनों हमने खूब गुस्से को खंगाला है, खूब अच्छी तरह से देखा है कि क्या क्या वो बातें हैं, क्या क्या वो चीजें हैं जो गुस्से को जनरेट करती हैं, और क्या कुछ हमारे अंदर होता है। लेकिन एक बार फिर हर बार की तरह एक रिकैप करते हैं और गुस्से के उन स्टेप्स किससे दोबारा गुजर लेते हैं जो जब शुरू होता है ये पूरा प्रोसेस और कहाँ तक पहुँचता है।
1: सबसे पहले तो ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि गुस्सा है क्या। गुस्सा एक इमोशनल डिस्टर्बेंस है हमारी कॉन्शियसनेस में, जो क्रिएट तब होता जब वो नहीं होता जो हमें चाहिए, या वो हो जाता जो हमें नहीं चाहिए। मतलब परिस्थितियां और लोग जब हमारे कंट्रोल से बाहर और हमारे कहे अनुसार नहीं चलते, तो वो डिस्टर्बेंस हमारे अंदर क्रिएट होता। और जनरली क्योंकि हम परिस्थितियों और लोगों को उसका जिम्मेवार ठहरा देते हैं, तो वी आर एबल टू जस्टिफाई आवर एंगर कि वो गलत थे तो मुझे गुस्सा आया। तो आज दिन तक हमने अपने गुस्से को जस्टिफाई करते गए, और इसीलिए परिवर्तन करने की आवश्यकता भी नहीं समझी कि ये सही है, दूसरे लोग बिगड़ जाएंगे अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे, और उनकी है ही गलती तो मेरा गुस्सा करना जायज है। बट व्हाट वी डिडंट रियलाइज इज दैट एवरी टाइम वी आर इन्फ्लिक्टिंग सो मच ऑफ पेन ऑन आवरसेल्व्स। तो गुस्सा बार बार करना, या कहें एक बार भी करना सारे दिन में, तो ये अपना ही नुकसान है, दूसरे का कम लेकिन अपना बहुत ज्यादा नुकसान है। क्योंकि यहाँ जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती वो यहाँ पर भी उसका प्रभाव पड़ता और फिर पूरे शरीर पर भी पड़ता। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये रियलाइज करना कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, इसको मैंने जनरेट किया और इसको मैं फिनिश कर सकती हूँ। तो उसको सबसे पहले उसको ओवरकम करने के लिए हम एक अवेयरनेस में चलते हैं कि जब थोड़ा सा भी अंदर चिड़चिड़ापन की फीलिंग आए, थोड़ा सा भी कहीं कुछ मेरे कहे अनुसार नहीं चल रहा, एंड आई कैन सी ओके आई एम नॉट लाइकिंग इट, यू नो मी नॉट लाइकिंग इट इज माय फर्स्ट स्टेज ऑफ इरिटेशन। इरिटेशन थोड़ा सा अंदर आना शुरू हो गया, तो उसी टाइम वो फर्स्ट स्टेज है अवेयरनेस, जागृता कि मेरे अंदर क्या क्रिएट हो रहा है। तो अपनी क्रिएशन की शुरुआत में ही उसकी अवेयरनेस होती है, और दूसरा एक्नॉलेज करना कि यस आई एम क्रिएटिंग दिस, आपकी वजह से नहीं ये हो रहा है, आप भले जो बोल रहे हैं बोल रहे हैं, लेकिन ये मेरी अपनी क्रिएशन है, इसको मैं क्रिएट कर रही हूँ, और ये इसको एक्सेप्ट करना कि हाँ मुझे आ रहा है। उसके साथ युद्ध नहीं करना कि क्यों आ रहा है, आई विल हैव टू एक्सेप्ट इट क्योंकि मुझे अब उसको फिनिश करना है। तो एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है, और ये मेरी अपनी क्रिएशन है, लेकिन ये मेरे अपने हाथ में है। तो अवेयरनेस क्रिएट की, एक्नॉलेज किया कि हाँ ये आ रहा है, एक्सेप्ट किया कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, और फिर उससे डिटैच हो जाए। अपने आप उस गुस्से के थॉट्स को देखना शुरू कर दे,
0: वॉच इट एंड सी इट।
1: तो व्हाट हैपेंस कि एक है कि जैसे ही हम अपनी कॉन्शियसनेस की जो एनर्जी है उसको वहां से हटा देते हैं, और वहां से हटाकर उस थॉट्स को देखना शुरू करते हैं, तो जैसे ही हम वो एनर्जी को हटाते हैं वो जो इमोशन है वो फिनिश हो जाती है। अभी क्या है, हम उस इमोशन को एनर्जी देते हैं,
0: फ्यूल करते रहते हैं ना,
1: फ्यूल।
0: वी ऑलवेज से दैट उसने हमारे एंगर को फ्यूल किया, बट आई थिंक इट्स आवर एनर्जी।
1: खुद जैसे एक छोटा बच्चा होता है, अगर आप वो मस्ती कर रहे हो और आप भी उसके साथ मस्ती करो तो दोनों मस्ती कर रहे हैं, लेकिन अगर आप दूर से खड़े होकर उसको देखना शुरू कर दो तो वो कॉन्शियस हो जाता है, और वो जो कर रहा था वो उसको छोड़ देता है। तो कॉन्शियसनेस की एनर्जी को उस थॉट से हटा के देखना शुरू करते हैं, वो इमोशन फिनिश हो जाती है। अभी हम क्या करते थे, उसको एनर्जी देते, क्यों बोला, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, अगली बार मैं ये देखूंगी। सो वी आर गिविंग एनर्जी टू दैट इमोशन, it builds up more and more and it can stay with me till a very very long time. To usse detach ho jayenge and then come back to my stage, to the center, कि मैं कौन। ओम शांति ये भी अगर याद रहे तो इट मीन्स मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो आई कम बैक टू माई स्टेज दैट आई एम अ पीसफुल बींग। तो अवेयरनेस, एक्नॉलेज, एक्सेप्ट के हाँ आ रहा है, फिर उसे डिटैच हो जाए एंड देन कम बैक टू माई ओरिजिनल स्टेज। तो कभी भी दिन में ये चिड़चिड़ापन, गुस्सा अगर आए तो लेट्स गो थ्रू दिस फोर फाइव स्टेजेस। और अगर उस टाइम नहीं कर पाते हैं तो गुस्सा करने के बाद भी भले कर लीजिए कि आज मुझे गुस्सा आया था, क्या हुआ था। तो क्या होगा, एक दो बार गुस्सा करने के बाद करेंगे तो अगली बार
0: गुस्से के दौरान भी हो पाएंगे।
1: वो अवेयरनेस, बेसिकली वो अवेयरनेस रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। अवेयरनेस रहती है तो बाकी स्टेप्स करना बहुत इजी हो जाता है।
0: दैट्स वंडरफुल एक्चुअली सिस्टर शिवानी, बिकॉज अभी तक क्या होता आ रहा था कि हमें गुस्सा इतनी आदत में घुल चुका था कि हमें एहसास ही नहीं होता था कि हमने गुस्सा किया है। और अब क्योंकि जब पता है कि इतनी बात गुस्से की सुन चुके हैं, हम दूसरों को कहते थे मैं तो गुस्सा नहीं करता, मुझे तो गुस्सा नहीं आता, नो आई एम वेरी पीसफुल पर्सन, बट वो जो अंदर का चिड़चिड़ापन है, जो इंटरनलाइज एंगर जिसकी हमने पहले बात की थी, सो दिस ऑल स्टेज विद अस। सो अगेन इट मे नॉट गो कम्प्लीटली इन वन डे, बट द मोमेंट विल स्टार्ट वॉचिंग एंड गोइंग थ्रू दीज फाइव स्टेप्स, I think gradually we should be able
1: it is to... not going to go in one day. See, because why it will not go in one day? क्योंकि वो belief systems एक दिन में नहीं जाते हैं। अगर belief सारे एक दिन में टूटते हैं कि गुस्से के बिना काम हो सकता है, गुस्से से कोई result, तो एक दिन में चला जाएगा। लेकिन वो एक एक belief को finish करने में थोड़ा सा time लगता है। लेकिन the journey is very simple. You know, don't give up on yourself. चाहे आपका कितना भी कड़क संस्कार हो क्रोध का, इट कैन गो, और वो पूरी तरह से जाएगा क्योंकि अवेयरनेस चाहिएगी। यू नो अवेयरनेस चाहिए, बस गुस्सा आ रहा है एंड देन इट विल गो। एंड ये जस्टिफिकेशन खत्म करनी है कि दूसरों की वजह से, जब तक वो बिलीफ सिस्टम सबसे स्ट्रांग है कि औरों की वजह से गुस्सा, देन आई विल नॉट चेंज, देन आई विल कीप वेटिंग फॉर you to change.
0: Yes, you know, we've always been saying this just a, you know, thought way. So again, the thought that I am responsible, ye ek sankalp, ye ek soch ki main zimmedar hoon, even if uske liye apne aap ko doshi na thehra ke ki theek hai gussa hai bhi to koi baat nahi, woh to ye ki hum itne guilt aur rank, matlab apne aap se gusse mein chale jate hain ki maine kyun kiya,
1: nuksan ho jata hai. Pehle gussa disturbance create hui, ab guilt create ho jata hai, fir shame ho jati hai, and fir usko protect karne ke liye, usko chhupane ke liye auron se और गुस्सा कर दे। यू नो मतलब पहले गुस्सा कर देंगे, अंदर लगेगा कि मुझे करना नहीं चाहिए था, फिर और जोर से बोलेंगे कि क्यों नहीं करना चाहिए था, मुझे तो करना चाहिए था आपने, यू नो, सो इट इज जस्ट
0: जस्टिफिकेशन ऑफ अ
1: वेरी साइकिल प्रोसेस एंड इट जस्ट डजंट ब्रेक एनीवेयर।
0: एंड डेफिनेटली सिस्टर शिवानी, ये हम इस पे कितनी बातचीत कर चुके हैं और इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि इट कैन चेंज। लेकिन अब हम आते हैं कि हमने बात की थी इमोशन और फीलिंग की, यू नो, कि हर एक इमोशन, क्योंकि इमोशन कहीं ना कहीं हम अभी तक उसे अपनी ताकत मानते थे और हम कहते थे पॉजिटिव इमोशन और नेगेटिव इमोशन, इमोशन एक्चुअली इज यू नो ऑल दैट डिस्टर्बेंस जो यहाँ क्रिएट होती है, तो उसका एंटीडोट या उसका जो एक फीलिंग है जो उसके एवज में कन्वर्ट होती है या आती है, वो पीस जुड़ता है उसके साथ। लेकिन पीस से जुड़ी हुई भी बहुत भ्रांतियां हैं, बहुत सी ऐसे बिलीव्स कह सकते हैं हम, या बहुत से ऐसे मान्यताएं कह सकते हैं कि पीस जो है वो बहुत एनर्जी लेस हो जाता है। तो एक्चुअली बहुत सी बातें हम जानेंगे कि क्या मान्यताएं जुड़ी हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या है, व्हाट इज रियली मेंट बाय शांति या पीस।
1: पीस इज अ वर्ड व्हिच वी यूज वेरी ऑफन but rarely understood. You know, we are all looking for peace. Hame shanti chahiye, hame shanti chahiye. But we're not aware ki what are we looking for. To kya hoga, wo hogi bhi to pata nahi chalega ki wo hai. Actually, agar dekha jaye, to hum log sab shanti anubhav karte hain sara din mein. Lekin wo ek natural sthiti hai. लेकिन उसको हम तब रियलाइज नहीं कर पाते। हम रियलाइज किसको करते हैं, जब हम स्ट्रेस में या टेंशन में होते हैं, क्योंकि वो अननेचुरल है। You know, and at that time we say, I want peace. Peace is basically a state of the being. ये सिर्फ एक स्थिति है, मुझ आत्मा की एक स्थिति है, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि जो मेरी थॉट्स होंगे वो बहुत पॉजिटिव और फोकस्ड होंगे। अंदर एक साइलेंस होगा, एक है साइलेंस, एक है नॉइस, यू नो। तो पीस डजंट मीन कि कोई बोले नहीं, कुछ करे नहीं। बाहर से हो सकता है कि बहुत पीसफुल है, अंदर बहुत नॉइस है। और नॉइज क्या है, ये सब डिस्टर्बेंसेस, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सो पीस इज बेसिकली साइलेंस ऑफ द माइंड। तो साइलेंस ऑफ द माइंड में ये मतलब नहीं है कि जीरो थॉट्स। सम पीपल थिंक पीस साइलेंस मतलब नो थॉट्स, नो, थॉट्स फोकस्ड, आपको जिस चीज के बारे में जिस क्षण सोचना है और जितना सोचना है और जिस रूप से सोचना है बस उतना ही करना है। हमें ये प्रोग्राम अभी करना है, वन थॉट, होगा नहीं होगा, ठीक होगा नहीं होगा, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो ना हो जाए।
0: तो ये पॉजिटिविटी के साथ, जो फोकस जो थॉट्स की आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव रहे,
1: पॉजिटिव, दे विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो बहुत फास्ट चलते हैं एंड दे विल बी मोर टुवर्ड्स वरी, एंग्जाइटी, टेंशन, फियर। तो पॉजिटिव थॉट्स बहुत फोकस्ड होंगे और उसका रिजल्ट आपके एटीट्यूड में आएगा, आपके बिहेवियर में आएगा। अगर नॉर्मल प्रैक्टिकल में भी हम देखें तो पीस इज एक्चुअली एक्सेप्टेंस, स्वीकार कर लेना कि अभी जो चीज जैसी है वैसी बिल्कुल ठीक है, बट विद द वर्किंग कि इसको आगे और ठीक किया जा सकता है, यू नो। तो अभी क्या होगा, पीस, शांति मेरे मन में तब होगी जब मैं एक्सेप्ट कर लूं कि आप अभी जो हैं जैसे हैं बिल्कुल ठीक, तो ये क्षण शांति। और फिर मैं आपको अगले क्षण के लिए आपके साथ ये डिस्कस भी कर सकती हूँ कि आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे अंदर ये चल रहा है नहीं, इनको ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये क्या पहना हुआ है, ये नहीं पहनना चाहिए, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, दिस इज पीसलेसनेस, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग यू एज यू आर। तो पीस इज कि सिचुएशन जैसी है एक्सेप्ट करना, लेकिन साथ में भविष्य के लिए उसको चेंज भी करना। पीस मतलब आप जो हैं जैसे हैं आपको स्वीकार करना, इवन अगर आपका ओपिनियन
0: दिस इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क, व्हेन यू से कि आप एक्सेप्ट कर लूं, मैं आपको एक्सेप्ट कर लूं जैसे आप हैं, तो मैं क्या सोच के एक्सेप्ट करूं कि आप सही हैं अभी जैसी हैं अपने परिपेक्ष में, अपने लिए या मेरे लिए भी सही हैं।
1: आप अपने परिपेक्ष में, अपने दृष्टिकोण से आप जिस सिचुएशन में अभी हैं आप बिल्कुल ठीक है
0: उसके लिए,
1: एब्सोल्युटली,
0: है ना। लेकिन मेरे अगर, मेरे पास अगर कॉन्फ्लिक्ट है या मेरे विचार या मेरा परसेप्शन डिफरेंट है तो वो मेरा है, मैं एक्सेप्ट उसको भी करती हूँ, क्या यहाँ ये आ जाता है कि देन गिव इन हो गया?
1: नहीं, गिव इन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ये भी एक्सेप्ट किया कि आप जो है वैसे भी ठीक है। मैंने ये भी पहले तो, अब देखो औरों को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक हम अपने आप को, वेरी ऑफन इट इज दैट अगर हम अपने आप को नहीं एक्सेप्ट कर पाते तो अंदर बहुत टर्मोइल है, बहुत डिस्टर्बेंस है, तो औरों को एक्सेप्ट करना
0: इम्पॉसिबल।
1: तो सबसे पहले सी, इट्स अ वेरी थिन लाइन विच विल बी अंडरस्टूड विद एक्सपीरियंस, क्योंकि मोस्टली जैसे ही हम सुनते हैं, अच्छा एक्सेप्ट करना मतलब क्या, मतलब कुछ नहीं बोलना, जो है जैसा है वैसे चलता है, यू नो, दैट्स अ वेरी, वी हैव टू डू इट एंड सी इट कि ये कैसे होता है। कि अभी आप, लेट्स से फॉर एग्जांपल, आई वांट टू टेल यू कि दिस ड्रेस इज नॉट लुकिंग नाइस, आई फील वेयर सम अदर ड्रेस। अब ये मेरा आपको बोलना कि आई थिंक आप अपनी ड्रेस चेंज कीजिए, एक है कि आपको देखते ही इस ड्रेस में मैं कहूँ कैसी पहनी है, क्या है ये, अच्छी नहीं लग रही, ये कलर इन पे, सो मच ऑफ टर्मोइल। अब ये नेगेटिव एनर्जी जब आप तक पहुंचेगी, ये पहले पहुंच जाएगी और फिर मैं आपको शायद बहुत प्यार से भी ऊपर से बोलूं कि यू नो कानुप्रिया, आई थिंक चेंज योर ड्रेस, लेकिन आपको तब तक मेरे से इतनी नेगेटिव एनर्जी मिल चुकी होगी,
0: आई विल स्टार्ट गेटिंग इरिटेटेड,
1: एब्सोल्युटली, एंड आप बोलेंगे क्यों, मुझे तो बिल्कुल ठीक लग रही, मैं नहीं चेंज करती। क्यों? क्योंकि आपको ऑलरेडी मेरे से रिजेक्शन, क्योंकि मैंने आपको इंटरनली रिजेक्ट कर दिया, मैंने रिजेक्ट कर दिया आपको, भले मैं ऊपर से बहुत पोलाइटली बोलूं कि वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर यू नो अगर आप, तो आई ट्राई टू बी वेरी पॉलिटिकली करेक्ट इन माय वर्ड्स, बट हियर आई एम टोटली डिस्टॉर्टेड। तो वो एनर्जी ऑफ रिजेक्शन सारी आप तक पहुंच गई है, आपने उसको रिसीव किया और आपने कहा हुआ यू टू टेल मी, मुझे पता है कि मेरे लिए क्या राइट है, नो ट्रांसफॉर्मेशन और अंदर इतना टर्मोइल। नाउ एक्सेप्टेंस इज आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो पहना है वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, दिस इज नॉट जस्ट फॉर सेइंग, इट्स फॉर रियली अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग,
0: वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो यूजुअली हम क्या करते हैं, पॉलिटिकली करेक्ट रहते हैं जैसे आपने कहा, या कि कहीं उसकी भावनाओं को ठेस न पहुंच जाए सामने वाले को, क्योंकि हमें गलत लग रहा है, और हम, दैट्स वेरी ट्रू शिवानी, बिकॉज एट टाइम्स वी फील कि वो गलत है, जैसे आप पेरेंट्स भी कहते हैं कि उनको फिर सुधारेंगे कैसे, जो गलत कर रहा है उनको सुधारेंगे कैसे, तो अंदर से हमें ये एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि वो अपने पर्सपेक्टिव में वो सही है।
1: एंड बिल्कुल जैसे ही हम वो, When I accept you ना, ऐसे कि आपने जो पहना है भले मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आए, ठीक है, अगेन दैट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विल बी देयर, बट आई एक्सेप्ट कि यू लाइक इट, ठीक है, एंड आपकी चॉइस को मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, तो आई एक्सेप्ट हियर. एक्सेप्ट करने से क्या होगा, यहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, तो एनर्जी की जो क्वालिटी है वो बहुत पॉजिटिव रहेगी. तो आपको अगर मैंने इंटरनली एक्सेप्ट किया, आपको वो एक्सेप्टेंस की एनर्जी अपने आप पहुंच जाएगी. फिर ऊपर से इवन अगर मैं डायरेक्टली बोल दूं कि यू नो व्हाट, ये आप पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तो भी आप चेंज करोगे, बिकॉज आपको जो एनर्जी मिली है वो एक्सेप्टेंस की है. तो वो जो चाहिए ना, हार्मनी, कि अंदर से एक्सेप्ट कर ले, फिर बाहर से आप चेंज ला सकते हैं. लेकिन अंदर से डिस्टर्ब कर लेते हैं, फिर बाहर से सोचते हैं हमने इतने प्यार से बोला, फिर भी उन्होंने नहीं.
0: अच्छा, यहाँ अटैचमेंट फिर डिटैचमेंट वाला फैक्टर भी एक बार फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब हमारा कोई अपना हमें दिख रहा है कि गलत कर रहा है, तो हम कैसे ना उसको
1: हमें अपना दिख रहा है कि वो गलत कर रहा है, जैसे ही वो थॉट आया कि वो गलत कर रहा है, रिजेक्शन, ये गलत है. सी दैट वन थॉट कि ये गलत है, उसने इतनी सारी, ये अगर आप जो कर रहे हैं वो आई फील, आप जो कर रहे हैं वो ठीक है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. अब अगर आप अपने आप को इवैल्यूएट करें, तो सारा दिन आप सुबह उठते से ही आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये डिस्टर्बेंस क्यों इतना चलता, क्योंकि एट एवरी स्टेप हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. हम लोगों को नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं, हम सिचुएशंस को नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं. पेपर इधर क्यों फेंक दिया, आज चाय में चीनी कम क्यों नहीं, ज्यादा क्यों, ऐसे क्यों, वैसे क्यों, वो अभी तक आई क्यों नहीं, वो ड्राइवर क्यों लेट हो गया, माई क्यों नहीं आई, खाने में आज ये क्यों बना, एट एवरी स्टेप डिस्टर्बेंस, ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ये ऐसे क्यों चल रहे हैं, जजमेंटल. हर एक के ऊपर जजमेंट पास करना इज आवर बर्थ राइट,
0: एंड एक्चुअली इट इज हार्मिंग अस. अगर हमें ये समझना बहुत जरूरी है, सभी अगर हमारे दर्शक जो जुड़े हैं, कि कहीं ना कहीं ये जो हम ये सोचते हैं कि अच्छा दूसरे के लिए अच्छा नहीं है अगर हम जजमेंटल हो रहे हैं, बट आई थिंक इट्स हार्मिंग अस.
1: हार्मिंग अस बिकॉज यहाँ वो वही है, जस्ट रिमेम्बर ऑलवेज कि शांति ऑलरेडी यहाँ है. अभी मेजोरिटी हम लोग कहते हैं शांति चाहिए, नो वेयर आउटसाइड, कहीं से नहीं मिलेगी, ये शांति है. जैसे ही हम ये जजमेंटल बनना शुरू करते हैं, क्रिटिसाइज इंटरनली करना शुरू करते हैं, हम खुद अपनी शांति को
0: भंग कर रहे होते हैं.
1: तो अगर एक्सपीरियंस करना है एक दिन व्हाट इज पीस, जस्ट एक्सेप्ट एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी द वे दे आर.
0: क्योंकि हमने ये भी देखा था कि इरिटेशन या एंगर तभी शुरू होता है जब दूसरा हमारे अकॉर्डिंगली नहीं कर रहा या सिचुएशन.
1: क्योंकि हमने डिसाइड किया था ये राइट तरीका है, आप उस राइट तरीके के साथ मैच नहीं कर रहे, तो गुस्सा क्यों आया, क्योंकि अंदर की शांति डिस्टर्ब हुई, disturbance create hua out in the form of anger. So isliye peace in a very simple way is just acceptance. Fir accept karke then change, that's very important. Abhi kahi log kya kar rahe hain, ha chhod diya, accept kar liya na ji, वो जो है जैसे
0: है, स्वीकार है, ठीक है, तो उसके ऊपर काम करना भूल जाते हैं, हम काम नहीं करते,
1: वो अपने को भी फिर वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो अपने आप को भी चेंज करने की जरूरत नहीं समझते. एक्सेप्ट कर लिया जी, हम ऐसे ही, हम चेंज नहीं हो सकते, दैट्स नॉट ट्रू. एक्सेप्टेंस इन दिस मोमेंट एंड देन चेंज फॉर द नेक्स्ट मोमेंट.
0: एक्चुअली सिस्टर शिवानी, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जितने हमारे पास मेल्स भी आते हैं कि कहीं ना कहीं मैं चेंज नहीं कर सकता, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं क्यों गलत, मैं क्यों करूं, मैं चेंज क्यों करूं, मैं उनके लिए क्यों बदलूं, वो उनको बदलना चाहिए. तो यहाँ ये सवाल उठता है कि हम हमेशा उसको क्यों अपने ऊपर काम नहीं करने को तैयार.
1: लेजी, वी डोंट वांट टू वर्क, एंड सिंपल ये है कि आई एम परफेक्ट, मैं राइट हूँ. सी हम, क्योंकि एक्चुअली हर एक राइट होता है इंटरनली, वही हमने देखा था कि कोई रॉन्ग अपने आप तो करता ही नहीं है, इसीलिए दूसरे को रॉन्ग नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो रॉन्ग नहीं करते हैं, वो अपने दृष्टिकोण से राइट करते हैं. और इसीलिए आई वॉन्ट यू टू चेंज, बिकॉज आई फील आई एम राइट, यू आर रॉन्ग, एंड आई फील कि जो भी ये डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ ये आपकी वजह से क्रिएट हुआ, तो चेंज किसको होना चाहिए, आपको चेंज होना चाहिए, मैंने तो कुछ नहीं किया. और मुझे अपने आप को अगर मैं देख भी लूं रुख के बीच में, मुझे अपने आप को चेंज करना तो बहुत मुश्किल लगता है, औरों को बोलना तो बहुत इजी लगता है, अपने आप पर वर्क करना बहुत मुश्किल लगता है.
0: आपसे कभी बात ही नहीं की.
1: एब्सोल्युटली. तो अपनी कमजोरियों को हम ढक देते हैं, और ऊपर से फिर वो गुस्सा करके और शोर मचा के औरों के ऊपर उसको डाल देते हैं, एंड फिर बोल देते हैं अब आपको चेंज होने की जरूरत है. तो वी अवॉइड द वर्क.
0: इनफैक्ट हाँ, हम कहते हैं कि मैं तो हूँ ही ऐसा, मैं तो जानता ही हूँ कि मैं ऐसी हूँ, तो फिर अब ये तो समझ नहीं पड़ेगा, एक्सेप्ट करने
1: का. जस्टिफिकेशन में तो देते हैं कि मैंने गुस्सा क्यों किया, इसीलिए किया क्योंकि आपने गलती की थी, मुझे नहीं तो थोड़ी गुस्सा करना था. तो ऑलवेज द फिंगर इज आउटसाइड. क्यों? क्योंकि सबसे रॉन्ग बिलीफ सिस्टम वो ये था कि मेरी मन की स्थिति का जिम्मेवार
0: बाकी सब लोग हैं.
1: इसलिए अगर मैं डिस्टर्ब्ड हूँ तो भी जस्टिफाइड है, कोई ना कोई जिम्मेवार. मैं अपसेट हूँ तो भी कोई जिम्मेवार. मैं नाराज हूँ तो भी कोई जिम्मेवार. मैं खुश हूँ तो भी कोई जिम्मेवार.
0: जैसे शिवानी, जहाँ पीस की बात आती है वहाँ जो एंगर के साथ ये जुड़ा है कि भाई कहीं कोई गलती हुई है, तो पीस के साथ ही फॉरगिवनेस की भी बात आती है. तो बिकॉज पीस लीड्स टू फॉरगिवनेस, और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो फॉरगिवनेस ऑल्सो लीड्स टू पीस. तो ये दोनों एक कॉन्फ्लिक्ट, मतलब एक ऐसे दो साथ साथ चलते हैं. लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि व्हाट कम्स फर्स्ट,
1: कौन सा वाला करें तो दूसरा वाला अपने आप आ जाएगा.
0: बिल्कुल, कि क्षमा करना ज्यादा जरूरी है तो शांति मिलेगी, या अगर हम शांत हो जाएंगे तो हम क्षमा भी कर पाएंगे.
1: दोनों करके देख सकते हैं. एक्चुअली अगेन नो राइट और रॉन्ग. अगर हम क्षमा कर सकते हैं, क्षमा करके भूल जाते हैं कि किसी ने कोई, हम जो समझते हैं गलती की, तो अगर हम क्षमा कर सकते हैं तो शांति अपने आप आ जाएगी. और जितना जितना हम सहज औरों को क्षमा करते जाएंगे तो शांति बनी रहेगी. तो एक ऑप्शन ये है कि क्षमा करते जाएं, अपनी शांति को वापस बरकरार लाएं. लेकिन दूसरी बात ये है कि क्षमा करें किसको. अभी तक हमें क्षमा इसलिए करना था क्योंकि गलती आपने की थी.
0: मैं इसी पे आना चाह रही थी कि जब हम क्षमा की बात करते हैं,
1: एक्चुअली द होल कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरगिवनेस इज गोइंग टू चेंज.
0: इट डज नॉट एग्जिस्ट.
1: इट डजंट एग्जिस्ट कि whom to forgive. अभी तक था you hurt me, then you will come to me, sorry, I will say ठीक है. Why? Because I have taken that authority कि you have hurt me, now I have to forgive you. And then after one day or two days or whatever, हम जाकर बोल देते चलो आपको माफ किया. You know? So, आपको माफ किया मतलब आपने मुझे hurt किया था, आज मैंने आपको माफ किया. लेकिन अब तो हमें समझ में आ गया कि आप तो मुझे हर्ट ही नहीं कर सकते, मैं हर्ट हुई अपनी डिस्टरबेंस की वजह से. तो क्षमा अगर करना भी है किसी को तो मुझे अपने आप को क्षमा करना है. तो जहां पीस का रियल मीनिंग समझ में आ जाता है, एंगर का कारण समझ में आ जाता है, तो वहां फॉरगिवनेस का कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल चेंज हो जाता है. बिकॉज देन आई डोंट नॉट हैव टू फॉरगिव एनीबॉडी बिकॉज एवरीवन इज फाइन द वे दे आर. इट वाज माय वीकनेस एंड आई विल ओवरकम इट, दैट्स फाइन. हु डू आई हैव टू फॉरगिव?
0: वो दैट्स सो ब्यूटीफुल.
1: आई डोंट हैव टू फॉरगिव एनीबॉडी. और पीस मेंटेन करने से क्या होता है, मेरी कॉन्शियसनेस अवेकेंड है ना, क्योंकि कोई डिस्टर्बेंस नहीं है. तो क्लैरिटी इन थिंकिंग, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई नेगेटिव वेस्ट थॉट्स नहीं, इंटेलेक्ट भी बिल्कुल शार्प हो जाती है. तो उससे हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा फायदा होता है. एक तो सच और झूठ है ना, आजकल हम बहुत धोखा खाते हैं कि सच क्या है, झूठ क्या है, सच बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं. यू नो दिस नॉट जजमेंट करने के लिए कि आपको जज नहीं करना, लेकिन मुझे मेरे लिए तो पता होना चाहिए. वो धोखे से अपने आप को तो मुझे बचाना पड़ेगा ना, कि कोई मुझे चीट करके चला जाए तो आप गलत हैं वो बात नहीं है, लेकिन मुझे अपनी तो प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी. उसके लिए मेरी परखने की शक्ति बहुत अच्छी चाहिए. दूसरा, डे टू डे मेरी लाइफ में मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, वो भी डिसीशन पावर आज नहीं है. वी डोंट नो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग फॉर मी. तो जब हम वो शांति की स्थिति मेंटेन्ड रखते हैं अंदर, सच और झूठ की पहचान, सही और गलत की पहचान बहुत क्लियर होने लग जाती है. और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरी फीलिंग्स, मेरी थॉट्स, मेरी इमोशंस, ये मेरी अपनी क्रिएशन है, चाहे वो कितनी भी गलत है इस टाइम या चाहे वो कितनी भी सुंदर है, ये मेरी अपनी क्रिएशन है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और दूसरा, इंटेलेक्ट बहुत शार्प हो जाती है कि मेरे लिए सही या गलत क्या है, कोई कंफ्यूजन नहीं. क्यों? क्योंकि हमने हर एक जो है जैसा है एक्सेप्ट कर लिया, तो हमारी जो बुद्धि है वो अनबायस्ड हो जाएगी. अभी बायस्ड बहुत है, ये सही ये गलत, सारा दिन चेकिंग. तो अपने लिए क्या सही और गलत है उसको ध्यान देने का बिल्कुल मार्जिन ही नहीं है, क्योंकि सारा दिन जजमेंट बाहर की तरफ है. तो एनर्जी सारी कहाँ जा रही है, तो उसमें फिर प्रॉब्लम आ गया.
0: बिल्कुल सिस्टर शिवानी, आज एक और एस्पेक्ट समझ में आया कि जहाँ हम, अगर आप मुझसे, आपने सवाल नहीं पूछा, लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हैं कि पीस पहले आएगी या क्षमा पहले आएगी, तो मुझे लगता था कि मैं यही कहती कि क्षमा पहले आएगी और उसके बाद आप पीसफुल होंगे, क्योंकि आप कम्प्लीटली अगर क्षमा कर पाएंगे. लेकिन आज पर्सपेक्टिव ही बदल जाता है कि क्षमा हमें करना किसी को किसे है, क्योंकि क्षमा करने की जरूरत ही नहीं बचती जब किसी ने कोई अपने पर्सपेक्टिव से हर कोई सही है. It's a wonderful way to live actually, if we can, but we might be able to, the way it's happening, you know, जिस तरह से हम देखते आ रहे हैं. आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति पूरे कॉन्फिडेंस से अब मैं कह सकती
1: हूँ. ओम शांति.
0: अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, हर बार की तरह खुला निमंत्रण देते हैं. आप हमें फोन पर संपर्क कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 9999344666, 9873666555, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में शांति के कुछ और स्वरूप, शांति से जुड़ी हुई कुछ ऐसी मान्यताएं जो कहीं ना कहीं, ऐसी धारणाएं हैं जो कहीं ना कहीं हमें शांति के रास्ते पर ले जाने से रोकती हैं, उनको और खंगालेंगे. मुलाकात करेंगे अगली कड़ी में. दीजिए इजाजत. ओम शांति.

आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के बारे में चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का पवित्र और धार्मिक ग्रंथ है, जिसमें भगवान ने बताया है कि इंसान को अपने कर्तव्यों पे, अपने कर्मों पे ध्यान देना है। मोह से ग्रस्त अर्जुन की पीड़ा को दर्शाया गया है। जब इंसान मोह के वश हो जाता है, तब वह अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाता। परमात्मा कहते हैं मोह भी एक विकार है। जब इंसान मोह के वश हो जाता है, तब वह अपना धर्म, अपना कर्तव्य इन सबसे दूर हो जाता है। भागवत गीता में परमात्मा ने जीवन जीने की सही दिशा हमें दिखाई है, जीवन जीने की सही कला हमें सिखाया है। गीता के पहले अध्याय में कर्म योग के बारे में बताया गया है। गीता के दूसरे भाग में भक्ति योग के बारे में बताया गया है और गीता के तीसरे भाग में ज्ञान योग के बारे में बताया गया है। गीता में बताए गए उपदेश सभी मानव जाति के लिए हैं। गीता के उपदेश सभी के कल्याण अर्थ है। जीवन की कोई भी परेशानी हो, कोई भी परिस्थिति हो, अगर हम गीता का अध्ययन करते हैं तो हमें उस परिस्थिति से निकलने का मार्ग मिल जाता है। परमात्मा शिव द्वारा गीता ज्ञान श्री कृष्ण को प्राप्त हुआ और श्री कृष्ण द्वारा यह गीता ज्ञान समस्त मानव जाति को प्राप्त हुआ। गीता को सर्व शास्त्र शिरोमणि कहा गया है। आज इस एपिसोड में हम गीता के तीन अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। गीता के पहले अध्याय में अर्जुन की मन की अवस्था को दर्शाया गया है। जब इंसान मोहवश हो जाता है, तब वह अपने कर्तव्यों से दूर हो जाता है और परमात्मा ने हमें मोह से मुक्त अपने कर्मों पर ध्यान देने की प्रेरणा दी है। भगवान कहते हैं कि कर्तव्य पालन की याद इस गीता में दिलाई गई है और अपनी दुर्बलता को त्यागने का आदेश भी दिया गया है। जीवन के उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। शैक्षिक ज्ञान, विद्वत्ता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं को हल करने में व्यर्थ हैं। यदि कोई हमारी सहायता कर सकता है तो वो केवल एक सद्गुरु है। वास्तव में ज्ञानी होता है वह न तो मृतकों के लिए और न जीवितों के लिए शोक करता है, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है। अर्जुन को यह पता नहीं था कि आत्मा और परमात्मा का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है, अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो यह जान ले वही विद्वान है और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। आत्मा अमर है, शाश्वत है। हम सब पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। आत्मा शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होती रहती है। उसी प्रकार मृत्यु होने पर
आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। धीरज रखने वाला व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। इंद्रियों से उत्पन्न सुख दुख अस्थाई है, जैसे सर्दी और गर्मी का आना जाना। एक ज्ञानी पुरुष को सब कुछ सहन करना सीखना होता है और अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होना है। जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों में समान रहता है, वह निश्चित रूप से अमरत्व की स्थिति को प्राप्त करने योग्य है। श्रोते हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है। विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट। एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, गीता के 2 अध्याय में भगवान ने भौतिक शरीर का कोई स्थायित्व अस्तित्व नहीं बताया है। भगवान कहते हैं आत्मा शाश्वत भी है और अपरिवर्तित भी है, शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है, सभी के शरीर में चैतन्य आत्मा विराजमान है जिसे नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है, अर्थात उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। शरीर स्वभाव से नाशवान है, यह इसी क्षण नष्ट हो सकता है या 100 वर्ष बाद भी। शरीर को अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है, किंतु आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर की बात है। आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता। वेदांत सूत्र में आत्मा को प्रकाश बताया गया है क्योंकि वह परम आत्मा का वंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे सृष्टि का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक शरीर का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस शरीर से बाहर निकल जाती है, शरीर सड़ने लगता है। अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है, शरीर का कोई महत्व नहीं है। आत्मा को

आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यह आत्मा न तो किसी शस्त्र द्वारा काटी जा सकती है, न अग्नि इसे जला सकती है, न जल इसे भिगो सकता है और न ही वायु इसे सुखा सकता है। आत्मा अखंडित है, यह शाश्वत, स्थिर, अविकारी तथा सदैव एक सी रहने वाली है। आत्मा न तो देखी जा सकती है और न ही इसमें कोई बदलाव होता है। शरीर के मृत्यु पर शोक करना व्यर्थ है। आत्मा अनेक जन्मों में शरीर धारण करती है और कुछ समय बाद उसे छोड़ देती है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। आत्मा शरीर मिलने से पहले अव्यक्त अवस्था अर्थात निराकारी अवस्था आत्मिक चैतन्य प्रकाश के रूप में होती है। शरीर मिलने के बाद आत्मा व्यक्त भाव में आती है। शरीर छूटने के बाद आत्मा फिर से अव्यक्त अर्थात चैतन्य प्रकाश के रूप में रहती है। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता। शरीर में रहने वाले आत्मा का वध नहीं किया जा सकता। क्षत्रिय का अर्थ है रक्षा करना। धर्म की रक्षा के लिए हमें अगर परिस्थिति, व्यक्ति, सगे संबंधियों के खिलाफ भी खड़ा होना पड़े तो भी धर्म रक्षा के लिए हर परिस्थिति से हमें लड़ना है। वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें धर्म रक्षा के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार नहीं करना चाहिए, सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। श्रोते हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, गीता में भगवान ने कहा कि निष्काम भाव से कर्म करना है, हर कर्म ज्ञान युक्त हो। जीवन के मार्ग पर जो स्थिर चित्त से चलते हैं उनकी बुद्धि एकनिष्ठ होती है, जबकि अस्थिर चित्त वालों की बुद्धि अनेक दिशाओं में भटकती रहती है। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मन में भगवान के प्रति दृढ़ निश्चय नहीं होता। जीवन में लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्म अभिमानी होकर रहना है। कर्म करने का अधिकार है, परंतु उसके फल पर मनुष्य आत्मा का कोई अधिकार नहीं है। जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समान भाव से अपना कर्म करते रहना है। ऐसी समता योग परमात्मा ने गीता में बतलाया है। जब उसकी बुद्धि मोहरूपी भ्रम को पार कर जाएगी तब वह सभी कर्मकांडों के प्रति अनासक्त हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं, आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाने से दिव्य चेतना प्राप्त होती है। जो व्यक्ति समस्त इच्छाओं को त्याग कर आत्मा में ही संतुष्ट रहता है तभी उसे स्थिर बुद्धि योगी कहा जाता है। जो व्यक्ति दुखों में विचलित नहीं होता, सुख में आसक्त नहीं होता और क्रोध भय तथा राग से मुक्त रहता है वही स्थिर बुद्ध मुनि कहलाता है। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर हो सकता है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित कर भीतर कर लेता है वैसे ही इंद्रियों को इंद्रियों के विषय वासना से खींचकर मनुष्य अपने मन को स्थिर करता है और पूर्ण चेतना में स्थिर हो सकता है। इंद्रियों से भले ही कोई इंद्रिय भोग को छोड़ दे लेकिन तब तक रस बना रहता है जब तक परम रस की परमात्मा की अनुभूति नहीं होती। इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को पूर्णतः वश में करके अपनी चेतना को भगवान में लगाता है वही स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। इंद्रिय विषयों को छोड़कर उनके चिंतन भी करने वाला व्यक्ति आसक्ति उत्पन्न होने के कारण उस व्यक्ति के अंदर काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य का पतन होता है। परमात्मा ने कहा कि क्रोध मनुष्य के पतन का कारण है, क्रोध से बुद्धि भ्रष्ट होती है। जो व्यक्ति राग द्वेष से मुक्त होकर इंद्रियों को वश में करता है वह ईश्वर की कृपा को प्राप्त करता है। परमात्मा में मन लगाने से शांति प्राप्त होती है। शांति के बिना सुख भी नहीं हो सकता। यदि मन किसी एक इंद्रिय के पीछे भी चला गया तो वह मनुष्य की बुद्धि को उसी प्रकार भटकाता है जैसे प्रचंड वायु पानी में नाव को दूर बहा ले जाती है। वही व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला होता है जिसकी समस्त इंद्रियां विषयों से हटकर पूर्णतः उसके वश में होती है। श्रोते हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: असर्टिवनेस विदाउट जेनरेटिंग एंगर, तभी वो रियल मायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी हैं और स्टेबल भी हैं, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब, यू नो। तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बीइंग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर, उसको जो पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल है। एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड है कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, गीता में भगवान ने कहा है कि जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्मसंयम के जागने का समय है, अर्थात अमृत वेले का समय है। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। जो ऐसी इच्छाओं को पूर्ण करने की चेष्टा नहीं करता, जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का त्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से मुक्त रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है, अर्थात मोह को त्याग दिया है तथा अहंकार से मुक्त है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि हर व्यक्ति को प्रकृति के गुणों के अनुसार कर्म करना ही पड़ता है। भोजन ग्रहण करने से पहले भगवान को अर्पित करना चाहिए। जो व्यक्ति आत्मा में आनंद प्राप्त करता है और आत्म साक्षात्कार में पूर्ण तथा संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई बंधन नहीं होता, वो सदा मुक्त है। मनुष्य को फल की आसक्ति को त्याग कर निरंतर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वह परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। जनक जैसा महान राजा भी कर्म के मार्ग का ही अनुसरण कर सिद्धि को प्राप्त हुए, इसलिए समाज को दिशा देने के लिए भी श्रेष्ठ कर्म करना आवश्यक है। जो महान व्यक्ति अपने आचरण से आदर्श प्रस्तुत करते हैं, सामान्य लोग उन्हीं का अनुसरण करते हैं। वह अपने कार्यों से पूरी दुनिया को दिशा दिखाते हैं। जैसे अज्ञानी लोग फल के कामना से कर्म करते हैं, वैसे ही ज्ञानी जन को बिना आसक्ति के लोक कल्याण के लिए कर्म करना चाहिए। व्यक्ति अहंकार के कारण अपने आप को सभी कर्मों का कर्ता मानता है, जबकि वास्तविकता में कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा होते हैं। जो व्यक्ति परम सत्य को जानता है, वह भौतिक इंद्रियों के कार्यों से दूर रहते हुए अपने समग्र कर्मों को भगवान की सेवा में नियोजित करता है। माया के गुणों से मोहग्रस्त अज्ञानी व्यक्ति भौतिक कार्यों में संलग्न रहते हैं, लेकिन ज्ञानी को चाहिए कि वह उन्हें विचलित न करे। सभी कार्यों को भगवान में समर्पित करके किसी भी आसक्ति और स्वामित्व के बिना शुद्ध ध्यान और आलस्य से मुक्त होकर कार्य करना चाहिए। जो व्यक्ति ईर्ष्या और मोह के बिना परमात्मा के श्रीमत का पालन करते हैं, वे कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हर व्यक्ति अपने प्रकृति अनुसार स्वभाव संस्कार अनुसार कर्म करता है। मन का दमन करने से किसी के स्वभाव को बदला नहीं जा सकता। प्रत्येक इंद्रिय के अपने राग और द्वेष होते हैं और इन्हीं के कारण आत्म साक्षात्कार की राह में बाधाएं उत्पन्न होती है। मनुष्य को इनके वश नहीं होना चाहिए। रजोगुण से उत्पन्न काम विकार आत्मा को पाप कर्मों में प्रवृत्त करता है। काम विकार मनुष्य की शुद्ध चेतना को मैला करता है। काम विकार कभी जीवात्मा के ज्ञान को नष्ट करता है, उसे कभी संतुष्ट नहीं होने देता। काम महाशत्रु है। अपने आप को इंद्रिय मन बुद्धि से परे चैतन्य आत्मा जानकर काम विकार के शत्रु को जीत

जीतने का उपदेश गीता में दिया गया है। श्रोते हो, उम्मीद करती हूँ आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे गीता के अगले अध्याय के साथ, तो सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM। आनंदी रहा आणि आनंद घ्या।
1: और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं, सपोज पांव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में, कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दे या भरते जाएं, घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए, भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है, आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे, तुरंत क्या करेंगे, चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है लेकिन तुरंत क्या करेंगे, उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है, क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है, कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है, अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा, दाग लग जाएगा। और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ किया, और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया, कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

वतन करा के श्रोताओं को हमारा नमस्कार। जिन राजाओं ने अपने पीछे राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं छोड़ा था, उनका राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलाने की नीति लॉर्ड डलहौजी ने बनाई थी। डलहौजी की इस अपहरण नीति के अंतर्गत गोद लेकर उत्तराधिकारी बनाने का अधिकार भी नहीं दिया गया था। यही बात झांसी के लिए थी। झांसी राज्य भी अंग्रेजों ने हथियाना चाहा। विधवा रानी लक्ष्मीबाई ने विरोध के स्वर में कड़क कर कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अपनी बुलंद आवाज के साथ वीरांगना लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार हो गईं।

बजन रम तूला चोटे समर नगारे की। ए अरे सेना सजन बजन रम तूला चोटे समर नगारे की। अरे अंग्रेजन की गरे उतर गई, ए अंग्रेजन की

स्वराज्य का नगाड़ा गंभीर घोष कर रहा था। 11 महीने से गूंजने वाले इस स्वातंत्र घोष से संपूर्ण बुंदेलखंड भर गया। नगाड़े के इस नाद का साथ कालपी से तात्या टोपे की तोपें दे रही थी। विंध्य से यमुना तक ब्रिटिश सत्ता का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा था। ब्राह्मण हो या मौलवी, सरदार हो या जागीरदार, सैनिक हो या पुलिस, राजा हो या साहूकार, सभी की एक ही मांग थी, एक ही चाह थी, स्वाधीनता प्राप्ति। इन सबको एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया था लक्ष्मीबाई ने।

यूरोस 5,000 सैनिकों को लेकर गदर को दबाने झांसी की ओर चल पड़ा। दोनों ओर से बराबर मुठभेड़ शुरू हुई। रानी के कठोर प्रतिकार से अंग्रेज पर्याप्त शक्ति होने पर भी किले में प्रवेश नहीं कर सके। झांसी की सहायता के लिए तात्याटोपे सेना लेकर आ गए। इतनी बड़ी सेना को देखकर अंग्रेज घबरा गए। एक ओर से तात्याटोपे वार कर रहे थे तो एक ओर से मर्दानी झांसी की रानी।

अंग्रेजों से रानी की लड़ाई कई रोज चलती रही। मृत्यु का दिन मार्ग में एक नाला बनकर आया। घोड़े की एक छलांग में रानी अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त हो सकती थी, किंतु घोड़ा नया था, वहीं अड़ गया। क्षण भर में गोरे सैनिक रानी के करीब आ गए। घिरी हुई अवस्था में भी एक तलवार ने अनेक तलवारों का सामना किया। अंग्रेजों में से एक ने पीछे से रानी के सिर पर वार किया और उस वार के साथ सिर का दाहिना हिस्सा और दाई आंख निकलकर बाहर लटकने लगी। उसी समय उन पर दूसरा वार छाती पर हुआ। रानी ने अपने ऊपर वार करने वाले अंग्रेज के टुकड़े कर डाले और अंतिम सांस लेने लगी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। गायक कलाकार थे राम किशोर, रजनी और राम सेवक। संगीतकार थी तापसी नागराज। आलेख और उद्घोषणा सुधा अनुपम, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की। आज के इस कार्यक्रम में आपने जो गीत सुने उन्हें हमने लिया था स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा जन गर्जे श्रृंखला के अंतर्गत जारी ऑडियो एल्बम से। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा?

हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम वतन का राग स्वराज संस्थान संचालनालय रविंद्र भवन परिसर भोपाल 462002। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं swaraj@gmail.com पर। ज्यादा जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.swarajsansthan.org।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक

0: करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी. एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा. व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट. जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 करोड़ सेल्स है. दिस इज द ब्रेन, ओके, 10,000 करोड़ सेल्स. एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 करोड़ सेल्स आर ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी. 10,000 करोड़ सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क. सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस. अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा. तो जब ब्रेन में 10,000 करोड़ सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है. ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है. और हमने कितनी आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे. अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर. उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना.
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुणेरी आवाज
1: सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झकास रेडिओ स्टेशन
0: पुणेरी आवाज
1: ऐकत रहा 107.8 FM
0: आनंदी रहा आणि आनंद लुटा
2: विथ ब्रह्मकुमारीज।
3: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विथ ब्रह्मकुमारीज। वेलकम सिस्टर।
4: ओम शांति।
3: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति।
4: आज मैं आपके लिए कुछ पढ़ने के लिए लाई हूँ।
3: श्योर। मुझे मालूम है आप क्या लाए होंगे।
4: मुरली।
3: ऑफ कोर्स। महावाक्य।
4: परमात्मा के महावाक्य, जिस टॉपिक पर हम पिछले कुछ दिनों से बात कर रहे थे, परखने की शक्ति। और लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कि आप किसी के घर गए और उन्होंने कुछ ऐसा व्यवहार किया जो रिस्पेक्टफुल, इन आर वोकैबुलरी ऑफ रिस्पेक्ट जो हमारी है, कि सम्मानीय नहीं था। तो आपने डिसाइड किया कि उनके घर फिर कभी नहीं जाना
3: जी।
4: और आपने एंड में कहा मैं फिर भी नहीं जाऊंगा, अभी भी कहीं नहीं जाऊंगा, उनके घर नहीं जाऊंगा फिर
3: जी।
4: से और आपने कहा कि उन्होंने जो किया वो गलत था
3: जी।
4: तो मेरा गुस्सा होना तो नेचुरल था। तो आपने एंड में कहा लेकिन मैं फिर भी उनके घर नहीं जाऊंगा।
3: बिल्कुल
4: ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि परमात्मा हमें क्या ज्ञान सुनाते हैं इस बात के ऊपर। एंड आई जस्ट फाउंड अ मुरली।
3: आपने क्या किया मालूम है?
4: वी जस्ट फिटेड इन।
3: नहीं, so आपने क्या किया? सीधा सुप्रीम कोर्ट चले गए।
4: हाँ, सही बात।
3: हम दोनों का डिसीजन तो नहीं हो पाया। तो लेट्स गो टू द सुप्रीम।
4: वैसे भी आप देखो, हम सब कुछ जो शेयर कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, वो ज्ञान के आधार पर है ना, जो परमात्मा डायरेक्टली सुनाते हैं।
3: फैसले में ही तो छोटे कोर्ट में डिसाइड होता है ना।
4: ठीक है।
3: तो आज सुप्रीम मतलब सुप्रीम फादर, सुप्रीम सोल।
4: परफेक्ट। तो देखते हैं शिव बाबा, निराकार परमात्मा हमें क्या महावाक्य सुनाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, ये परखने की प्रैक्टिस छोटी बात नहीं समझना। परखना जो हम लास्ट टाइम देख रहे थे,
3: ये परखने की प्रैक्टिस
4: छोटी बात नहीं समझना। कोई भी परिस्थिति को, कोई भी संकल्प वाली आत्माओं को वर्तमान और भविष्य परखने की प्रैक्टिस चाहिए। सिर्फ वर्तमान नहीं, भविष्य भी। जैसे कोई भी कर्म हम कर रहे हैं, अगर हमें परखना है कि ये सही है या ये गलत है, तो उसका सिर्फ प्रेजेंट नहीं देखना है, उसका फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस सोच के फिर परखना है, क्योंकि फ्यूचर में उसका कॉन्सिक्वेंस आएगा ना। फ्यूचर में आएगा ना कॉन्सिक्वेंस। आज हम लोग कई बार जब परखते हैं, निर्णय लेते हैं, तो सिर्फ प्रेजेंट का सोच के कर लेते हैं कि अभी ये सही है ना, अभी तो कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है, अभी तो खा लो ना, अभी तो बोल दो ना, अभी तो सुन। वर्तमान का देख के हम परखते हैं, भविष्य का देख कर नहीं परख रहे।
3: जैसे मैंने कहा तो ब्लैक को तो ब्लैक ही बोला, मैंने क्या बोला क्या?
4: हाँ, लेकिन भविष्य का उसका कॉन्सिक्वेंस, हमारी शक्ति कम हुई, बार बार अंदर पर चिंतन करते करते हमारी सेहत खराब हुई और हमारा उस आत्मा के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट का कार्मिक अकाउंट बन गया। तो ये भविष्य का सोचकर फिर परखना है। यथार्थ रूप से मतलब एक्यूरेटली वही परख सकता है जिनकी बुद्धि में ज्यादा व्यर्थ संकल्प नहीं चलते होंगे। उनकी बुद्धि एक ही कार्य में और एकरस स्थिति में रहेगी। मतलब जिसके अंदर ज्यादा वेस्ट और नेगेटिव थॉट्स चलेंगे, उनकी फिर परखने की शक्ति भी उतनी एक्यूरेट नहीं होगी, क्योंकि टर्बुलेंस है ना यहाँ पे, तो पिक्चर सही नहीं दिखाई देगी। अनेक तरफ बुद्धि जाने के कारण शक्तिशाली नहीं रहते हैं। वैसे भी जब बुद्धि बहुत कार्य तरफ लगी हुई होती है, तो अनुभव किया होगा बुद्धि में वीकनेस, कमजोरी आ जाती है, थकावट महसूस होती है। जनरली ऑल्सो अगर हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, मन बुद्धि बहुत ज्यादा यूज हो रही है, तो थोड़े टाइम के बाद हम कहेंगे थक गए।
3: बाबा तो बोल रहे हैं कि ज्यादा डाइवर्सिटीज में, इधर भी हाथ डाल दिया।
4: वो तो मल्टी टास्किंग के, ज्यादा नहीं सोचना लेकिन व्यर्थ नहीं सोचना। वेस्ट सोचने से भी बुद्धि की शक्ति कम हो जाएगी।
3: पिछले एपिसोड में वेस्ट ही था।
4: हाँ,
3: मेरी टॉकिंग थी और थिंकिंग थी, दैट वाज ऑल वेस्ट।
4: यस, वेस्ट
3: हो चुका है।
4: नॉट ओनली वेस्ट, नेगेटिव ऑल्सो।
3: या बट उसको मैं कुछ कर भी नहीं सकता ना।
4: नेगेटिव ऑल गॉन, बट नेगेटिव भी था ना, नेगेटिव भी था ना, अभी
3: और अभी तक है।
4: अभी तक है। तो इसीलिए उस दिन का कर्मा उस दिन के लिए भी नेगेटिव था और क्योंकि फिनिश नहीं किया तो फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस उसका अभी तक वो नेगेटिव चल रहा है. तो प्रेजेंट भी फ्यूचर भी दोनों देखकर बुद्धि में वीकनेस थकावट महसूस होती है तो यथार्थ रूप से निर्णय भी नहीं कर सकेंगे.
3: सही बात
4: है ना. अगर मन बुद्धि में बहुत ज्यादा थॉट्स हैं, वेस्ट थॉट्स हैं, तो ना सही परखेंगे और ना सही निर्णय ले सकते.
3: निर्णय तक जाएंगे कहाँ?
4: क्यों निर्णय लेंगे ना, निर्णय लेंगे ना. आपने निर्णय लिया मैं नहीं जाऊंगा अभी कभी उनके घर, मैं कभी नहीं बात करूंगा ऐसे, ये तो निर्णय लिया ना. तो ये निर्णय हमारे लिए यथार्थ नहीं था. थकी हुई आत्मा न परख सकेगी न निर्णय कर सकेगी. कितना भी होशियार होगा, सी दिस लाइन, कितना भी होशियार होगा तो भी थकावट में उनके परखने और निर्णय करने की शक्ति में फर्क पड़ जाएगा.
3: मैंने कहा था ना, एनीबॉडी हु हर्ट्स माय इंटेलिजेंस,
4: इंटेलिजेंस
3: अपने आप को
4: इंटेलिजेंट है.
3: हाँ, लेकिन
4: देखो
3: कितना भी इंटेलिजेंट हो, अगर इस तरह का पैटर्न करते रहे, इस तरह की हैबिट हो जाए कि इसने मेरे को ये नहीं पूछा, इसने चाय नहीं पूछी, इसने मुझे खुद चांदी के गिलास में पानी पिया, मुझे स्टील के गिलास में पिला दिया,
4: तो इतनी व्यर्थ चिंतन अगर चलेगा तो कितनी भी इंटेलिजेंट आत्मा हो लेकिन थकने के कारण, सी मतलब क्वालिटी है हमारी लेकिन थकने के कारण हम निर्णय शक्ति और परख शक्ति नहीं यूज कर पाएंगे. सारा दिन इन संकल्पों से बुद्धि थकी हुई होने के कारण निर्णय करने की शक्ति कम हो जाती है. इसीलिए विजयी नहीं बन सकते.
3: विजयी ऑन व्हाट?
4: विक्टोरियस ऑन माय ओन सेल्फ, ऑन माय ओन वीकनेस. थके हुए हैं. हार खाने का मुख्य कारण ही यही है, बुद्धि की सफाई नहीं है. हार खा लिया ना, फिर वो ये नेगेटिव संस्कार हावी हो गए, फिर सिचुएशन हमारे ऊपर हावी हो गई, फिर दूसरी आत्मा हमारे ऊपर हावी हो गई.
3: मैं हार खाया सिचुएशन से.
4: सिचुएशन से ही तो हार खाए. और उस आत्मा से भी हार खाए, उसके संस्कार से भी हार खाए. जब भी हम डिस्टर्ब हुए तो हम किसी न किसी से हार खाए ना.
3: अगर मैं डिसाइड किया आज के बाद आपसे बात नहीं करूंगा तो मैं हार गया.
4: नहीं, आपने डिसाइड किया आज से बात नहीं करूंगा, लेकिन उसके पीछे, उसके बाद में और कई सालों तक उसके बारे में अगर थिंकिंग जैसे अभी चल रही थी नेगेटिव वाली, वो अभी भी चल रही है, तो फिर मेरा संस्कार पावरफुल था ना टू डिस्टर्ब यू, तो हार खाई. तो विजय न होने का मुख्य कारण है बुद्धि की सफाई की कमी. जैसे उन्हों की कहते हैं हाथ की सफाई होती है, दुनिया में कहते हैं ना हाथ की सफाई है, तो परमात्मा कहते हैं आप फिर बुद्धि की सफाई से क्या नहीं कर सकते. जब वो हाथ की सफाई से इतना कुछ कर सकते हैं तो आप बुद्धि की सफाई से क्या नहीं कर सकते हैं. नॉलेजफुल बन गए हो ना, मतलब नॉलेज तो आ गई क्या सही है क्या गलत है. व्यर्थ व साधारण को अच्छी तरह से समझ गए हो, दे ये भी परखने की शक्ति. व्यर्थ, साधारण, नेगेटिव, प्योर, इसको परख सकते हैं कि कौन सी थॉट चल रही है इस टाइम. दिस ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट कि हमारे अंदर सारा दिन में कितनी थॉट्स चल रहे हैं. जैसे हम इतनी बार देखते हैं प्योर पावरफुल पॉजिटिव थॉट, एक कैटेगरी. एक थॉट जैसे ही हम क्रिएट करते हैं उसकी फीलिंग जो है, उसकी जो वाइब्रेशन है वो दूसरों तक तो पहुंचती है, लेकिन सबसे पहले किसको मिलती है?
3: वो हमें. किचन में हम जो भी कुछ पकाते हैं
4: सबसे पहले आपको मिलती है,
3: पहले हमको मिलता है, चारों तरफ उसका एरोमा घर में फैलता है.
4: तो आत्मा जो थॉट क्रिएट करेगी वो वाइब्रेट होगी, बाहर जाएगी, लेकिन सबसे पहले उस आत्मा को मिलेगी. तो जितनी बार भी हम एक प्योर पावरफुल अच्छी पॉजिटिव थॉट क्रिएट करते हैं, वी कम टू नो कि हम क्या क्रिएट कर रहे हैं. फिर दूसरे टाइप ऑफ थॉट है जब हम एक नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हैं, वो भी हमें पता चल जाता है, चाहे वो दूसरे के बारे में है चाहे वो अपने बारे में है. जैसे आपने पिछली बार कहा गिल्ट भी मुझे क्रिएट हुआ, गुस्सा भी मुझे अपने ऊपर भी आया, अपने ऊपर कोसा, तो मतलब ये सारी नेगेटिव थिंकिंग में चला गया. ये जब किया तो अपने आप को भी फील होता है, दूसरे तक भी वाइब्रेशन जाता है. ये हुआ, थर्ड कैटेगरी ऑफ थॉट जब हम नेसेसरी थॉट क्रिएट कर रहे हैं कि मुझे ये करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे आज ये करना है, मुझे आज इनसे मिलना है, दैट इज द थर्ड टाइप ऑफ थॉट वी क्रिएट, नेसेसरी थॉट. एंड फोर्थ टाइप ऑफ थॉट वी क्रिएट, वेस्ट थॉट्स, व्यर्थ. पॉजिटिव सकारात्मक चिंतन, नेगेटिव नकारात्मक चिंतन, नेसेसरी साधारण चिंतन, एंड वेस्ट व्यर्थ चिंतन. वेस्ट चिंतन हम किसको कहेंगे, जहां हम ज्यादातर या तो जो बीत गया उसके बारे में सोच रहे हैं या जो अभी होने वाला है.
3: लेकिन वैसे देखा जाए तो मैं हमेशा पास्ट और फ्यूचर में सोचता हूँ, अभी का थोड़ा ही कुछ
4: तो मेजोरिटी हम यही कर रहे हैं.
3: आप रूम में खाली बैठेंगे अकेले,
4: हाँ?
3: और टीवी भी ऑन नहीं है या किताब भी नहीं पढ़ रहे और कंप्यूटर फोन कुछ नहीं है,
4: हाँ?
3: तो आप बैठ के सोचेंगे कि मैं अकेला खाली इस वक्त बैठा हूँ, आज तारीख ये है और मैं इस वक्त इतने बजे इस घड़ी पे.
4: अच्छा नहीं तो क्या सोचेंगे,
3: कोई भी थॉट आ जाता है. स्कूल में ऐसा था, कॉलेज में ऐसा हुआ, जब माँ जिंदा थी तो ऐसा हुआ, शूटिंग में ऐसा हुआ,
4: हाँ, मतलब
3: पता नहीं कल का बच्चे का क्या होगा,
4: हाँ,
3: और उधर वो उसका बच्चे का वो है, उसके बच्चों के आज के जमाने का क्या होगा,
4: हाँ,
3: इनके 30 साल बाद दुनिया कैसे रहेगी.
4: तो परमात्मा कहते हैं ये दोनों टाइप ऑफ थॉट्स, या तो पास्ट या तो फ्यूचर, नॉट इन माई कंट्रोल, पावर वेस्ट, एनर्जी
3: नॉट इन माई कंट्रोल.
4: क्या
3: कि पास्ट और फ्यूचर को सोचना नहीं सोचना,
4: क्यों, जैसे आप पे ही नहीं आता है. अभी ये भी थिंकिंग चेंज करनी है कि थॉट आप पे ही आता है, थॉट अपने आप नहीं आ रहा है.
3: मैं थोड़ी बोलता हूँ 1945 में क्या हुआ.
4: अच्छा अगर आ भी जाए, चलो आ गया ना कि हम बैठे साइलेंट हैं.
3: 1960 में ऐसा हुआ था.
4: हाँ इट्स ओके, आ गया. बेसिकली क्या हुआ है, अंदर जो स्टोर करके रखा है मेमोरी बैंक में,
3: सब कुछ स्टोर्ड है, जब से वो संभाला
4: सब कुछ स्टोर्ड है ना.
3: तो कोई भी चीज आती है,
4: अब उसको कितनी देर उस बारे में सोचेंगे,
3: जब तक रियलाइज नहीं किया कि मैं वहाँ खोया हुआ था.
4: तो वो रियलाइजेशन,
3: मैं एक किताब पढ़ता हूँ सिस्टर, तो 3-4 पैराग्राफ के बाद एक वर्ड कुछ ऐसा आता है उसमें, एक लाइन ऐसी आती है, क्योंकि कोई मेरे साथ रिलेटेड किस्से की बात हुई, कुछ स्कूल आ गया या टीचर का नाम आ गया, तो वहां से कनेक्टेड सीधा थर वहां चला जाता
4: है,
3: और ये आंख वहीं रहती है, किताब हाथ में रहती है, मैं वहां घूमता रहता हूँ. उसके बाद रियलाइज होता है कि मैं अभी तो पेज नंबर लाइन नंबर 7 पे ही हूँ.
4: हाँ तो परमात्मा कहते हैं ऐसी मन बुद्धि थक जाएगी.
3: बट बिटवीन द रियलाइजेशन कि अभी तक मैं 7 लाइन ही पढ़ा, और बिटवीन 1st and 7 के बाद फिर से शुरू करने के बीच का गैप वॉज नॉट इन माई कंट्रोल.
4: इट इज इन माई कंट्रोल वेन आई स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम टूडे. Never say it's not in my control. We can only say I was not aware. मैंने ध्यान ही नहीं रखा, आज से मैं ध्यान रखूंगा. सपोज हमने एक वर्ड यहाँ पढ़ा, अभी सपोज बातों में ही देखते हैं, अभी हमने मुरली की एक लाइन पढ़ी, ठीक है, और फिर उस लाइन को लेके हम दूसरी बातों पे आ गए, अभी हम आ गए, बट आई एम अवेयर कि हम ये कर रहे हैं. आई एम अवेयर, यू आर ऑल्सो अवेयर कि हम ये कर रहे हैं. हम मुरली की लाइन से, जो हम परमात्मा के महावाक्य पढ़ रहे थे, हम उस लाइन से हटे, उस लाइन से एक लाइन ली, उस लाइन से हम और लाइनें, मतलब और बातें कर रहे हैं. वी आर अवेयर कि हम ये कर रहे हैं, और हम जब चाहें, जिस क्षण चाहें, उसको स्टॉप कर वापस इस पर आ सकते हैं.
3: नहीं, मैं तो आपसे बात करते करते कहीं कहीं चला गया.
4: लेकिन हमें ये तो अवेयर है कि अभी हम ये नहीं पढ़ रहे, हम कुछ और बात कर रहे
3: हैं. ना कि आपको रोक के मैं बीच में सवाल पूछ रहा हूँ.
4: वी आर अवेयर ना, तो ये अवेयरनेस है ना. हम ये तो नहीं कह सकते कि हम अवेयर नहीं है.
3: हाँ तो मैं आपका जब तक आंसर नहीं मिलेगा मुझे,
4: हाँ,
3: इस बात के क्वेश्चन का, उसके बाद फिर मैं बोलूंगा.
4: लेकिन अगर अभी आपको किसी भी क्षण लगे कि नहीं बस अभी वी हैव टू गो बैक टू दैट, तो आप एक क्षण में क्या कहेंगे?
3: मैंने बोला ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ते हैं.
4: दिस इज इट. ये सब कौन चूज करता है? मतलब हम सोच रहे हैं, हमें दिख गया, हम अवेयर हो गए कि नहीं बहुत ज्यादा बाहर आउट ऑफ इस टॉपिक से चले गए, स्टॉप, वापस. ये हम भी तो कर रहे हैं, यही चीज हम थिंकिंग के साथ कर सकते हैं. कर सकते हैं नहीं कर सकते? हम सोच रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है, इतना लंबा लंबा लंबा चला, फिर सडनली कितनी एनर्जी वेस्ट. स्टॉप, वापस हो जाएगा. इसको भी हम थॉट मैनेजमेंट कहते हैं. पहले हम अपनी थॉट्स के बारे में अवेयर नहीं थे.
3: मनी मैनेजमेंट आती है मुझे.
4: मनी मैनेजमेंट आती है ना,
3: हाँ.
4: उससे बेटर
3: इधर कितना स्पेंड कर रहा हूँ, कितना फोन पे बाहर करूं कि इंडिया के बाहर तो इतना हाँ। लगेगा।
4: अच्छा जब आप मनी मैनेजमेंट कर रहे हैं उसमें हम क्या मैनेज करते हैं, राइट इन्वेस्टमेंट कैसी होनी चाहिए, कहाँ से कितना रिटर्न आएगा,
3: मिनिमम रुपीज में मैक्सिमम प्रॉफिट,
4: परफेक्ट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम प्रॉफिट। कहीं अगर आपने ऐसा इन्वेस्ट किया जहां से आपको लगे कि उतना रिजल्ट नहीं, इनफैक्ट लॉस हो रहा है,
3: निकाल देते,
4: यही तो करना है। तो यही तो करना है। सपोज किसी एक बारे में सोचना शुरू किया, इन्वेस्ट कर दी एनर्जी, चल रहा है, स्टॉप हटा, दूसरे पे शुरू किया, डिफिकल्ट, स्टॉप शिफ्ट, दूसरे पे मूव ऑन किया। सपोज आपके घर में कोई फैमिली मेंबर इन्वेस्ट करे और उसमें लॉस ही होता जा रहा है, वो फिर भी उसको चेंज नहीं कर रहा कुछ भी, तो आप उसको क्या कहेंगे?
3: बोलेंगे भाई इसको हटा दे, दूसरी जगह लगा
4: दे। देखो लॉस हो रहा है, आप तो भी कुछ नहीं कर रहे, फिर भी उसी में डालते जा रहे हैं अपने आप को, लॉस हो रहा है, इतनी एनर्जी जा रही है, पावर डिप्लीट ही होती जा रही है, फिर भी तुम उसी बारे में सोच रहे हो।
3: फंड मैनेजमेंट का लॉस मालूम है मुझे, लेकिन इसमें लॉस हो रहा है वेस्ट थॉट्स में ये नहीं मालूम था।
4: लॉस नहीं हो रहा था जब हम व्यर्थ इधर उधर इसका और फिर उसमें उसको गुस्सा भी कर दिया, उसको गलत भी, फिर हर्ट, फिर
3: आई नेवर थॉट फ्रॉम दैट एंगल,
4: वी नेवर थॉट ना, तो वही तो सीखते हैं ना, दैट इज थॉट मैनेजमेंट ना, कि दिस इज माय वेस्टेज।
3: अब हम किस बात का वेस्ट हो रहे थे, पैसा तो नहीं जा रहा मेरा,
4: उससे भी वैल्यूएबल चीज जा रही है ना,
3: क्या
4: वो एनर्जी जा रही है जो पैसा कमाती है हमारे लिए, आत्मा की शक्ति। अभी क्या सुना, जितना बुद्धि थक जाएगी उतना उसकी परखने और निर्णय करने की शक्ति कम होती जाएगी, थकेगी कैसे, साधारण और व्यर्थ चिंतन टू मच करने से।
3: तो इतना थकने से मेरी मनी मैनेजमेंट में भी
4: वही तो मैंने कहा जो ये वो शक्ति कम हो रही है जो पैसे को भी कमाती है,
3: तो ये रियल लॉस है, तो डबल लॉस है।
4: हम उस लॉस को कितना बड़ा लॉस समझते हैं ना,
3: तो मैं उसी पे बात कर रहा हूँ,
4: ये लॉस कितना बड़ा लॉस है उसके कंपैरिजन में। पैसा जाता है, पैसा आता है, शक्ति जाती है वापस कमाने, सेहत जाती है वापस कमाने, रिश्ते जाते हैं वापस कमाने, पैसे के लॉस और प्रॉफिट को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं, ये एनर्जी तो उससे कितनी ऊपर है, और ये वो संस्कार है, वो सोच है जो हमारे साथ भी जाएंगे आत्मा की जर्नी पर। वो धन तो जाएगा नहीं साथ में कहीं भी, तो भी इसके प्रॉफिट और लॉस को उतना महत्व नहीं देते ना। यही तो आज सीखने को मिल रहा है कि अपनी थॉट्स की अवेयरनेस, इसको भी हम कहते हैं थॉट मैनेजमेंट, मतलब जैसे SOS कहते हैं ना, तो इसमें भी SOS है, स्टॉप कर देना है, उसको ऑब्जर्व करना है कि ये मैं किस बारे में क्या सोच रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए सही है, और तुरंत स्विच। इवन अगर आ गई, आपने कहा ना थॉट आ जाती है, आ गई, चल रही है, स्टॉप
3: ऑब्जर्व एंड स्विच। शूटिंग में मैं करता हूँ ना,
4: हाँ,
3: जैसे डायरेक्टर बोलता रोते रोते सीन, रोना रोक के कट करके बैठ जाता हूँ, उसके बाद बोलता गड़बड़ होगी, सॉरी लाइट गड़बड़ होगी, दोबारा शुरू करो,
4: हाँ,
3: फिर लाइट्स ऑन, फिर रोना शुरू।
4: अच्छा, और अगर सपोज वो बोले रोते रोते सीन वो हुआ स्टॉप, नेक्स्ट मिनट के बाद नेक्स्ट सीन, उसमें आपको बहुत खुश होना
3: है,
4: कर सकते तो वो कर सकते हैं, तो ये
3: शुरू में तो घर तक रोता हो जाता था,
4: नहीं नहीं, पर स्टॉप करके दूसरे सीन में चेंज कर सकते,
3: अब कर सकता हूँ,
4: कर सकते,
3: लेकिन अर्लियर स्टेज में कभी कभी ऐसा होता था कि मैं घर तक रोता हो जाता था,
4: मतलब हम उस रोल में क्या हो गए,
3: खो गए थे,
4: खो गए किसी भी चीज में, इतना नहीं खो जाना।
3: प्रैक्टिस करते करते करते आ गया ना,
4: प्रैक्टिस करते करते आ गया ना,
3: प्रैक्टिस करते करते स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ आ गया, स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ वाज डिफिकल्ट इनिशियली,
4: दिस नाउ प्रैक्टिस हियर, प्रैक्टिस करते करते ये भी आ जाएगा,
3: स्विच ऑन स्विच ऑफ तो ऐसे होता है मेरा,
4: अब ऐसे होता है ना, यहाँ भी अब ऐसे ही होगा, ऐसे होगा स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ, सेम करना है, सेम ये थॉट चल रही है, मैं बहता जा रहा हूँ इसके अंदर, मेरी कितनी शक्ति वेस्ट हो रही है, स्टॉप चेंज स्विच, हो गया। कोई भी चीज प्रैक्टिस करते करते, अब आप देखो, आपने कहा अब तो मैं ऐसे कर लेता हूँ इजिली,
3: शूटिंग में मैं चाय पी रहा हूँ, डायरेक्टर बोले शॉट देके, आधी छोड़ के शॉट दिया, रोया धोया, इमोशनल लड़ा किया, करके कट बोला ओके, आधी बाकी चाय पीने लगे, दोस्तों से बात करने लगे,
4: सिंपल,
3: इमीजिएट हो जाता है,
4: इमीजिएट हो जाता है ना,
3: पहले पहले नहीं होता था।
4: कोई भी चीज पे प्रैक्टिस किए, अभी हर एक अभी नहीं कर पाएगा इजीली, जो आप कह रहे हैं कि रोए फिर स्विच किया फिर खुश हो गए, ये हर एक नहीं कर पाएगा, जिसने प्रैक्टिस किया वो कर लेगा।
3: अच्छा, एज ए टीचर आप मुझे समझाओ क्या करना। मुझे एक थॉट आ गया।
4: आप सीन के लिए क्या करते हैं कि अभी रो रहे हैं
3: तो कट बोल दिया डायरेक्टर, हो गया काम खत्म,
4: बस खत्म, फिर
3: मेरा काम खत्म, दूसरा करूं।
4: तो उतना ही इजी है ना ये भी, उसमें कुछ करना ही नहीं। हमें लगता है हर चीज के लिए पीछे बहुत बड़ी कोई टेक्निक होगी, कोई उसकी प्रोसेस है, कोई उसकी
3: पेजेस की बुक पढ़नी पड़ेगी।
4: कुछ नहीं है ना, अभी इसको बोलो कट। सपोज आपको वो इंसिडेंट याद आ जाए, मैं उनके घर गया था, फिर उन्होंने मुझे गाड़ी नहीं दी, फिर वो ऐसे करते हैं, ऐसे चल रहा है। सपोज 5 मिनट बीते, 10 मिनट्स बीते, अब क्या करना है इसको चेंज करने के लिए? कितनी पावर जा रही है, स्टॉप, चेंज, किसी और चीज पर सोचते हैं। कुछ करना ही नहीं, कुछ टेक्निक थोड़ी है इसके पीछे, कोई टेक्निक नहीं है, कोई विधि नहीं है। स्टॉप, ऑब्जर्व कि ये राइट नहीं है, स्विच, चेंज करना है। इवन इफ आई हैव टू डू इट रिपीटेडली इन द बिगिनिंग, कि मैंने किया लेकिन 2 मिनट बाद फिर मुझे वही बात याद आई, फिर स्टॉप, फिर मैंने किया 5 मिनट बाद फिर वही बात याद आई, फिर स्टॉप,
3: रिटेक, कट, रिटेक, कट।
4: प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो कितना इजी। क्योंकि अपनी इकोनॉमी, हम मैनेजमेंट पैसों की इकोनॉमी इतना करते हैं, यहाँ की इकोनॉमी वेस्ट हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, बहते ही जा रहा है। आज की लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मन बुद्धि थक जाएगी उसकी फिर परखने और निर्णय करने की शक्ति यथार्थ नहीं होगी, एक्यूरेट नहीं होगी। तो परमात्मा कहते, व्यर्थ व साधारण को अच्छी तरह से समझ गए हो, मतलब पता तो चल जाता है ना कि कौन सी थॉट वेस्ट है, कौन सी थॉट पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव है, उतना पता चल गया। दैट्स व्हाट ही इज आस्किंग। तो समझने के बाद कर्म में तो स्वतः ही आना चाहिए, समझ लिया क्या वेस्ट है क्या पॉजिटिव है। वैसे भी साधारण भाषा में यही कहते हो ना, अब तो मेरी समझ में आ गया, फिर करने के बिना रह नहीं सकते हो। एक बार समझ में आ गया तो फिर करे बिना रह नहीं सकते हो। तो पहले ये चेक करो, साधारण अथवा व्यर्थ क्या है।
3: ओके,
4: मींस अपने थॉट्स में ऐसे नहीं होना चाहिए कि वेस्ट चल रही है और हमें लगा कि ये राइट चल रही है। उतनी अवेयरनेस पहले होनी चाहिए कि उतनी पता चल जाए, इवन अगर चल रही है लेकिन मुझे पता होना चाहिए ये कौन सी क्वालिटी की है। ये पता होना चाहिए कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वेस्ट है, एलिवेटेड है, बहुत प्योर है, बहुत ऑर्डिनरी है। वो चेकिंग हो जानी चाहिए, तो वो कर सकते हैं। कभी भी व्यर्थ या साधारण को ही श्रेष्ठ तो नहीं समझ लेते हो,
3: जैसे मैंने कहा था ये तो नेचुरल है,
4: ये तो नेचुरल है,
3: तो उसको नहीं है,
4: तो उसको श्रेष्ठ समझ लिया, मतलब राइट समझ लिया।
3: हाँ, तो आई सेड ना, मैं व्हाटएवर आई डिड, सही बात है,
4: सही बात है, राइट है। तो वो कौन सी स्टेज है हमारी जब हमें ये भी नहीं पता था कि क्या वेस्ट है, तो वेस्ट को ही राइट समझ लिया, जस्टिफाई कर लिया। तो परमात्मा कहते हैं इसीलिए पहले पहले मुख्य है होली हंस बुद्धि, हंस बुद्धि,
3: होली हंस बुद्धि,
4: हंस बुद्धि, स्वान, जो परख सकता है
3: सच्चे मोती में और नकली मोती,
4: हाँ, मोती में और पत्थर में, कंकर में, वो परख सकता है। वो कंकर कोई नहीं उठा लेगा मोती समझकर। तो परमात्मा ने कहा आपकी बुद्धि भी होली हंस बुद्धि।
3: हमको तो ऐसे बचपन में सिखा देते, ऐसे ही पता नहीं सच है कि झूठ, बोले दूध और पानी मिक्स कर दो तो हंस सिर्फ दूध दूध दूध दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है।
4: मतलब उसकी विशेषता है ना,
3: हाँ,
4: उसका गुण क्या है
3: कि
4: मिक्सचरिटी में से भी,
3: हाँ,
4: जहाँ मिक्स्ड भी है कोई चीज उसमें से भी वो ओरिजिनल प्योरिटी वाली चीज को खींच लेता है। इतनी होली हंस बुद्धि। तो परमात्मा कहते हैं उसमें, मतलब हंस में, स्वतः ही परखने की शक्ति आ जाती है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय तब जाता है जब उसकी परख नहीं रहती कि ये राइट है या रॉन्ग है।
3: ब्यूटिफुल।
4: व्यर्थ समय और व्यर्थ संकल्प तब जाता है जब उसकी परख नहीं रहती कि ये राइट है या रॉन्ग है। हम मोस्टली क्यों वेस्ट करते हैं ना एनर्जी और टाइम, क्योंकि हम रॉन्ग को राइट कहते हैं।
3: आप ये पढ़ रहे हैं तो इतना पावर आ रहा
4: है, पावर आती है ना, है व्यर्थ लेकिन समझते हैं कि मैं समर्थ हूँ, मैं राइट सोच रहा हूँ, कितनी पावरफुल लाइन है व्यर्थ लेकिन समझते क्या है, मैं समर्थ हूँ, मैं राइट सोच रहा हूँ, जो मैंने कहा वही राइट है।
3: राइट
4: इसमें परखने की शक्ति न होने के कारण मन की शक्ति, समय की शक्ति, वाणी की शक्ति सब चली जाती है। मन की शक्ति,
3: समय की शक्ति
4: वाणी की शक्ति सब चली जाती है। इसका कारण क्या, होली हंस बुद्धि नहीं बने हैं, मतलब श्रेष्ठ और व्यर्थ के बीच में डिफरेंस नहीं पता है। तो परमात्मा कहते सभी होली हंसों को फिर से यही इशारा दे रहे हैं कि उल्टे को उल्टा नहीं करो। अगर कोई उल्टा है मतलब कुछ रॉन्ग भी है तो उसको और रॉन्ग नहीं करो, ये है ही उल्टा, ये नहीं सोचो, लेकिन उल्टे को मैं सुल्टा कैसे करूं ये सोचो। उल्टे को उल्टा है बोलते बोलते हम खुद भी क्या हो जाते हैं,
3: उल्टे
4: ही हो जाते हैं, लेकिन उल्टे को मैं सुल्टा कैसे करूं यही सोचो। इसको कहा जाता है कल्याण की भावना, कंपैशन, श्रेष्ठ भाव, शुभ भावना से अपने व्यर्थ भाव स्वभाव और दूसरे के भाव स्वभाव को परिवर्तन करने की विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत पावरफुल लाइन है, श्रेष्ठ भाव, शुभ भावना, अपनी गुड विशेष, एलिवेटेड फीलिंग से अपने व्यर्थ भाव स्वभाव, अपनी वेस्टफुल थिंकिंग और दूसरे के भाव स्वभाव को भी परिवर्तन करने की विजय प्राप्त कर सकते हैं। समझा, पहले स्व पर विजय, फिर सर्व पर विजय, ऐसी आत्मा फिर प्रकृति पर विजय प्राप्त करेगी।
3: थैंक यू सो मच बाबा।
4: सी कि हम कभी भी रॉन्ग को ही जब तक राइट बोलेंगे तब हमारी समय, मन की एनर्जी, वाणी की एनर्जी सब वेस्ट हो जाएगी। और होली हंस बुद्धि बन, परख कर फिर अपनी शुभ भावना से अपने भी वेस्ट को खत्म किया, सामने वाली आत्मा के भी भाव स्वभाव को परिवर्तन किया, तो विजयी आत्मा बन जाएंगे।
3: एकदम क्लैरिटी आ गई दिमाग।
4: थैंक यू सो मच।
3: थैंक यू।
4: ओम शांति।
3: थैंक यू।
2: While discerning our thoughts, behavior, and choosing our response towards situations and people, we should see the present and also the future. Our present karma of thoughts and behaviors will have a consequence in the future. If we create too many waste and negative thoughts, then our power to discern and power to decide will be weak. If the mind and intellect is stable and concentration is high, then discernment and decision will be accurate. Pure and positive thoughts are thoughts radiating from the original sanskars of the soul, thoughts of love, forgiveness, compassion, and empathy. Negative thoughts are thoughts of ego, anger, hatred, hurt. Necessary thoughts are thoughts related to our normal activities. Waste thoughts are thoughts of the past and future. Thought management saves our energy and time, gives us happiness, health and harmony. Let us be aware of our thoughts, and if there is a wrong or waste thought, then SOS, stop the thought. Observe the quality and switch to another type of thought.
5: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099 9955966

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माय चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड, मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है आजकल, पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टूडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दू, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होने चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

चाहत को कोई छू नहीं सकता। जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा, ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा? इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे? किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहाँ और ठीक करने की उंगली भी यहाँ। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं? उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, मी वर्षा उसगावकर. तुम्ही ऐकता आहात पुणेरी आवाज 107.8 FM वर. आनंदित रहा आणि नेहमी सगळ्यांना आनंदित ठेवा.
1: इतिहास से, भूगोल से,
2: समाज से, संस्कार से,
1: आधुनिकता से और विचार से,
2: खूबियों से भरा अनोखा है मेरा भारत.
1: एक महान राष्ट्र है मेरा भारत,
3: अतुल्य भारत.
2: चलिए आपको बताते हैं
1: भारत की 69 ऐसी विशेषताओं के बारे में
2: जो बनाती हैं भारत को पूरी दुनिया से अलग
1: और प्रदान करती हैं हमें एक गर्वित भारतीय नागरिक होने का हक.
4: क्या आपको पता है कि महात्मा गांधी, जिन्हें हम प्यार से बापू कहते हैं, उन्होंने भारत को आजादी दिलाने की लड़ाई में अहिंसा को अपना साधन बनाया था. इस महान व्यक्तित्व का जन्म 23 जुलाई 1869 को पोरबंदर में हुआ था. उन्होंने बिना कोई हथियार उठाए ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ कई आंदोलन चलाए, जैसे कि सन 1917 में चंपारण से सत्याग्रह आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में नमक बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था. सत्याग्रह विश्व का अनूठा अहिंसात्मक आंदोलन रहा, जिसे बाद में नेल्सन मंडेला ने भी दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ इस्तेमाल किया.
1: भारत की विशेषताओं को करते रहिए सलाम.
2: पुनेरी आवाज 107.8. खुश रहो, खुशियाँ बांटो. जय हिंद,
1: जय भारत.
5: भारत अनोखा राग है.
6: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार.
7: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है. ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है. हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
6: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

निखटुआ निखटुआ बन के गुलगुले जल के बुलबुले बन के गुलगुले जल के बुलबुले यार चुलबुले सुन रे पगले बोले बार बार बोले धोले तू आज अपने दिल के सब दाग धोले धोले तू आज अपने दिल के सब दाग धोले धोले तू

पाप छिपाए, धब्बे सबके मिटाए, हमसे सारी दुनिया उजली, हम ही को समझे महिला, हर बन के बुलबुले, दल के बुलबुले, याद चुलबुले सुन रे पगले, बोले तू आज अपने दिल के।

अपना लोहा सच्चा फेर के धुंधली शाम पे लोहा शाम को भी चमकाए बन के गुलगुले गल के बुलबुले चाद चुलबुले सुन रे पगले डोले तू आज अपने दिल के।

हुआ भी ऐसा ही। निराशा की काली बदरिया उमड़ घुमड़ कर बरसी तो, लेकिन उसी में आशा की किरण फूट पड़ी। और भाई

ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी।

पीछे तो आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के कोड़े पर थोड़ा जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है, तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: हजार है हप हप, खाता है कूड़ा भी रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: चलिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

हाँ बाबू, ये सर्कस है और ये सर्कस है शो 3 घंटे का।